एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर 2026 सवेरे के ठीक 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला

0: तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रखे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं वंदनवार चिंतन।

आज का चिंतन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 302। 6:45 पर संगीत सहिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा घराना घराना। आज आपको सुनवाएंगे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे

आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 302, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा घराना घराना। आज आपको सुनवाएंगे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 से। 7 बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम श्रोताओं आज केंद्रित है संगीतकार सलील चौधरी पर। 10 बजे पिटारा में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी आखिर कब तक, लेखिका रश्मि वर्मा। 11 बजे सुनिएगा चित्रपट संगीत। 11:30 पर आप सुनेंगे मैटिनी शो। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाएंगे। 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। 2 बजे सुनिएगा त्रिवेणी। 2:30 पर होंगे सदाबहार नख्मे। 3 बजे आप सुनेंगे मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में आपको सुनवाएंगे नाटक आंख की किरकिरी का पहला भाग, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण और निर्देशन किया है नंदलाल शर्मा ने। शाम 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज। गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। 7 बजे पार्श्व गायिका आशा भोसले द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे जिज्ञासा। डॉक्टर योगिनी मोहरे से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुनो कहानी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पिंजर का पहला भाग आपको सुनवाएंगे। वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक और 9 बजे होगा कार्यक्रम। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर। 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा के अंतर्गत श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

वानर सभी दिशाओं से ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारी शिलाखंड तथा वृक्ष खेल ही खेल में उखाड़ लाते हैं। नल और नील उन्हें गढ़कर सेतु का निर्माण करते हैं। ये सुंदर रचना देख श्री राम अति प्रसन्न हैं। उस स्थल को अत्यंत रमणीय और उपयुक्त देखकर वे वहां शिव की स्थापना करने का संकल्प करते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने की गायकी की विशेषताओं की बात हो रही है, उसके अनूठेपन की बात हो रही है, तो कौन सा वो निराला अंदाज है इस गायकी का जिसके बारे में आप चर्चा करेंगी आज?
2: मुझे लगता है आज हम किराना घराने में विलंबित लय का जो विशेष महत्व है,
1: अच्छा,
2: उनके बारे में जानेंगे।
1: जी जी,
2: विलंबित लय,
1: हाँ,
2: ये भी हमारी खासियत है। राग विस्तार के लिए अनुकूल है हमारा घराना, किराना घराना
1: जी।
2: और राग विस्तार के लिए विलंबित लय का प्रयोग जो है
1: जी जी,
2: इसलिए किया जाता है ताकि हर एक स्वर को पर्याप्त समय देकर उसकी शुद्धता और सौंदर्य को उभारा जा सके
1: जी।
2: राग का क्रमिक विकास अच्छी तरह से हो सके। धीमी लय में कलाकार राग के प्रत्येक स्वर और उसके भाव का क्रमशः विस्तार करता रहता है, इससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और प्रभावशाली बनता है। मिंड और श्रुति का प्रभाव और प्रयोग विलंबित लय कलाकार को मिंड, श्रुति और सूक्ष्म स्वर लगाव का सुंदर प्रयोग करने का अच्छा अवसर यहाँ पे मिलता है। यही इस घराने की प्रमुख विशेषता है जयंत जी,
1: जी, जी।
2: भावपूर्ण प्रस्तुति करने के लिए भी इसका बहुत ही आधार होता है। धीमी गति में क्या होता है, गायन करने के लिए प्रत्येक स्वर का भाव अधिक प्रभावी और श्रोताओं तक पहुंच जाता है और संगीत अधिक रसपूर्ण हो जाता है
1: जी।
2: स्वर साधना का प्रदर्शन करने के लिए भी अच्छा होता है। लय में गायक अपनी स्वर साधना, स्वर पर नियंत्रण और धैर्यपूर्ण प्रस्तुति का परिचय देता है। इसी कारण किराना घराने की गायकी जो है उसको अत्यंत गंभीर और ध्यानमय मानी जाती है।
1: अच्छा,
2: अध्यात्म के बहुत ही पास जाती है ये गायकी। विलंबित लय जब हम प्रस्तुत करते हैं राग, तब श्रोता को एकाग्र होकर सुनने के लिए प्रेरित करता है।
1: अच्छा,
2: और संगीत का सौंदर्य धीरे धीरे मन में उतरता रहता है। अगर आप सोचे पंडित भीमसेन जोशी
1: जी,
2: उनका जो विस्तार है, विलंबित लय की जो पद्धत है, जो ढंग है
1: जी,
2: वो इतना मन को सुगुन देता है, इतना अच्छा लगता है। अभी आप शुद्ध कल्याण उनका सुनेगा।
1: अच्छा, तो हम पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग शुद्ध कल्याण
2: सुनेंगे। उससे पहले मुझे एक बात बोलनी है जैन जी,
1: जी, जी।
2: किराना घराने पर एक आरोप किया जाता है कि ये घराने के लोग एकदम आसान राग है,
1: हाँ,
2: वो चुनते हैं, थाट प्रदान राग ही चुनते हैं और उतना ही उनका लिमिट है।
1: अच्छा,
2: ये क्यों होता है? राग चुनना जो है, हाँ, तो राग चुनते समय हर किराना का जो पद्धत है, एक एक स्वर का लगाव लेकर आके जाने का और राग का भाव और राग की शुद्धता रखने के लिए आधार होता है
1: जी।
2: और किराना गायकी दिखाने को मदद करती है। और वैसे देखा जाए तो सब घराने में अपने अपने राग रहते हैं।
1: अच्छा,
2: जयपुर घराने में उनके सब अनवट राग रहते हैं, आगरा में उनकी अपनी खासियत है, ऐसा सब घराने में होता है। चलो शुद्ध कल्याण सुनेंगे, उनका आलाप पर आप ध्यान दीजिएगा, ख्याल की बढ़त वो कैसे, छोटा एक दो आवर्तन ही सुनेगा,
1: हाँ,
2: लेकिन उनमें जो डेप्थ

0: क्या बात है। पंडित भीमसेन जोशी जी का गाया राग शुद्ध कल्याण और उसकी जो विलंबित लय में बढ़त थी, आप जैसा कह रही थी कि उसकी जो गहराई है उसे महसूस कर रहे थे।
1: शुद्ध कल्याण का कैसा है, वो बहुत पास पास पास पास सब राग है, भूप है, देशकार है जी। बहुत सारे राग जायत कल्याण है और उसका जो निषाद आते समय और मध्यम जो लगाते हैं ना, उसकी जो सौंदर्यता है ये किराना घराने में भीमन्ना का एक अलग ही ये है। और उसी राग में सब गाने तो सब प्योर नहीं रहते हैं राग का, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। चोरी चोरी फिल्म का रसिक वलमा।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vbsmumbai पर जरूर हमें बताएं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आज के अंक को लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र आशीष मालानी।

श्रोताओं, भारत की महान सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि है और ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। प्राचीन काल के महर्षियों से लेकर आधुनिक युग के महान विचारकों तक देश के चरित्र निर्माण, बौद्धिक पुनर्जागरण और सामाजिक चेतना के विकास में शिक्षकों का योगदान सदैव अतुलनीय और अप्रतिम रहा है। आज 5 सितंबर का यह पावन दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में अत्यंत श्रद्धा, सम्मान, कृतज्ञता और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज का यह विशेष दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, दार्शनिक और अद्वितीय शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पावन जयंती को समर्पित है। आज के इस प्रसारण में हमारे मुख्य आलेख का विषय है शिक्षक, राष्ट्र निर्माता और समाज के शिल्पकार।

श्रोताओं, सबसे पहले यह समझते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और उनके विचार शिक्षा के प्रति कितने समर्पित थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों, सत्य, अहिंसा, ज्ञान और आत्म अनुशासन का विकास नहीं होता, तब तक किसी भी समाज की वास्तविक और स्थायी उन्नति संभव नहीं है। जब वे भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होकर राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ प्रिय छात्रों और शुभचिंतकों ने उनका जन्मदिन भव्य रूप से मनाने की इच्छा प्रकट की। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़े ही विनम्र और उदार भाव से कहा कि मेरा जन्मदिन व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय यदि इसे देश के सभी शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए बड़ा गौरव और संतोष होगा। और वर्ष 2062 से प्रारंभ हुई यह महान परंपरा आज भी भारतीय समाज में ज्ञान, साधना और गुरु शिष्य परंपरा का सबसे पवित्र उत्सव इसे ही माना जाता है।

श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसकी ऊंची इमारतें, विशाल उद्योग, आधुनिक बुनियादी ढांचा नहीं होते, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति और पहचान उसकी युवा पीढ़ी होती है। और इस युवा पीढ़ी को आकार देने, उनके विचारों को सकारात्मक दिशा देने और उनके चरित्र की मजबूत नींव रखने का अत्यंत पावन कार्य हमारे शिक्षक ही करते हैं। शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देने वाले माध्यम नहीं हैं, वे वास्तव में राष्ट्र निर्माता हैं। एक कुशल मूर्तिकार जिस प्रकार एक अनगढ़ और कठोर पत्थर को तराशकर उसे एक जीवंत व सुंदर प्रतिमा का रूप देता है, ठीक उसी प्रकार एक समर्पित शिक्षक बालक के भीतर छिपी प्रतिभा, जिज्ञासा, कला और क्षमताओं को पहचानकर उसे एक जिम्मेदार, संवेदनशील, समर्थ और राष्ट्रप्रेमी नागरिक बनाता है।

सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षक समाज के सच्चे शिल्पकार हैं। एक सशक्त, न्यायप्रिय और समृद्ध समाज की नींव केवल शिक्षा, समरसता, बंधुत्व और नैतिक मूल्यों पर टिकी होती है। अज्ञानता, अंधविश्वास, असमानता और सामाजिक कुरीतियों के अंधकार को दूर करने में शिक्षकों की भूमिका सदैव मार्गदर्शक की रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दीपक केवल तभी दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है जब वह स्वयं अपनी ज्वाला में निरंतर जल रहा हो। ठीक इसी प्रकार एक समर्पित शिक्षक स्वयं आजीवन ज्ञानार्जन और साधना के पथ पर चलकर अपने विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का आलोक बिखेरता है।

श्रोताओं, हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि विद्या वही है जो मनुष्य को अज्ञान, भय, संकीर्णता और कुविचारों से मुक्त करे। प्राचीन भारत के महान कूटनीतिज्ञ और आचार्य चाणक्य ने भी शिक्षक के सामर्थ्य को रेखांकित करते हुए कहा था कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। जब एक शिक्षक अपने शिष्य के मन में विचारशीलता, राष्ट्रभक्ति, सेवा भाव और सामाजिक दायित्व का बीजारोपण करता है, तो वह वस्तुतः आने वाली सदियों के इतिहास और संस्कृति का निर्माण कर रहा होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस भी राष्ट्र ने अपने शिक्षकों का सर्वोच्च आदर किया और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, वही राष्ट्र विश्व में ज्ञान और समृद्धि के शिखर पर स्थापित हुआ है।

श्रोताओं, आज का वर्तमान समय है तेजी से बदलता हुआ डिजिटल और तकनीकी युग है। आज सूचनाएं, आंकड़े और तथ्य इंटरनेट पर एक क्लिक करते ही सेकंडों में उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उस जानकारी का सही विवेक, नैतिकता और मानव कल्याण के लिए कैसे उपयोग किया जाए, यह संस्कार और जीवन मूल्य एक शिक्षक ही सिखा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, ऑटोमेशन के इस आधुनिक दौर में भी शिक्षक की भूमिका कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मशीनें और AI केवल सूचनाएं दे सकते हैं, परंतु मानवीय संवेदना, चरित्र निर्माण, नैतिक बल, सहानुभूति और प्रेरणा केवल एक शिक्षक ही प्रदान कर सकता है। आधुनिक दौर में शिक्षक केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक मेंटर, मार्गदर्शक और जीवन निर्माता के रूप में हर विद्यार्थी के जीवन को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षक दिवस का यह पावन अवसर हम सभी के लिए केवल एक औपचारिक आयोजन या उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन सभी गुरुओं, शिक्षकों और मेंटर्स के प्रति अपनी निष्ठा, कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है, सही मार्ग दिखाया है, हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। यह एक सुदृढ़, उन्नत और स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण में अपने शिक्षकों के निस्वार्थ योगदान को पहचानना और उनके प्रति आदर भाव रखना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। आइए आज 5 सितंबर के इस पावन अवसर पर हम अपने सभी गुरुजनों, शिक्षकों के अतुलनीय योगदान को कोटि-कोटि नमन करें, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, संस्कारों, मूल्यों और आदर्शों पर निष्ठापूर्वक चलने का दृढ़ संकल्प लें।

श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए अपने रेडियो मित्र आशीष मालानी को। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार अलवर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, कुछ ना कहो। फिल्म से गीत की रचना है जावेद अख्तर की और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

समीर के लिखे गीत को अपनी आवाज दी हरिहरन ने। गाने की धुन तैयार की थी अनु मलिक ने। फिल्म का नाम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का अभी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में कृष्णा कॉटेज फिल्म का गीत। गीत की रचना है निलेश मिश्रा की, संगीत अनु मलिक का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

समीर के लिखे गीत को अपनी आवाज दी कुमार सानू, अलका याग्निक ने। गाने की धुन तैयार की थी नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम हम हो गए आपके का भी आप ये गीत सुन रहे थे। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बतें फिल्म का गीत, जिसे गाया है उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली और प्रथा ने। गीत की रचना है आनंद बख्शी की और संगीत जतिन ललित का।

मोहब्बतें फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO 10 कंटेनरों

0: पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat

0: Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
3: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
2: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
5: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
6: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: मुंबई और आसपास के जिलों

0: दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
1: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रम की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी का लिखा है, विजेता

0: आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में लाश और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आए कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का। आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आई सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी के गाए हुए गीत।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: है पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी को सुगम संगीत में। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बातें फिल्मों की, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं सुर का आराधक येशुदास। स्वर व आलेख है अर्चना जैन का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं शिव कुमार शर्मा।

संगीत एक समंदर है जिसे सीखने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है, यह कहकर अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम चलते हैं महान शास्त्रीय संगीतकार और पार्श्व गायक येशुदास जी के संगीत सफर पर, जिनकी विलक्षण प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि 7 साल की उम्र में फोर्ट कोची में आयोजित संगीत की स्थानीय प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता।

के जे येशुदास का जन्म 10 जनवरी 1940 को केरला के फोर्ट कोची में हुआ था। उनके पिता ऑगस्टिन जोसेफ एक प्रसिद्ध मलयालम शास्त्रीय संगीतकार थे। तो भला येशुदास जी इस विरासत में मिली प्रतिभा से कैसे अनछुए रहते।

साल 1971 में आई फिल्म जय जवान जय किसान से उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में एंट्री की थी। ये अलग बात है कि उन्हें पॉपुलैरिटी मिली 1976 की फिल्म छोटी सी बात के एक युगल गीत से, जिसमें आशा जी ने भी अपनी आवाज दी और संगीत था सलिल चौधरी का।

इसी साल आई राष्ट्रीय प्रोडक्शन की क्लासिक फिल्म चच्चोर, जो कि रविंद्र जैन के बोल और संगीत से सजी थी। इसके गीतों के लिए 1976 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यशुदास ने अपने नाम किया और दशकों पर अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी।

साल 1978 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म साजन बिना सुहागन निर्माता निर्देशक सावन कुमार टॉक की एक ड्रामा फिल्म थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के एक गीत को सावन मोहम्मद रफी से गवाना चाहते थे, मगर ये बड़ा रोचक रहा कि समय और तारीख का मुद्दा रहा और उन्होंने सावन जी से कहा कि आप ये गाना यशुदास से गाने को कह सकते हैं। और जब यशुदास जी ने इसे गाया तो यह उनके बेहतरीन गीतों में शामिल हो गया।

साल 1979 का भी वो समय था जब यशुदास जी के गाए कई गीतों ने खूब वाहवाही लूटी। इस साल आई फिल्म दादा गाए गीत, जिसमें संगीत था उषा खन्ना का और गीतकार थे रविंद्र जैन, बहुचर्चित गीत रहा।

1989 में ही आई फिल्म नैया, जो कि रविंद्र जैन के ही बोल और संगीत से सजी थी, इसका एक गीत यशुदास जी द्वारा गाया एक शानदार माझी गीत है।

इसी फिल्म का एक अन्य गाना सुपरहिट तो रहा ही था, साथ ही सभी युवा दिलों की धड़कन भी बन चुका था, जिससे इस फिल्म की अभिनेत्री जरीना बहाव भी खूब पॉपुलर रही।

कमाल की बात रही कि यशोदास जी की उम्दा गायकी और रविंद्र जैन के बेहतरीन गीत संगीत से सजे गानों का अद्भुत संगम लोगों को खूब भाया और ये सदाबहार गीत बन गए। कहा जाता है कि रविंद्र जैन को उनकी गायकी इतनी खूबसूरत लगती थी कि एक बार उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर उन्हें उनकी आंखों की रोशनी लौटाते हैं तो यशोदास जी वो पहले शख्स होंगे जिन्हें वो देखना चाहेंगे।

यशुदास जी ने अपने समय के दिग्गज लगभग सभी गीतकारों और संगीतकारों की रचना और संगीत को अपनी आवाज से सजाया। इलैयाराजा, सलिल चौधरी, उषा खन्ना, खय्याम साहब, रहमान और बप्पी लहरी

सुनते हैं कि बप्पी लहरी के साथ भी यशुदास जी का सफर बड़ा सुहाना रहा, जहां बप्पी लहरी कहते हैं कि यशुदास जी के साथ रहकर मैंने खुद की प्रतिभा को और निखरा महसूस किया, उनकी आवाज को ईश्वर ने छू रखा है। काश हिंदी फिल्मों में आज के कंपोजर उनकी अहमियत समझें और उनसे अपनी फिल्मों में गवाएं।

बप्पी लहरी के ही संगीत से सजी 1984 की हैसियत फिल्म का वो गीत जिसे यशोदास जी के चाहने वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। कहते हैं कि उनकी आवाज में बसी मिठास और उद्गार सीधे दिल में उतर जाते हैं।

यशोदास जी ने अमिताभ बच्चन, एनटी रामाराव, अमोल पालेकर, संजीव कुमार, रजनीकांत और कमल हसन जैसे दिग्गजों पर फिल्माए गाने गाए हैं। जहां 1983 में आई फिल्म सरवा के गीत को कैसे भूला जा सकता है।

मलयालम संगीतकार एम के अर्जुन कहते हैं कि जब कोई गायक संगीतकार के मन में बसी कल्पना गीत के बोल और उसके भावों से भी परे जाकर उसे और अधिक निखार दे तो ये काम सिर्फ यीशुदास ही कर सकते हैं। कोई और गायक इतनी भावपूर्ण लय में नहीं गा सकता।

श्रोताओं, ये बड़ी विचित्र सी बात थी कि लगभग 6 दशकों में भारत के हर काबिल फिल्म संगीतकार और गायक के साथ काम करने के बाद उनके काम में मौजूद विविधता वाकई में जादूगरी से कम नहीं थी। जहां A.R. रहमान ने यशोदास जी को दुनिया में सबसे पसंदीदा आवाजों में से एक कहा।

के जे यशुदास को अपनी मीठी कानों में मिश्री सी घोलने वाली आवाज के उनके शानदार गायन करियर में 8 बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और लगभग 43 से अधिक बार राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके लगभग 60,000 गानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1977 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2017 में ऐसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया। 1987 में हार कर उन्हें यह कहना पड़ा कि अब उन्हें और सम्मान ना देकर नए गायकों को प्रोत्साहित

यशोदाजी में किसी भी गीत में भावनाओं का संतुलन समाहित करने की स्वाभाविक क्षमता है। यह महज प्राकृतिक प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों के प्रशिक्षण, अनुशासन और अपने काम पर निरंतर मेहनत का नतीजा है।

0: इस प्रोग्राम में आलेख एवं स्वर के साथ आपकी हम सफर रही मैं अर्चना जैन और इसे प्रस्तुत किया शिव कुमार शर्मा ने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें फिल्मों की एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में उतरे। और राज्य में 2-3 दिन से लगातार हो रही बरसात से दक्षिण पूर्वी इलाके तरबतर, जल स्रोतों में पानी की बेहतर आवक। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।

इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और राष्ट्रपति ने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षक दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक शिक्षा ही प्रदान नहीं करते बल्कि विद्यार्थी का जीवन गढ़ते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इनमें प्रदेश के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। चाकसू के टूंगली का बास के उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के डॉक्टर दिव्येंदु सेन को ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। राज्य के विभिन्न कृष्ण मंदिरों और घरों में कल देर रात तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय घोष के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया।

0: मध्य रात्रि में मंदिरों में शंख, घड़ियाल, नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच उल्लास छा गया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक, श्रृंगार और भजन कीर्तन हुए। साथ ही दही हांडी के आयोजन में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। जयपुर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में रिमझिम बरसात के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्री कृष्ण जन्म पर 31 तोपों की सलामी दी गई और विशेष आतिशबाजी की गई। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी जुटे। रात 12 बजे बाद भगवान श्री कृष्ण के विशेष दर्शन हुए और तोपों की सलामी दी गई। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ और सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भी जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई। ब्रज क्षेत्र में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि मदन मोहन जी मंदिर में माहौल देर रात तक कृष्णमय रहा और लोगों ने धूमधाम से कान्हा का जन्मोत्सव मनाया।
1: करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में देर रात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्म के साथ ही मंदिर परिसर जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की आस्था का आलम ये रहा कि मंदिर का दरबार खचाखच भर गया। देर रात तक बधाई गीतों और कृष्ण भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। आज जन्माष्टमी के दूसरे दिन मंदिर में नंदोत्सव और आनंद उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें राज परिवार की ओर से छाक लुटाई जाएगी। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें नजर आ रही हैं। मंदिरों में केसरयुक्त दूध दही से छिड़काव कर उत्सव का आनंद लिया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आज श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में उतर

0: रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा में और कल अजमेर में रोड शो करेंगे। वहीं प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए जनसंपर्क साध रहे हैं। इससे पहले कल राज्य के 309 नगरीय निकायों में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 41 जिलों के 10,245 वार्डों के लिए चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसलमेर में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में ईवीएम मशीन का केंद्रवार रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉ. खुशहाल यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। धौलपुर के सेपेयू में कल पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने आमजन से बिना भयभीत हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। इसके अलावा सभी स्थानों पर स्वीप गतिविधियों के माध्यम से भी मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। लोगों को रोचक और नए नए तरीकों से लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य भाग लेने का आह्वान किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के दोबारा होने वाले पेपर के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र यूजीसी नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। कॉमर्स की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। गौरतलब है कि इन तीनों विषयों के परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायत के बाद दोबारा ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। और अब मौसम। राज्य में श्रावण माह में कम बारिश होने के बाद अब भादों में बरसात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। पिछले दो दिन से हो रही बरसात से राज्य के दक्षिण पूर्वी इलाके तरबतर हैं। सवाई माधोपुर में कल से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला आज भी जारी है। रात भर मध्यम और तेज बरसात से कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। पिछले दो दिन से हो रही बरसात से नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई है। करौली में भी कल दिन भर रुक रुक कर बरसात होती रही। दोनों ही जिलों में बारिश को देखते हुए स्कूलों में आज अवकाश रखा गया है। अजमेर के माखुपुरा, घुघरा, कायड़, दोराई, पुष्कर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कल से बरसात का सिलसिला जारी है। इससे लोगों को तेज उमस से राहत मिली है। भरतपुर में भी कल से ही बरसात हो रही है। वहीं रुदावल क्षेत्र के डुमरिया गांव में बकरी चराने गए एक युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारिश की गतिविधियों में 8 तारीख से कमी आने की संभावना है।
1: बंगाल की खाड़ी से बनकर आए वेनमार्क लो प्रेशर एरिया के असर से पिछले दो दिनों से पूर्वी राजस्थान के कई भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा रही है। विशेष रूप से कोटा संभाग के अलावा जयपुर, भरतपुर, शेखावटी क्षेत्र, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 24 घंटों तक पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान खासकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क रहेगा और बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार तेज, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में उतरे। और राज्य में दो तीन दिन से लगातार हो रही बरसात से दक्षिणी पूर्वी इलाके तरबतर, जल स्रोतों में पानी की बेहतर आवक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हिट स्टोरी 3 फिल्म का गीत आपने सुना, अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजें थी, रश्मि विराग के बोल थे, अमाल मलिक ने इस गीत को सुरबद्ध किया।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओ, फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संपादक विधु विनोद चोपड़ा का आज जन्मदिन है। उन्हें हम जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देते हैं। उन्हें उनकी फिल्म परिंदा जून और 1942 अ लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, थ्री इडियट्स, पी के, संजू और मुन्ना भाई, MBBS, इन फिल्मों के लिए जाना जाता है। और इस फिल्म की श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला भी उन्होंने बनाई, विशेष रूप से इन फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी पहली लघु फिल्म मर्डर एट मंकी हिल काफ़ी चर्चा में रही। लघु किसान फिल्म एन एनकाउंटर विद फेसेस जो रिलीज़ हुई 1976 में, पहली फीचर फिल्म सजाए मौत थी। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और थ्री इडियट्स, इन फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया और फिल्म परिंदा को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया।

मोनाली ठाकुर की आवाज थी दम लगा के हईशा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक का संगीत था। और चित्रलोक कार्यक्रम की श्रोताओं, यही थी आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं सुरों के एक जादूगर की।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं

सुरों का एक ऐसा जादूगर जिसने दुनिया के कोने कोने से दोनों को अपनी झोली में लिया और उन्हें नया रूप देकर सुरों की चाशनी में पिरोकर हमारे सामने पेश कर दिया।

सलील चौधरी का जन्म 19 नवंबर 1925 को हुआ था 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में और बचपन से ही उनका लगाव संगीत की ओर था। उनका बचपन असम के चाय बागानों में बीता और चाय बागानों की सरगम उनके जहन पर छप गई। उनके पिता संगीत के बहुत शौकीन थे और वेस्टर्न म्यूजिक से उनका जुड़ाव पिता की वजह से ही हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि चाय बागानों से लेकर आगे बंगाल के खेतों तक सलील चौधरी का जुड़ाव आम आदमी की पीड़ा से होता चला गया और वो उसकी तकलीफ से जुड़ते चले गए। ये उनके जीवन का आधार भी बनता चला गया। आपको बता दें कि सलील चौधरी ने बचपन में बांसुरी, हारमोनियम और इसराज बजाना सीखा था। इसके अलावा अपने बड़े भाई की प्रेरणा से 6 बरस की उम्र से ही उन्होंने पियानो बजाना भी सीख लिया था। सलील चौधरी ने जो अपनी पहली कंपोजिशन की थी वो आज तक मौजूद है और हम उसकी एक झलक आपको सुना रहे हैं। सन 1944 से सलील चौधरी बंगाल के किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। अब वो नाटक और गीत लिखने लगे थे। सन 1944 में सलील चौधरी कोलकाता आ गए अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए। इस दौरान वो जुड़ गए इप्टा से। यहां उन्होंने जनगीत तैयार करने शुरू किए। ये वो गीत थे जिन्हें देवव्रत बिस्वास, हेमंत मुखर्जी, श्यामल मित्रा, संध्या मुखर्जी, मानवेंद्र मुखर्जी, सुबीर सेन और प्रतिमा बनर्जी जैसे प्रसिद्ध गायकों ने गाया था। इन्हीं में से एक गाने की झलक।

चौधरी बिमल रॉय के पास पहुंची, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि किसी जरूरी काम से बिमल रॉय को मुंबई जाना पड़ा था। एक हफ्ते के बाद बिमल रॉय ने सलील चौधरी को एक टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में लिखा था, तुम अपनी इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की तैयारियां करो। इस तरह से सन 1953 में 2 बीघा जमीन आई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता और उससे प्रेरित सलील चौधरी की एक कहानी पर आधारित थी। 2 बीघा जमीन ने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया और सलील चौधरी की जिंदगी को भी, क्योंकि अब वो मुंबई के फिल्म उद्योग से जुड़ गए थे। 2 बीघा जमीन को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके अलावा कांस फिल्म समारोह में भी इसे पुरस्कृत किया गया। यहाँ से आगे सलील चौधरी की यात्रा कामयाबी और प्रयोगों की यात्रा है। लोक गीतों की धुनों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने गानों में परोया है, जैसे फिल्म मधुमती का ये गीत।

जिस पहली बांग्ला फिल्म में सलील चौधरी ने संगीत दिया था वो थी परिवर्तन। ये सन 1949 में आई थी। इसके बाद सलील चौधरी ने करीब 41 बांग्ला फिल्मों में संगीत दिया और इसके बाद प्रारब्ध उन्हें मुंबई ले आया। आकाशवाणी कोलकाता को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस्मत का मोड़ उन्हें मुंबई ले आया था। बड़ी ही दिलचस्प घटना है। दरअसल एक ऐसे किसान की कहानी पर स्क्रिप्ट लिख रहे थे सलील दा, जो अपनी जमीन को खो बैठता है बढ़ते हुए कर्जे की वजह से और फिर कोलकाता आ जाता है ताकि अपना गुजारा चला सके। जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी जब कोलकाता गए तो सलील दा ने उन्हें अपनी इस लिखी जा रही स्क्रिप्ट का प्रीमाइस सुनाया। ऋषिकेश मुखर्जी बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने सलाह दी कि ये कहानी तो बिमल रॉय को सुनानी चाहिए। सलील

0: दरअसल इस गाने का रिदम सुने तो आपको समझ आएगा कि असम का लोक संगीत इस गाने में धड़कता है। असम के वो चाय बागान जहां सलील चौधरी का बचपन बीता था। इसी तरह से मधुमति फिल्म का ये गाना सुनिए।
1: दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा।
0: असल में ये गीत एक पोलिश लोकगीत पर आधारित है। जब हम इस मूल लोकगीत को सुनते हैं और उसके बाद मधुमति के इस गाने को सुनते हैं तो समझ ये आता है कि मधुमति का गीत मूल पोलिश लोकगीत से बेहतर बन पड़ा है। इसका कारण यह है कि सलील चौधरी अगर किसी धुन से प्रेरित भी होते थे तो वो उस धुन को अपने भीतर जज्ब कर लेते, उसके बाद कुछ ऐसा रचते जो अपने आप में अनमोल होता था। संगीत का जुनून इतना कमाल का था कि एक बार कोलकाता से मुंबई के सफर में सलील चौधरी अचानक बीच में गायब हो गए और कई दिनों तक गांव-गांव भटकते रहे। कारण ये था कि उन्हें काबुलीवाला फिल्म में लोक संगीत का इस्तेमाल करते हुए अपना संगीत तैयार

लेकिन सलील चौधरी की पकड़ केवल बांग्ला लोक संगीत पर हो ऐसा नहीं था। हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक का सलील चौधरी का जुनून कुछ इस तरह था कि मुंबई के काला घोड़ा नामक इलाके में उन दिनों की एक मशहूर म्यूजिक शॉप में सलील चौधरी अक्सर नए रिकॉर्ड्स तलाश करते हुए पाए जाते और वेस्टर्न म्यूजिक का कोई नया रिकॉर्ड उन्हें नजर आता फौरन खरीद कर सुन लेते और अपने पास रख लेते। जब भी लता मंगेशकर किसी गाने की रिकॉर्डिंग या रिहर्सल के लिए सलील

के पास पहुंचती तो वेस्टर्न म्यूजिक का एक नया तोहफा उनका इंतजार कर रहा होता था। वेस्टर्न म्यूजिक की सलील चौधरी की दीवानगी की एक मिसाल सन 1961 फिल्म छाया, महान ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन मोजार्ट की 40वीं सिम्फनी पर आधारित ये गाना सिम्फनी की चाशनी में भीगा और सुरों की मिठास से थड़कता हुआ।

दिलचस्प बात यह है कि सलिल चौधरी ने अपने फिल्मी गानों में रवींद्र संगीत का भी इस्तेमाल किया है। फोक म्यूजिक, रवींद्र संगीत, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को जोड़कर सलिल चौधरी ने संगीत का नया मुहावरा गढ़ा था। यहां कुछ मजेदार बातें। सलिल चौधरी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन उन्होंने कई ऐसी फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जिनमें उनका संगीत नहीं था, जैसे बिमल रॉय की फिल्म देवदास, यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर, गुलजार की फिल्म मौसम, सुनील दत्त की फिल्म यादें वगैरह। सलिल चौधरी ने कई ऐसे गाने दिए हैं जो मूल रूप से बांग्ला में कंपोज हुए थे और उनका हिंदी संस्करण सलिल दा ने तैयार किया, जैसे फिल्म आनंद का ये गीत।

0: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,
0: और अमाय प्रश्नों करे नील ध्रुव तारा।

सलील दा ने केवल फिल्मी गाने ही तैयार किए हों ऐसा नहीं है। जब उनकी बेटी अंतरा छोटी थी तो उन्होंने बांग्ला के नर्सरी गीत तैयार किए। अंतरा इतनी छोटी थी कि माइक्रोफोन के सामने स्टूल रखकर उस पर उनको खड़ा करना पड़ता था। ये वो बांग्ला नर्सरी सॉन्ग हैं जिन्हें गाते हुए न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई हैं।

यहाँ हम इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि सलील चौधरी ने केवल फिल्मी गाने तैयार किए हों, ऐसा नहीं है। सलील चौधरी ने कई जनगीत तैयार किए और ये गीत नाट्य टोलियां और युवाओं की टोलियां आज भी गाया करती हैं, जैसे शैलेंद्र का लिखा ये बेमिसाल नगमा।

सलील चौधरी के संगीत का दायरा अपरिमित है, अपरिमित सही मायनों में है, क्योंकि एक तरफ इसमें हिंदी फिल्मी गीत हैं, दूसरी तरफ बांग्ला फिल्मी गीत हैं, लेकिन इसके अलावा गैर फिल्मी गीतों और अन्य भाषाओं के फिल्मी गीतों का एक विराट संसार है। गैर फिल्मी गीत हिंदी में भी हैं और बांग्ला में भी। इसके अलावा मलयालम में उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 27 फिल्मों में संगीत दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया। बांग्ला में 41 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया और कुल 13 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जिसमें हिंदी और बांग्ला और मलयालम के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया और असमी भाषा की फिल्में शामिल हैं। सन 1965 में आई थी फिल्म चिमीन। इस मलयालम फिल्म में सलील चौधरी ने अद्भुत संगीत दिया था। मन्ना डे के स्वर में ये मलयालम गीत सुनिए।

अब एक और दिलचस्प घटना की बारी। सन 1972 फिल्म अन्नदाता के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सलील चौधरी ने एक गीत बनाया जिसका मुखड़ा इतना लंबा था कि क्या कहें। अब इतना बड़ा स्केल, उन्हें लगा कि कौन गायक इसे गा पाएगा। इस गाने के लिए किशोर कुमार को चुना गया। हालांकि सलील दा डर रहे थे कि किशोर इस गाने को गाएंगे, निभा पाएंगे या नहीं। किशोर कुमार ने भी इस गाने को गाने से पहले तरह तरह के नखरे किए और तरह तरह की दिक्कतें दी। उन्होंने कहा कि वो वास्तविक जीवन तो छोड़िए, सपने में भी इस गाने को नहीं गा सकते। अब सलील चौधरी संकट में फंस गए। लेकिन जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक हुआ और किशोर कुमार पहुंचे और उन्होंने इस गाने को गाना शुरू किया, तो सलील दा और वहां मौजूद सारे साजिंदे चकित रह गए। एक ही बार में ये गाना रिकॉर्ड हुआ। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का बड़े मुखड़े वाला ये अद्भुत गीत फिल्म अन्नदा।

निर्देशन तीनों का जिम्मा सलील चौधरी ने संभाला था। सलील दा दुनिया भर का संगीत सुनते थे, केवल वेस्टर्न क्लासिकल नहीं बल्कि वेस्टर्न फोक से भी उनका बड़ा लगाव था। तभी तो उन्होंने जब लेव निपर की ट्यून मीडो लैंड सुनी तो इस हंगेरियन फोक ट्यून को उन्होंने हिंदी सिनेमा के एक कालजयी गाने में बदल दिया। वो गाना था ये।

सनी दा ने एक फिल्म भी निर्देशित की थी। सन 1966 में आई फिल्म पिंजरे के पंछी में मीना कुमारी, बलराज साहनी और महमूद थे। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और

यहाँ एक और मजेदार बात बताएं। बचपन के दिनों में एक दरबान को गाना गाते हुए उन्होंने सुना। ये गाना उनके जहन में छप गया। आगे चलकर सन 1954 में इसी धुन को उन्होंने फिल्म नौकरी के इस गाने में बदल दिया।

पुरस्कार, सम्मान, पेशेवर काम, धन संपत्ति, इन सब चीजों से सलील चौधरी को कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने संगीत के मुसाफिर थे। संगीत की दुनिया का ये मुसाफिर बस काम करता रहा। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी कौन सी फिल्में बड़े बैनर की हैं और कौन सी छोटी मोटी फिल्में हैं।

दुनिया के हर कोने में सलील चौधरी के संगीत को पसंद करने वाले, सराहने वाले और उनके दीवाने मौजूद हैं। अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता। सलील चौधरी भले मुख्य धारा के बहुत ही कामयाब और धनी संगीतकार नहीं रहे, लेकिन उन्होंने असली दौलत कमाई और वो दौलत थी संगीत के सुर और उनके प्रशंसक। तभी तो सलील दा के जाने के इतने बरस

0: मुख्य फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार सलील चौधरी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं। आई सुनते हैं चंद संदेश।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
8: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है।

0: आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। आई सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवल पढ़ती रहती। और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड़ प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुख मुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला। एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था, वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती है।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते, वो उपेक्षित सा महसूस करती। स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

0: बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज़ है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई?
1: छुट्टी कहाँ है, इतना काम है।

दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली। अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया, देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई, मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमा

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी। सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता, सबको उसकी जरूरत।

जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया। आहा।

तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी। कह देगी, रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं। बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है। चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं, तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया, और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक। रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र पर।

0: FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं चंद संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सलामे इश्क ये गीत अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। आवाजें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, अनजान के बोल, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र पर।

संगीत। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं, अभी तो जीले इस फिल्म से। इंदिवर के बोल हैं, सपन जगमोहन का संगीत।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अर्थ से। कैफी आजमी का लिखा गीत था, कुलदीप सिंह का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के सुरों में आशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। चित्रपट संगीत का ये सफ़र आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की बातचीत।
1: विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं शूटिंग कोच नेहा चौहान। नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू सो मच।
1: मुझे ये बताइए कि एक रेडियो स्टेशन में आके जो पहली फीलिंग है वो क्या थी आपको?
2: आई गेस रेडियो स्टेशन के अंदर मुझे ऐसे लगा कि म्यूजिक मेन, सो जो हम म्यूजिक के जो अलग अलग पुराने जो डिस्क आपने हमें दिखाए, तो उसकी जो खुशबू थी, जो एक ओल्ड खुशबू थी, दैट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक वो खुशबू और इतनी शांति जो है, ये बहुत ही, आई थिंक आई वाज सो हैप्पी टू बी हियर।
1: अच्छा, ये बताइए कि शूटिंग से नाता किस तरह से जुड़ा था आपका, और क्या आपने शूटिंग से ही शुरू किया था या किसी और खेल से शुरू किया था?
2: सो बचपन से हमने स्पोर्ट्स बहुत प्रायोरिटाइज किया था, मेरे पेरेंट्स ने, माय फादर, तो मेरे भाई और मैं हमेशा स्पोर्ट्स में थे।
1: लेकिन क्या माता पिता के साथ भी स्पोर्ट्स की परंपरा थी?
2: ऐसे तो नहीं थी, लेकिन मेरे फादर खेलते थे, उनके कॉलेज में बॉक्सिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो मेरे जो चाचा है वो क्रिकेट खेलते थे, तो आई गेस हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स, हम खाते पीते बस स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करते रहे। तो आई गेस दैट इज हाउ हम इंट्रोड्यूस हुए स्पोर्ट्स से। तो कोई भी चीज बिना स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ पे शुरुआत ही नहीं होती थी और एंड भी नहीं होता था। तो वैसे ही शूटिंग का जो इंट्रोडक्शन जो हुआ है, वो मैं 8th क्लास में थी और हमारे यहाँ पे हमारी स्कूल जो शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी स्कूल है, तो वहाँ पे एक शूटिंग रेंज, एक मेक टू शिफ्ट शूटिंग रेंज का इंट्रोडक्शन किया गया था थ्रू NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के। तो वो एक स्कूल लेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स था जो हम 8th and 9th क्लास में करते थे, तो वैसे हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करा था।
1: तो सबसे पहले गन तब हाथ मिली थी?
2: तब गन हाथ मिली थी, यस यस।
1: वो कैसी फीलिंग थी?
2: इट वॉज गुड। गन्स किसको पसंद नहीं आती है, मतलब कुछ अलग फीलिंग होती है आपको, जैसे हम जो मेले में हम शूट करते हैं गुब्बारे जो शूट करते हैं, तो आई गेस वहाँ से तो स्टार्ट होता ही है सबका, लेकिन वो स्कूल में वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहली बार चलाए थे तो एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा था, तो आई गेस यस यस, बट वो काफ़ी एक अच्छा, कुछ डिफरेंट करने का

0: जो एक फीलिंग है वो, क्योंकि हमेशा बंदूक हम देखते हैं कि यू नो आर्मी मिलिट्री एंड मूवीज में देखते थे,
1: बिल्कुल।
0: बट खुद हमें करने मिलता है, सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट फीलिंग।
1: और किस तरह से फिर शूटिंग की दुनिया में आपके कदम स्कूल के समय में आगे बढ़ते चले गए?
0: तो स्कूल में जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्कूल में आफ्टर स्कूल आवर्स शाम को प्रैक्टिस करते थे हम लोग, तब इतना कंपटीशन का ये नहीं था। सो ये मैं 98-99 की बात कर रही हूँ, तो इतना कंपटीशन का एक्सपोजर नहीं था तब। तो हमने स्कूल लेवल पे खेले काफ़ी स्कूल गेम्स वगैरह। तो उसके बाद स्कूल का जो जर्नी था वो, फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं ये कुछ अलग है और इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो आपको खुद के बारे में काफ़ी जानने को मिलता है। तो आई थिंक वहाँ से जो स्टार्ट हुआ, फिर रुइया कॉलेज में हमारी एक शूटिंग रेंज बन गई थी, तो वहां पे फिर मैं रुइया कॉलेज में शूटिंग करती थी। तो वैसे ही ये जर्नी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
1: जी।
0: और वैसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी।

0: वो आपको खुद के बारे में काफ़ी जानने को मिलता है. तो आई थिंक वहाँ से जो स्टार्ट हुआ, फिर रुइया कॉलेज में हमारी एक शूटिंग रेंज बन गई थी, तो वहाँ पे फिर मैं रुइया कॉलेज में शूटिंग करती थी. तो वैसे ही ये जर्नी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
1: जी,
0: और वैसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी.
1: ये जो कॉलेज के जमाने से शूटिंग करना और उसके बाद नेशनल तक चले जाना, ये सफर कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि स्कूल और कॉलेज अलग दुनिया होती है, और नेशनल तक चले जाना, उसके बीच का सफर जो है उसमें काफी जद्दोजहद रही होगी।
0: सो मुंबई में रेंजेस इतने नहीं थे जो शूटिंग रेंजेस है. एक जो रेंज है जो महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन है, जो वर्ली में है, तो वो एक रेंज है जहाँ पे शूटिंग की जाती थी. और एक चेतना कॉलेज करके है बांद्रा में, वहाँ पे एक ये था. तो दो तीन जगह जहाँ पे थी वहीं पे ये स्पोर्ट खेला जाता था, और हमारे स्कूल में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया था, क्योंकि जो चेतना कॉलेज में जो कोचिंग कर रहे थे वो यहाँ पे भी आए थे इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्कूल में देखने के लिए कि यहाँ पे शूटिंग करा जा सकता है क्या. तो आई गेस वो जर्नी जो थी, स्कूल तो हमारा घर से 5 मिनट ही था, तो वहाँ पे तो आसान था. लेकिन स्कूल से हम जब कहीं और दादर में जब रुइया कॉलेज जाना पड़ा, तो वो टाइम पे स्कूल कॉलेज मैनेज करना वो, और फिर भी अपना स्पोर्ट खेलना, आई गेस मुंबई में अगर आप दहिसर में रह रहे हो और आपको दादर जाना है, तो तब 1 आवर का जो ट्रैवल था ट्रेन में. सो मॉर्निंग हम 6 o'clock को निकलते थे, 7 o'clock के लेक्चर्स अटेंड करके, फिर दोपहर में शूटिंग का ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज वगैरह पूरा करके, हम 9 9:30 को मैं घर आती थी.
1: रात को?
0: यस, रात
1: अरे
0: को.
1: बाप रे, ये तो बहुत, 15 16 घंटे का।
0: यस यस, तो वो तो जर्नी वैसी ही ट्रैवल और जो भी ट्रेनिंग, और तो एक प्रकार का, और वो एनर्जी अलग थी, डिसिप्लिन ही अलग था, क्योंकि सब आपके साथ, बहुत सारे आपके साथ आपके कलीग्स जो थे वो भी करते थे, तो वो फन था. शूटिंग तब स्पोर्ट ये फन था, और वैसे ही शुरुआत हुई कॉलेज के, और उसी में फिर नेशनल के लिए हम क्वालिफाई कर दिए.
1: जी, मेडल्स मिलने की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
0: मेडल्स मुझे यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई थी, यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप से स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने 400 में से 397 शूट किया था. आई
1: गजब।
0: थिंक दैट वाज अ रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, तो वो तब किसी ने शूट नहीं किया था. एंड उसी के साथ स्टेट मेडल्स, एंड फिर नेशनल्स में, फिर मैं नेशनल्स में मेडल्स मिलना शुरू हो गया था. तो वैसे ही थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के स्टेट, नेशनल्स, यूनिवर्सिटी, ऐसी शुरुआत हो गई थी.
1: क्या बात है। अच्छा, एक अच्छे कोच की क्या भूमिका होती है, और आपकी जिंदगी में वो कोच कौन और कब आए?
0: कोच की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड वो मुझे कोच बनने के बाद ज़्यादा रियलाइज़ हुआ
1: बिल्कुल
0: कि कितना इम्पैक्ट एक कोच का होता है. मेरे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे कोच ने, मिस्टर संजय चक्रवर्ती, जो अंजलि भागवत, गगन नारंग और सुमा शिरूर, दीपाली देशपांडे, उनके कोच रह चुके थे. सो आई थिंक उन्होंने बहुत ही एक परसिस्टेंस जो होता है, डिसिप्लिन तो आई गेस हर
1: स्पोर्ट की
0: एक
1: जरूरत
0: स्पोर्ट
1: है।
0: की ज़रूरत है, हर एक लाइफ की ज़रूरत है, तो आई गेस वो तो उन्होंने सिखाया. लेकिन कंपटीशन को किस तरह आपको देखना है, एंड सिंस हमारा स्पोर्ट एक मेंटल स्पोर्ट है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसकी जो तैयारी करनी है वो उन्होंने, उनका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत रहा है.
1: शूटिंग जो है वो, जैसे कि आपने कहा, एक मेंटल गेम है, तो धीरज, फोकस, ये सब कैसे मेंटेन किया जाता है? उसका रूटीन क्या होता है? जब आप खुद शूट करती थी तो अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती थी?
0: सो जब मैं शूट कर रही थी, इतना एक्सपोजर नहीं था इन बहुत सारी चीज़ों का, तो हमारे लिए तो कोच ने कहा इतना आपको करना है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, या ये ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी है, या फिजिकल ट्रेनिंग करनी है. सो दैट वाज, एंड यही आपका काम है, उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं पार्टी पे नहीं जाना है, कोई बर्थडे पे नहीं जाना है. आई गेस वो बहुत पहले मैं स्कूल और कॉलेज से ही मुझे वो समझ में आ गया था कि आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये हमारे कोच ने हमें बहुत पहले बता दिया था. एंड मुझे लग रहा है वही कॉन्सेंट्रेशन बना, और वही चीज़ रिपीट कि दिन में इतने बजे उठना है, ये आपका रूटीन है।

0: ये करना है, कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर आपको 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, फिर आपको 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, फिर वही चीज़ आपको रूटीन में अगले दिन वही करना है. सो आई गेस वो चीज़ हमें वो बताई गई थी हमारे कोच ने और वही हम करते गए.
1: बिल्कुल
0: बट आज अगर आप मुझे पूछते हैं कि फोकस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है या कंसंट्रेशन, तो हमारे यहाँ अभी काफ़ी स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत इंक्लूजन हुआ है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, जो आपको बताते हैं कि स्पोर्ट को कैसे हैंडल करना है,
1: मेंटल तैयारी क्या,
0: मेंटल तैयारी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या खाना है ताकि आपका फोकस अच्छा रहे, जल्दी सोना है. हम तो पहले मतलब हम थक जाते थे और सो जाते थे, तो इतना एक्सपोजर नहीं था मोबाइल फोन का, तो कंसंट्रेशन अपने आप वो 3 घंटे में अपने आप हम फोकस हो जाते थे.
1: बिल्कुल। अच्छा, बतौर शूटर जो आपका करियर था वो किस तरह चला और वो कौन से हालात थे जिन्होंने आपको कोच बना दिया?
0: सो आई गेस एज अ शूटर तो सबसे पहला तो हमने जो स्टार्ट किया है वो एक स्पोर्ट के दौर पे, एक यू नो फिजिकल स्पोर्ट है तो आपको आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रखना है, तो वो ही एक गोल था. उसके बाद जब 2-4 साल के बाद जब मेडल्स मिलने लगे, देन आप थोड़े से ड्रीम करने लगते हैं कि ओके अभी इसके बाद क्या है, तो आप आपके आजू बाजू में जो इंस्पिरेशन है आप देखते हैं. तो आई गेस वो देख के तो सबसे पहला मेन कि ओलंपिक्स में जाना है या इंटरनेशनल में जाना है, तो वो गोल कॉलेज के टाइम हमने काफ़ी वो सोचने लगे थे हम उस बारे में. एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि शूटर के बाद मैंने कभी एज अ शूटर सोचा था कि मैं कोच बनूंगी. आइडियली मैंने रुइया कॉलेज से मतलब इकोनॉमिक ऑनर्स किया था एंड देन
1: जी,
0: फिर मैंने एमबीए किया था.
1: एमबीए करने की क्या वजह थी?
0: नहीं, एक साइड में बैकअप प्लान, बिकॉज स्पोर्ट के साथ एक
1: एजुकेशन चलते
0: एजुकेशन
1: रहे जी।
0: बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एजुकेशन ने. मुझे ऐसा लगता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट को आपको बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि वो एक बैलेंस देता है आपको. तो मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं स्पोर्ट करूँगी ही करूँगी, लेकिन मैं एजुकेशन को बैलेंस रखूँगी. तो आई गेस जब 2013 के अराउंड काफ़ी मैंने आई थिंक 12-15 साल शूटिंग करने के बाद आई वॉज नॉट सो हैप्पी विद द वे शूटिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि शूटिंग जो स्पोर्ट है हमारा वो उसका कोई एज लिमिट नहीं है, तो आपको मतलब आप 50-60 तक आप शूटिंग कर सकते हैं, तो उसका सिंस एज लिमिट नहीं है तो आप उसको छोड़ने का मौका आता नहीं है आप में, क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट में तो आप इंजर्ड होते हैं या यू नो
1: एक
0: कोई
1: लिमिट आती है.
0: लिमिट आती है, तो शूटिंग स्पोर्ट में वो लिमिट नहीं है. तो जब 2013 में मैंने सोचा कि नहीं अभी ये बैकअप तो है हमारे पास, तो लेट्स आप शूटिंग की जगह थोड़ा सा कॉरपोरेट में देखते हैं कि क्या है, तो मैंने 5 to 6 months मैं एक एचआर के ऑर्गेनाइजेशन में थी मैं, बट मैं बिल्कुल खुश नहीं थी वहाँ पे, बिकॉज इतनी पूरी ज़िंदगी आपकी स्पोर्ट में गई, आपके बहुत इम्पोर्टेंट डेज ऑफ योर करियर और लाइफ के जब स्पोर्ट में जाते हैं तो आप बहुत लॉस्ट फील करते हैं अचानक एक ऑफिस में कंस्ट्रेंट होके. फिर 2014 में एक जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने एकेडमी कुछ 15 साल पहले ओपन की थी अराउंड 2012-11-12 में, और हमने गुजरात में ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम शुरू करना था. तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पहुंचा, क्योंकि हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए. तो मैंने फिर बोला कि ठीक है मैं देख के बताती हूँ कि कोई कोच होगा जो वहाँ पे इंटरेस्ट रखेगा जाने के लिए. तो ऐसा तो कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने घर पे बात किया, मतलब कि क्या मैं जा सकती हूँ क्या गुजरात और एक्सप्लोर कर सकती हूँ ये क्या है. तो जॉब अच्छी थी मेरी, आई वॉज डूइंग गुड. घर वालों ने मुझे कहा, मेरे फादर ने कहा मुझे कि देखो तुमने इतने साल तुम्हारा पैशन खुद एक्सपीरियंस किया है, तुमको जाना है, तुम देखो जाके. तो ऐसे ही अहमदाबाद में एक स्कूल संस्कार धाम है, वहाँ पे हमारा ये टैलेंट एंड प्रोग्राम था गन फॉर ग्लोरी का, तो हम वहाँ पे गए. वो स्कूल में तो वो वहाँ के गुजरात के गांव-गांव से बच्चे आए,

0: थे काफी 12-13 साल के। तो वो ऐसे वो एक प्रोग्राम एक था गवर्नमेंट का, तो वो प्रोग्राम हम एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ से हम टैलेंट लेके हम ट्रेन करने। तो मुझे कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी। तो वैसे कोचिंग का जर्नी मेरा शुरू हुआ।
1: गजब। और आज ये स्थिति है कि बहुत स्टार खिलाड़ी जो हैं वो आपकी निगरानी में तैयारी कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के बारे में बताएं जिन्होंने बहुत नाम कमाया और इस वक्त आपके साथ सीख रहे हैं।
0: So, गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं।
1: वो गुजरात में ही मिली आपको?
0: यस जो प्रोग्राम हम रन कर रहे थे तो वो वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंडर आए थे।
1: किसी गांव से आई थी?
0: नहीं, वो शी वॉज फ्रॉम सिटी, वो गुजरात से ही थे। तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स थे, उनको वो जोड़ के हम वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे, तो वो टैलेंट सर्च से वो आए थे, तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। एंड आज भी हम साथ में हैं, शी इज एन अर्जुन अवार्डी वर्ल्ड नंबर 1। सो आई गेस वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी उनकी जर्नी की भी। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, सो आई गेस वो 2 एथलीट्स ऐसे थे जहाँ से उनकी मतलब शुरुआत हुई थी। धनुष है तेलंगाना से, हैदराबाद से है। तो बट कि सारे हमारे गन फॉर ग्लोरी एकेडमी का हिस्सा है, आज भी है। और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8। तो वो भी हमारे साथ है, हमारी एथलीट है। तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम करने का मौका मिला।
1: ये जो आपके प्रिय 2 टॉप एथलीट हैं, इनको आप कितने साल से सिखा रही हैं?
0: इलावेनिल को मैं सिखा रही हूँ पास्ट मोर देन 12 इयर्स से, और धनुष को भी 10 साल से वो मेरे साथ में है
1: जी।
0: और काफी दूसरे एथलीट्स भी जो है वो भी आज 8-8, 10-10 साल से साथ में है।
1: तो आपका ही जो तकरीबन 1 डेकेड से ज्यादा का कोचिंग का ये सफर है, जाहिर है पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी कोचिंग करने की, कोच बनने की, ये सेल्फ लर्न मामला रहा है सारा, आपने खुद को ऑर्गेनिकली डेवलप किया बतौर एक कोच?
0: सो स्टार्टिंग में ऑफ़ कोर्स बहुत लोगों के गाइडेंस मिले, जैसे गगन नारंग जी जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने काफ़ी कोचेस को देखा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में देखा हुआ था। मैं खुद मैंने काफ़ी कोचेस के साथ मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो बहुत लोगों के स्टाइल्स हमें पता थे। तो वैसे वो जर्नी गाइडेंस के थ्रू स्टार्ट हुई। लेकिन बहुत बड़ा मौका मुझे 2017 में हमारा जो सबसे बड़ा चेंज आया कोचिंग का, क्योंकि इतना कोचेस को सिखाने का इंडिया में आई थिंक बहुत सारे कम कोर्सेस थे, बट कोचिंग कैसे करते हैं वो कोर्सेस नहीं थे। तो 2017 में हमारी एकेडमी ने एक प्रोजेक्ट लीप करके एक प्रोग्राम था, और उसके साथ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके जो है उन्होंने कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम शुरू किया था। तो उस कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम के अंडर शूटिंग और बैडमिंटन थे, और कोचिंग कैसे करते हैं, आपको कोचिंग एथलीट को कैसे करनी है, वो कोर्सेस शुरू हो गए थे। वो उस पर्टिकुलर जो कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम का मेरे पे बहुत बहुत मुझ पर इम्पैक्ट रहा है, और उसमें लाइफ लेसन्स कोच ने कैसे एथलीट को बनाना है, वहाँ से शुरुआत हुई।
1: अच्छा, जिस जमाने में आप खेलती थी तब टेक्नोलॉजी का उतना असर नहीं था, आज हर खेल में टेक्नोलॉजी का दखल बहुत बढ़ गया है, तो कितना हेल्प करती है आज टेक्नोलॉजी बतौर कोच आप जब सिखाती हैं शूटर्स को?
0: सो टेक्नोलॉजी हमारे इसमें टेक्निक, ये किसी भी एथलीट को, टॉप एथलीट शायद बिकॉज वो बाहर खेलने जाते थे तो वो एक दूसरे को देख के बाहर के कंट्रीज में देख के सीख लेते थे, तो वही टेक्निक्स जो आती थी वो इंडिया में वो लेके आते थे और हम पे हम शेयर नॉलेज शेयरिंग जो बोलते हैं वो शेयर किया जाता था। तो टेक्नोलॉजी एज सच तो कुछ भी नहीं था। अभी जो फास्ट फॉरवर्ड, आप 10-15 साल फास्ट फॉरवर्ड मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी इक्विपमेंट ओरिएंटेड हमारा गेम हो चुका है। सो काफ़ी एप्लीकेशंस और काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आई हुई है, टूल्स आए हुए हैं जो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आपका स्पोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत पूरी दुनिया में शूटिंग के मामले में कहाँ पड़ता है और क्या भविष्य है हमारा?
0: भारत आई थिंक आप अगर देखोगे तो शूटिंग के जो ओलंपिक मेडल्स है वो

0: वो बहुत ही ज़्यादा है। आज हम 2004 से देख रहे हैं, तो ओलंपिक मेडल्स में हमने बहुत ही
1: लगातार आ रहे हैं,
0: लगातार मेडल्स है। कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में
1: वर्ल्ड
0: हम
1: चैंपियनशिप।
0: वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया हुआ है। तो आई गेस शूटिंग इज़ नंबर वन स्पोर्ट राइट नाउ इन इंडिया, और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो एथलीट्स बहुत जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है, उन्होंने अपने अपने एकेडमीज ओपन किए, और उतना गाइडेंस बढ़ गया है, एक्सपोजर बढ़ गया है। सो आई गेस शूटिंग इज़ वन ऑफ द नंबर वन स्पोर्ट इन इंडिया।
1: आपके स्कूल में एक छोटी सी शूटिंग रेंज शुरू होती है और आप जुड़ जाती हैं। गुजरात में एक ग्रासरूट प्रोग्राम होता है और आपको कुछ ऐसे एथलीट मिलते हैं जो आगे चल के नाम कमाते हैं। ये जो ग्रासरूट प्रोग्राम्स होते हैं, ये कितना मायने रखते हैं और आज देश के कोने कोने में शूटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए आप लोग क्या करें?
0: काफ़ी स्कूल्स में ये टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एटलीस्ट मैं एक एकेडमी के पर्सपेक्टिव से बोल सकती हूँ कि काफ़ी हमारे 20 एकेडमीज़ है, आज 20 ब्रांचेज है पूरे कंट्री में, जहाँ पे हमारे ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम्स बनते हैं, और वहाँ पे हमारी टीम जो है वो सर्च करती है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करती है टू सी कि शूटिंग स्पोर्ट के लिए कौन सा स्टूडेंट, एक कोई रॉ स्टूडेंट है
1: उसमें
0: जो
1: संभावनाएं कितनी हैं।
0: संभावना है कि जो टैलेंटेड है, और
1: जी
0: कुछ हमने काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स फिगर आउट किए हैं जो एक शूटिंग एथलीट, मतलब जो शूटर है, वो बनने के लिए चाहिए कुछ स्किल्स है। तो वो स्किल्स हम ढूंढते हैं काफ़ी स्कूल्स में, भुवनेश्वर है, पुणे है, आज गुजरात का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जबलपुर है, चेन्नई है, ये काफ़ी सारे जगहों पे हमने ये टैलेंट सर्च किए हुए हैं। और आज बहुत जगह पे जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, सो दैट इज़ ऑल्सो एक ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम ही है, जहाँ से कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और अपना सेंटर्स में हमारे वो ट्रेनिंग करते हैं और वो एज अ एथलीट डेवलप होता है।
1: अच्छा, जब आप शूटिंग नहीं कर रही होती हैं, फुर्सत के पल होते हैं, तो वो क्या करते हुए बीतते हैं?
0: कोचिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम कोचिंग करते हैं। जब नहीं करती हूँ तभी भी नेक्स्ट डे के बारे में सोचती हूँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन चलता रहता है कि ओके ये आज ये नेक्स्ट डे ये एथलीट करना है। लेकिन मैं आई लाइक रीडिंग, मैं रीडिंग बहुत अच्छा, मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, तो आई गेस ये बहुत सारे दो तीन चीज़ है जो मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ।
1: एक कोच के तौर पर ये जो उतार चढ़ाव हैं खिलाड़ियों के जीवन के, उनकी प्रोग्रेस के, कई बार नाकामी होती है, कई बार बड़ी कामयाबियां होती हैं, कई बार एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी के बीच की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है, खुद को और खिलाड़ियों को संभालना कितना मुश्किल होता है?
0: ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एथलीट्स इतनी मेहनत करते हैं, और आप सारे एथलीट्स हर बार आप मेडल नहीं जीत सकते हैं, या हर बार आप वही सेम ऊंचाइयां नहीं आप देख सकते हैं। तो हमारी बहुत अच्छी टीम होती है, बहुत लोग जुड़े होते हैं एक एथलीट के, कोच तो एक बोलते हैं कैप्टन है, लेकिन वो शिप को बनाने में बहुत सारे लोगों का इम्पोर्टेंस है। तो हम ये टीम आई गेस एक अच्छा एनवायरनमेंट एथलीट को देते हैं और हम संभाल लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम संभाल लेते हैं उस एथलीट को, उसकी जो जो ज़रूरत है वो टाइम पे, वो उसको देखना, उसको समझना, एंड फिर उसको वो काइंड ऑफ सपोर्ट देना। अगर आप वो कर सकते हैं तो वो आप मुश्किल नहीं है इतना।
1: आपके सिखाए हुए बच्चों को अर्जुन अवार्ड मिला है, कितना गर्व होता है?
0: बहुत ही इट्स प्राइड, रिकग्निशन इम्पॉर्टेंट है उनके काम के लिए, इन स्पोर्ट्स काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडल्स तो है ही, लेकिन अवार्ड्स ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है, एंड लेकिन एक नेशनल अवार्ड मिलना एथलीट को, और वो भी सबके सामने रिकग्नाइज होना पूरे, बिकॉज आप वो मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, तो
1: बिल्कुल।
0: मुझे लग रहा है कि इट्स अ प्राइड।
1: अच्छा, एक और बड़ा मकाम आपकी अपनी जर्नी में आया है, जब अभी अभी आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, अभी अवार्ड मिलना बाकी है। ये खबर जब आपको मिली तो क्या फीलिंग थी, क्या कैफियत थी?
0: फीलिंग तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि जितना काम हम करते हैं और इतने साल से जो काम किया है एंड उसका जब एक रिकग्निशन आपके एथलीट

0: स्वीट्स बनाने का आपको मिल रहा है, आई गेस एक अच्छा फीलिंग है, बहुत ही हम्बल फीलिंग है और ऑनर फील होता है कि आपको रेकग्नाइज किया गया है. सो आई गेस इट्स अ गुड फीलिंग.
1: अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड अब और कितनी दूर हैं, आने वाले सालों में किन किन मुकाबलों में अवार्ड्स की उम्मीद है?
0: सो अभी एशियन गेम्स है, सितंबर से एशियन गेम्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो 4 साल में एक बार आता है एंड इट इज़ मच लुक्ड आफ्टर, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स है और एशिया के टॉप, एशिया की जो कंट्रीज़ है और उसके टॉप एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है एशियन गेम्स. उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स है, उसका जो कोटा इवेंट होता है वहाँ से शुरुआत होगी.
1: बिल्कुल
0: सो काफ़ी दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं.
1: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं. और विविध भारती के स्टूडियो में आप आईं और अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन चलने से पहले अपनी पसंद का एक गाना जरूर बताइए जो हम अपने श्रोताओं को डेडिकेट करेंगे.
0: वैसे तो बहुत गाने, लेकिन एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग जो है वो है जब कोई बात बिगड़ जाए.
1: क्या बात है, जुर्म फिल्म का ये गाना सुनते हैं. आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
1: शुक्रिया.

0: मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है।

0: शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, आकाशवाणी दिल्ली से।

0: भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: थोड़ी ही देर में सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया। जागते रहो फिल्म से मुकेश की आवाज में पहला गीत सलील चौधरी का संगीत बद किया। आज है सलील चौधरी की पुण्यतिथि, हम उन्हें याद कर रहे हैं।

0: सच है क्या।
1: श्रोताओं, आज है संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि। उन्हें याद करते हुए आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उनके संगीतबद्ध किए कुछ गीत शामिल किए हैं। अगला गीत मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की बोल धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी याद।

0: होगी 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। दोपहर के ठीक 12:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। FM 103.1 MHz पर आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

बस इतना सा ख्वाब है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाजों में। गोल्डी पहल और श्यामराज का लिखा गीत था और आदि श्रीवास्तव का संगीतबद्ध किया। ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार आदि श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें याद करते हुए आपको उन्हीं के संगीतबद्ध किए कुछ गीत सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में उलझन फिल्म का गीत, मदन पाल ने इसे लिखा है, आदि श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी

0: विविध भारती में
1: चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3

0: रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवा रहे हैं आदेश श्रीवास्तव का ही संगीतबद्ध किया गीत। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, जगजीत सिंह और अलका याग्निक ने गाया है। फिल्म का नाम तरकीब।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत। अभिजीत और साथियों ने इसे गाया है, जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है आदि श्रीवास्तव ने।

0: अलका याग्निक, सुनीति चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले की आवाजों में ये अगला गीत आप सुनेंगे कभी खुशी कभी गम फिल्म से, समीर के बोल आदेश श्रीवास्तव का संगीत।
1: शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

कैलाश खैर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में देव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली के बोल, आदेश श्रीवास्तव की बनाई धुन।

देव फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न होने जा रहा है। आज हमने आपको संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत सुनाए, साथ ही संगीतकार आदि श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर भी हमने उनके संगीतबद्ध गीत आज यादों की महफिल कार्यक्रम में शामिल किए थे। ये सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस थोड़ी ही देर में होंगे हाजिर।

ऑलमोस्ट निल। आज के इस समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है। श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम हो गए हैं हाजिर। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुरीला सफर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही आज शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ सभी शिक्षकों को गुरुओं को नमन करते हुए करते हैं कार्यक्रम का आगाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की इबारत या टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं,

समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इनमें प्रदेश के 2 शिक्षक भी शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। उन्होंने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित

सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई और डिजिटल नवाचार को लेकर आज जयपुर में राजस्थान हेल्थ केयर समिट आयोजित की जा रही है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रही इस समिट का आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से किया जा रहा है। समिट में स्मार्ट और कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम पर चर्चा की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इसका उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधा में आ रही चुनौतियों पर समिट में चर्चा होगी। समिट में जो भी सुझाव प्राप्त होंगे वे राज्य सरकार के ध्यान में लाए जाएंगे। जयपुर जिले के 5 परीक्षा केंद्रों पर नीट पीजी 2026 परीक्षा आज दोबारा आयोजित की जा रही है। इसमें 2499 परीक्षार्थी भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रही यह परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा समन्वयक नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 30 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा के दौरान जयपुर के ION डिजिटल जोन, IDZ सीतापुर स्थित 2 परीक्षा केंद्रों में बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण बाधा आई थी। परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए अभ्यर्थियों के लिए इस पुण्य परीक्षा का आयोजन किया। पर्यावरण के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए गिद्धों के संरक्षण की जरूरत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और साथ ही अभिनेता और अभिनेत्री कौन है, तो पहले लेते हैं आपके कमेंट्स। आज के गीतों की लिस्ट में सारे गीत जाने पहचाने हैं और सदाबहार तो है ही, ऐसा हमारी एक श्रोता लिख रही है। गीतों का संसार बहुत बड़ा और अनोखा है। कभी कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सारा दिन हमारे साथ चलते हैं और रात को नींद की थपकियां देकर हमें सुला भी देते हैं। गीत क्या है, जब दुख हो तो हमें थाम लें और सुख में आनंद की बारिश कर दें। जीवन में बहुत सी बातें समझ के परे होती हैं, यह गीत भी ऐसे ही होते हैं। सुख दुख के साथ ही जीवन के लिए सबसे आवश्यक संजीवनी बूटी यह गीत ही तो है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बातें आपने हमसे साझा की है। गीत संगीत ना हो जीवन में तो कैसा जीवन। एक और श्रोता हमसे कह रहे हैं कि आज की इबारत की सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें प्रेम कोई दावा नहीं बल्कि एक धीमे धीमे भीतर उतरता हुआ एहसास है। यह प्रेम की उस दास्तां सी है जहां दो लोग शायद मिले कम हैं मगर एक दूसरे में ठहर बहुत गए हैं। संवादों के बीच छुपी शरारत, इंतजार और अनकही चाहत धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते का रूप लेती है जिसका कोई नाम नहीं। यहाँ सच और झूठ भी मोहब्बत के सामने अपना अर्थ खो देते हैं क्योंकि दिल जिसे सच मान ले उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। बस यह एहसास ही बचता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में कहानी बनकर नहीं एक खुशबू की तरह आते हैं, दिखाई नहीं देते मगर उनके भीतर, उनके गुजर जाने के बाद भी देर तक हमारे भीतर महकते रहते हैं। जी हाँ, एक श्रोता हमें लिख रहे हैं कि आनंद ही आनंद रहे, वो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही हमें इस तरह से कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने साथ ही गीत और फिल्मों के नाम भी लिख भेजे हैं जो उन्हें लगता है कि आज की इबारत के अनुसार बजने वाले हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक श्रोता लिखती है कि प्रेम यदि सच में प्रेम है तो वह हथेली की रेखा नहीं जिसे मुट्ठी में कैद कर लिया जाए, वह तो अनंत आकाश है जहां पक्षी को उड़ने की स्वतंत्रता भी है और लौट आने के लिए एक अपना घोंसला भी।

क्या बात है, आप सभी ने जवाब भी लिख भेजे हैं। फिल्म का नाम है आप बीती और अभिनेता और अभिनेत्री जो अभी हमने आपको गीत सुनवाया था उसमें थे हेमा मालिनी और शशि कपूर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने हमें लिख भेजे हैं। और अब अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म में सखियों के साथ जो अभिनेत्री गुनगुना रही हैं, वो कौन है, और साथ ही इसमें एक पक्षी भी दिखाई देता है इस गीत में, तो उसका भी नाम लिख भेजिए हमें।

0: अपने हुए पराए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में अभी हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत, और जो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं उनके जवाब आपने लिख भेजे हैं। कुछ ही देर में हम आपके कमेंट्स लेते हैं, उससे पहले लेते हैं ये संदेश।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता,
1: मार उड़ाई
0: एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी याद।

0: पैदा किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निदेशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक इंसान

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि धन्य हो, सब गीतों की पंक्तियां पहली लाइन में ही दी हैं और पूछती हैं कि कौन से गीत बजेंगे। चलो जो भी बजेंगे वो हम सुनेंगे, क्या बात है, जरूर सुनिए। और अच्छा ये बताइए कि जो गीत अभी हमने इन संदेशों से पहले बजाया था, क्या वो आपने बूझ लिया था आसानी से? हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज गद्यांश में इश्क मोहब्बत की खास कहानी उकेरी हुई है। इश्क कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसे सिर्फ किताबों में पढ़ा जाए, नहीं यह कोई ऐसा फलसफा है जिसे चंद जुमलों में समेटा जा सके। यह तो दो रूहों के बीच बहने वाली वह मध्यम सी नदी है जो खामोशी से बहती है लेकिन पूरे वजूद को सराबोर कर देती है। प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि जिस्म फना हो सकते हैं लेकिन दो दिलों के बीच धड़का हुआ सच्चा एहसास कायनात के जर्रे जर्रे में हमेशा के लिए अमर रहता है। न आंखों से बयां हुई, न लफ्जों में समा सकी यह इश्क, यह कहानी इश्क है, बस धड़कनों से गाई जा सकी। क्या बात है, क्या फरमाया है आपने। एक श्रोता कहते हैं कि सुमधुर सुरीले गीतों और श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें इबारत पढ़कर प्यार मोहब्बत की कहानी मधुर गीत गा रही है, दो दिलों के बीच की निशानी, खामोश एहसास की जुबानी, जवानी दीवानी की मस्तानी खुशबू आ रही है, इस तरह से उन्होंने कुछ गीत हमें सुझाए हैं।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज फिर इबारत में छिपे गीतों के मुखड़े और अंतरे से गीतों की गाड़ी आगे बढ़ेगी, जिसमें एक से बढ़कर एक गीतों की आमद दिखती है। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, दरिया में फेंक दू चाबी, इस तरह से उन्होंने हमें गीत भी लिख कर भेजे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भिन्न भिन्न गानों के ताने बाने में बुनी गई इश्किया इबारत दिल फेंक आशिक माशुकाओं के दिलों को छेड़ती हुई रोमानी प्रेम गाथा से सराबोर है। हुस्नो इश्क के इस टकराव में तहजीबी अदाएं हैं, छेड़खानी है, इकरार है तकरार, इनकार फिर अंत में स्वीकार भी है। मजबूर है दिलों के जज्बातों को बखूबी गीतों का

संकलन कर खूबसूरत रूप से सजाया गया है। दो दिलों के दरमियां बंद हुए अल्फाजों की चाबी ढूंढने के लिए संगीतमय दरिया में डूबने के लिए हम श्रोतागण भी सफर के इंतजार में बेताब है। क्या बात है, आप सुनते रहिए सुरीला सफर। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम जब शाश्वत अनुभूति के अस्तित्व को प्राप्त कर रहा होता है तो यहाँ से प्रेम कहानी स्मृति काव्य के रूप में परिणत होने लगती है और यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, जीवन समाप्त हो सकता है। लेकिन इस कहानी में जो शब्द गढ़े गए हैं वो किसी सीमा के बंधन से नहीं जुड़े होते, उनका विस्तार ब्रह्मांड में तरंगित हो जाता है। उससे प्रेम की रागिनी बांसुरी से निकलने वाली मधुर तान से जुड़कर कहानी को संगीतमय बना दिया करती है। इसी तरह से हमारे कई श्रोताओं ने हमें कई सारे गीत आज यहाँ लिखकर भेजे हैं। साथ ही एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम शायद वही है जब किसी की तलाश गलियों से निकलकर दिल की दहरी पर आ बैठे, फिर मुलाकात हो या ना हो, कहानी सच हो या आधी अधूरी, फर्क कहाँ पड़ता है। कुछ लोग मिलते नहीं, बस भीतर कहीं ठहर जाते हैं, उनकी आवाज खामोशी में सुनाई देती है, उनकी याद अकेलेपन में साथ चलती है। मोहब्बत का हिसाब बड़ा अजीब है, जिसे दिल में जगह दे दो उसे निकालने की कोई चाबी उम्र भर नहीं मिलती। बिल्कुल, एक बार जो दिल में बस जाए तो बस उसी का नाम हमारा दिल गुनगुनाता रहता है। इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत फिल्म ससुराल से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत है। शैलेंद्र ने बोल लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। आपको बताना है अभिनेत्री का नाम।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि अभी तक दिल ओ दिमाग तरबतर हैं आपने यादों की महफिल प्रोग्राम में सलिल चौधरी के जो गीत सुनवाए उसके खुमार में। आज की इबारत भी सुंदर गानों की तरफ इशारा कर रही है। प्रेम वो खुशबू है जो बिना चाहे भी फैल जाती है, बिना बताए सबको पता चल जाता है। किसी को दिल में बंद करके चाहे चाबी को दरिया में फेंक दो पर बंद ताला तो सबको नजर आ ही जाता है। बिना कहे कितनी कहानियां बन जाती हैं और वो अमर भी हो जाती।

इस गीत से पहले हमने जो गीत आपको सुनवाया था अपने हुए पराए फिल्म से, और हमने पूछा था कि इस गीत में कौन अभिनेत्री हैं जो गुनगुना रही हैं और साथ ही कौन सा पक्षी है। तो इसका जवाब आया है कि माला सिन्हा इस गीत में गुनगुना रही हैं सखियों के साथ, और साथ ही जो पक्षी है वो है मोर, जो भी साथ में नाच रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने हमसे साझा किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल में भी कोई बसता था, मगर ना खता उनसे हुई ना हमसे हुई, फिर भी यह दिल टूट गया, जिनकी वजह से हमने अपना पूरा करियर खत्म कर दिया और आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। अगर इस टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई गम भरा गीत हो तो सुनवा दीजिए। देखिए, गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। श्रोता ने लिखा है कि आप बीती का मतलब, एक्चुअली हमने जो गीत सुनवाया था फिल्म का नाम था आप बीती, तो उन्होंने इसी शब्द को उठाकर हमें बताना चाहा है कि स्वयं पर बीती हुई कुछ बातें, और ऐसा तकरीबन सबके साथ हुआ होगा, कुछ अच्छी कुछ आलतू फालतू बातें जरूर हुई होगी। इसे कह रहे हैं वो आप बीती, बिल्कुल।

साथी एक श्रोता ने हमें जवाब लिख भेजा है, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था फिल्म ससुराल से, क्या मिल गया क्या खो गया। हमने पूछा था कि कौन अभिनेत्री है इस गीत में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ससुराल का ये गीत है और बी सरोजा देवी अभिनेत्री, साथ ही राजेंद्र कुमार अभिनेता है। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख भेजा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुराना रेडियो खो गया है और नया फेसबुक पेज मिल गया है, क्या मिल गया और क्या खो गया, क्या बात है। और साथ ही एक श्रोता लिख रही है कि बहुत ही मस्त धुन बीच बीच में सुनवाई जा रही है जी, आप बस इस सफर का आनंद लेते जाइए। क्या बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब हमें लिख भेजे हैं हमारे प्रश्नों के। एक श्रोता ने लिखा है कि सच कह रहा हूं, मैंने तो अपनी धर्म पत्नी को दिल में उस दिन ही बंद कर दिया और चाबी दरिया में फेंक दी है, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था और पहली मुलाकात हुई थी, मेरी अंतिम सांसों तक मेरे दिल में बंद रहेगी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने बात कही है। अगर आपकी धर्मपत्नी ये बात सुन रही है तो आज उनसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा, है ना।

हमारे एक श्रोता ने ये जो धुन हमने बजाई है उसके बारे में लिखा है कि माना जनाब ने पुकारा नहीं, पेइंग गेस्ट फिल्म की ये धुन और माउथ ऑर्गन से ये सुन रहे हैं आप और मिलन गुप्ता, उन्होंने ये हमें लिखकर भेजी है इसकी डिटेल्स। और एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने हुए पराए अभिनेत्री माला सिन्हा और सखियों के साथ में खूबसूरत बगीचे में काफी हंसमुख तरीके से नृत्य कर रही हैं। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, बहार बनके वो मुस्कुराए, सही में सदाबहार बेहतरीन सुंदर गीत बज रहे हैं, इसके लिए वो हमें धन्यवाद भी कह रहे हैं और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं इसके लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और अब जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस फिल्म का नाम बता दीजिए

धन्यवाद दे रहे हैं। और अब जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस फिल्म का नाम बता दीजिए

बिल्कुल, देश से गांव में, गांव से गली में और गली से घर में, और घर के बाद सीधे दिल में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जरा जल्दी जल्दी मिला करो ना जी, लता दीदी के गाए सदाबहार सुरीले गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको देते हैं धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यह गीत काफी समय बाद सुनने को मिल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की गीतों भरी इबारत में मनमोहक गीतों की बौछारें बरसने वाली है, हम सभी श्रोता भी इन गीतों में झूमेंगे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। क्या बात है। एक श्रोता लिख रही है कि कभी किसी को ढूंढते ढूंढते हम शहर, गांव और गलियों से गुजरते हैं और पता चलता है कि जिसे तलाश रहे थे वो तो चुपचाप हमारे दिल में आकर बस चुका है। फिर कहानी सच्ची हो या आधी अधूरी, दिल को उसका साथ मिल जाए तो हर बात खूबसूरत लगने लगती है।

बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि आदि श्रीवास्तव जी की पुण्यतिथि पर यादव की महफिल प्रोग्राम उन्हीं पर केंद्रित था, वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी को यथायोग्य सादर सप्रेम और इस तरह का अभिनंदन वो कर रहे हैं। साथ ही वो सारे कार्यक्रमों से उन्होंने पिरोकर हमें ये संदेश लिख भेजा है, सुरीला सफर तक वो अब भी हमारे साथ बने हुए हैं विविध भारती पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये अपने होठों की बंसी बना ले, मुझे आरजू तो हमारी भी है ये, मगर डर है कि मौसम कहीं ये बदल न जाए। जी हाँ, हमें इस डर से उभरते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना ही पड़ेगा, तभी प्रणय के पथ का सृजन होगा और भय बिनु होए न प्रीति के रीति का मिलन होगा। इस कहानी के सच को समझने के लिए ही हो रहा है जो उसे समझने और उसी में रहने के धैर्य और संयम के साथ ही साथ उपजे साहस के साथ सत्य की दिशा के पहचान की आवश्यकता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। और साथ ही वो लिख रहे हैं कि आज अपने सुरीला सफर कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले गद्य पद्यमयी इमारत में विभिन्न फिल्मों के प्रणय पर गीतों की पंक्तियां अंतरे मुखड़े के रूप में रखी गई हैं और उनमें प्रणय के प्रमुख भाव समाये हुए हैं। परदेसी आया गांव में, गली में, घर में, हाँ घर से दिल में। जी हाँ, वे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में कोई ऐसा परदेसी इस तरह आकर समाया हुआ है। बहुतेरे तो उस पर भी शक ही नहीं अपितु सच में ऐसा हो सकता है, ऐसे उहापोह भरे माहौल में ही जीवन गुजार देते हैं और अपने हृदय में ही अवस्थित उस परदेसी से दूरी बनाए रखते हुए गाँव गली घर के परदेसी तलाश में ही लगे रहते हैं।

हमने आपसे पूछा था कि ये जो गीत हमने आपको सुनवाया, इस फिल्म का नाम क्या था? आप सभी के जवाब हमें मिल गए हैं, फिल्म का नाम प्रतिज्ञा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दूर की आवाज। मोहम्मद रफी का गाया गीत है। शकील बदायूनी ने इस गीत को रचा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने। फिल्म का नाम हमने आपको बता दिया है, अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आप हमें बताएं।

हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि आज की सुंदर सी इबारत बहुत से लोकप्रिय गानों से बनाई गई है। आईना चेहरा तो दिखाता है मगर मोहब्बत इंसान को उसकी असली कहानी दिखाती है। जब कोई दिल में उतर जाता है तब उसे भुलाने की कोई चाबी नहीं होती। कहानी चाहे खत्म हो जाए पर एहसास अपनी जगह बना रहता है। तो उन्होंने कई गीत भी हमें यहाँ पर सुझाए हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के काम की व्यस्तता की वजह से जवाब लिखने का समय नहीं मिल पाता। हमेशा की तरह बहुत सुंदर कार्यक्रम, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए और साथ ही सुनते रहिए विविध भारती के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फकीरा फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। लता मंगेशकर की आवाज और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत रविंद्र जैन गीतकार और संगीतकार।

हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की इबारत के सभी गाने बहुत अच्छे हैं और उनका पसंद का गीत भी उन्होंने साथ में लिख भेजा है। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्लफ मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

हमारे एक श्रोता हैं जो फिलिपिन मनीला से हमें मैसेज कर रहे हैं। जय हिंद, उन्होंने ये मैसेज किया है और वो सुरीला सफर सुन रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के संदेश भी हमें भेजे हैं।

और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि देश से गांव में, गांव से गली में, गली से घर में और फिर दिल में विविध भारती आ गया है। क्या बात है। लीजिए अब सुनिए गैम्बलर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और इसी गीत के साथ सुरीला सफर अब समाप्त होने की ओर है। आसपास फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। और इसी गीत के साथ दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। आप सभी के संदेशों के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: and in women's cricket. India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा ऐसा नहीं, पता ही नहीं।

0: किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है, क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकाश जी, मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
0: मैं काशी का सांसद हूँ तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर

0: अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप

आवाज इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, सलिल चौधरी का संगीत था। आनंद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल, सलिल चौधरी की बनाई थी।

0: गीतों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। छाया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो

0: सवरिया ओ सवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, लाल बत्ती फिल्म से। मन्ना डे की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। बैठे हैं देखो यहाँ शेर बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। लेके समाज का ये डंडा।

इसमें सवार कोई प्यार का भिखारी, ख्वाबों की दुल्हन साथ बिचारी। ओ बाबू प्यार के फरियादी, कर ले शादी है

लाल बत्ती फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750।

मनचाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको सबसे पहले बताएं कि हमारे टेलीपारा बिलासपुर से एक श्रोता हैं रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। इन्होंने हमें रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बहुत ही सुंदर सी राखी बनाकर पत्र भेजा है। बहुत ही सुंदर पत्र है ये। इन शुभकामनाओं के साथ हमने ये पत्र यहाँ इस कार्यक्रम में आज आपको बताने के लिए शामिल कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह पत्र भेजने के लिए, और आपको भी रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत लेते हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, आरजी बर्मन का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया कुदरत है फिल्म का नाम। और भेजने वाले हमारे जो श्रोता हैं जिनकी ये फरमाइश है, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और ये नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसके साथ ही जम्मन रेकवार, मूलचंद्र रेकवार, मनसुख रेकवार, लालचंद्र रेकवार और सरमन रेकवार, ग्राम गड़िम लहरा, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। साथ ही हमारे इंदौर के एक श्रोता हैं सृष्टि उपाध्याय, ये गीत सुनना चाहते हैं। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आशियाना फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, साथ ही महेंद्र कपूर ने। योगेश के बोल हैं और इस गीत की फरमाइश की है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद और सुनील प्रसाद ने, साथ ही नरोत्तम गोर लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, तिवरता छत्तीसगढ़ से अमृत लाल अग्रवाल, राजकुमारी अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, श्रुति, विवेक और विवान अग्रवाल ने, और साथ ही एडवोकेट बारिस अली खान, मोहम्मद दानिश, शहनाज खान, समीर अहमद और सबा। ये सुनना चाहते हैं लखनऊ से ये गीत।

आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नीरज के बोल थे और हरी अर्जुन का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी सुरोशी, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशी। साथ ही फरमाइश करता है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर। साथ ही रामलीला मैदान से हैं बाबा श्री शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, शिवांश मंजू, विजय मिश्रा, गोविंदा सोहू, अमन पीए और अभिजीत सिंह सांगा। और साथी घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी के साथ मॉडर्न टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार और सुनीता शर्मा ने फरमाइश की है इस गीत की, जिसे फिल्म किस्मत से हमने लिया है और महेंद्र कपूर की आवाज में नूर देवासी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन का, साथ ही श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई, गीताबा, धर्मराज, करणराज सिसोदिया परिवार, और किशोर गुप्ता दस्तूर नगर छतरी तालाब रोड अमरावती से, और साथ ही रविकांत गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता और आशीष साथी सुप्रिया ने हमें फरमाइश भेजी है मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसकी फरमाइश की है हमारे श्रोता जिन्होंने भाटापाड़ा से हमें ये पत्र लिखा है, हरमिंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, त्रिशमन कौर चावला और गुरु फतेह सिंह, साथ ही लक्ष्मण बागवानी, श्रीमती विमला बागवानी, श्रीमती दिशा बागवानी, ये श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, साथ ही मास्टर हर्ष व खुशी वाधवानी और शंकर नगर दुर्ग से मनिक सिंह बैस, कावेरी वनिता, लल्ली लेखमणि बैस और साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सचित और कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करड़ा सिरोड रिसोर्ट से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरबद देशमुख ये गीत सुनना चाह रहे हैं संबंध फिल्म का, आशा भोसले की आवाज में।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाएंगे हम। पत्र लिखा है प्रकाश दादा जैन, सूरज संगीता जैन और पीआर जैन ने, साथ ही सोनाली पथिक, कृष्ण आशा नारंग और सुरेश नारंग ने, और ग्राम साल्याखेड़ी आमर मालवा आगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा ने, मैसवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक नीना जी, स्वप्निल और अजय, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर ने ये गीत सुनना चाहते हैं प्यार किए जा फिल्म का। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम में सहयोग चंचल वर्मा और आकांक्षा विश्वकर्मा का था। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे। आंख की किरकिरी, रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग।
1: मैं हूं महेंद्र, बचपन से ही उस

0: मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी मां राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्ण। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी।
1: हाँ, मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है, महेंद्र की मां को ही अपनी मां समझता हूं और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है, मैं उनकी भक्ति करता हूं। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए
2: कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी,
3: लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहा था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। एक बार महेंद्र की मां अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई। उनके साथ बिहारी भी था। जब कलकत्ता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर ले आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई। अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी। लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, मां की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
4: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगे।
3: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ।
4: लेकिन आज इस मौसम में?
3: नहीं नहीं, ये नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
4: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी। घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथास्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूं। आशा को तो किसी काम का शुगर ही नहीं।
3: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
4: हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को वो मां के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
3: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
4: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
5: अरे महेंद्र, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
4: हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं जा सका। वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।
3: तुम बहुत देर से बैठे हो, लाओ सर में बाम लगा देती हूँ।
4: नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
3: अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो।
4: अच्छा,
3: कुछ आराम मिल रहा है?
4: हाँ।

0: लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही लिखा होगा।
1: ठीक तो है। अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
0: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें।
1: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा। मैं ही सरदर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने न देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका। मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
0: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं, कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, मैं यहां क्यों आई?
1: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है। तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
2: अर्थात
1: मेरे जैसे आदमी को जिसे कोई कभी पूछता नहीं,
2: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
0: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
1: वो तो अपना गुण न होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
0: बहन किरकिरी, भाई अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक तेवर मेरी आड़ में तुम्ही से मान की भिक्षा मांगने आया है, अरे कुछ दे दे।
3: हम जाते हैं।
1: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल दी जाती हैं, किंतु महेंद्र के साथ नकद कारोबार होता है।
2: बिहारी, ये तो क्या बक रहा है।
1: ठीक है, मैं चलता हूं।
0: अरे रे रे रे, आप निराश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूं।
1: महिंदा, तुम अपना सर्वनाश करना चाहते हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं उसका सर्वनाश ना करना।
2: पहेली मत बुझाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
1: साफ ही कहूंगा महिंदा, विनोद ने तुम्हें जानबूझ कर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर पढ़े जा रहे हो।
2: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
1: ठीक है, मैं जाता हूं।

0: हसन बेटी, तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तू हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है जी, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न बोलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया, इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है, तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है,

0: ब्रह्मा में दासी की तरह रखो, दंड दो, फिर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
1: चुन्नी, चुन्नी मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो चुन्नी।
0: नहीं, ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
1: चुन्नी, मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
0: सुनो, हमारी एक प्रार्थना है।
1: कहो।
0: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे?
1: और तुम भी?
0: चलो, तो हमें क्या लिखना आता है।

माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैस में जाकर रहेंगे, दिखाना चाहती है कि मेरी परवाह नहीं करती। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही मदा करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं क्या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है क्या प्रेम की? बच्चा ही जिस कारण भी हो, चलने के लिए क्या चलाने के लिए? मुझे महेंद्र की जरूरत है। मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहां जाएंगे? वो उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं।

0: इतने दिन हो गए लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों का स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों, यहाँ चुपचाप अकेले में क्या उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे, रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिख दो ना।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तू दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया है?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी, तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हो।

0: वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
1: इतने दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
2: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो, इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज, सब चिंताओं के बीच मुझे बेचती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बह कर आई हूं, बह कर चली जाती।
1: ये चिट्ठी, समझा, आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस प्रतिज्ञा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए और अब से मैं विनोदनी से दूरी रहूंगा। यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
0: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है। मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
3: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
0: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी? लोग क्या कहेंगे?
3: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारे ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो, किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
2: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपनी काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
1: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
2: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे।

0: सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना? वो हाँ, वो मेरी ताई जी है ना? वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
1: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ!
2: क्या है बेटे?
1: माँ बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
2: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
3: महिंदा, महिंदा, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते?
1: मैं नहीं जा सकूंगा।
3: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा?
1: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते।
3: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र, मैं जा रहा हूं।
0: लाला जी, लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
3: ना ना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं, मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं चलती हूं।
0: लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना।
4: समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया? पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा, लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदार वाणी फिर कब सुनूंगी? एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना तुम कैसे हो। तुम्हारी विनोद भाभी।
1: विनोद की चिट्ठी लेकर दरबान बिहारी के यहां गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दरबान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उसे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोद ने के मन की गति किस ओर है। तो क्या मैं विनोदनी से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है, उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा, मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा।
5: व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है, मैं जा रहा हूं।
0: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूं, चिट्ठी खुली हुई क्यों है?
4: समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख न मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।

0: बेटी देख रही हूँ कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: अच्छा अच्छा, तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहाँ है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेलखाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: जब बंधन स्वीकार किया है तो छाती कहाँ हो?
1: जी जी छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
0: अरे आशा, तू बेटी, महेंद्र तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
3: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
0: हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
3: उनकी बात मुझसे न पूछो।
0: अरे बता तू, क्या बात है?
3: वो मैं न बता सकूंगी।
0: बेटी बेटी सुन तो, सुन तो चुन्नी। हे भगवान, सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद शायद वो ही आ गई। चुन्नी चुन्नी बेटी, लाल टेबल के नीचे जा और दरवाजा खोल दे।
4: अच्छा मासी, खोलती हूँ।
1: हाँ
2: भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगी।
1: मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी मौसी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मौसी, उन्हें अभी यहाँ से चले जाने को कह दीजिए।
0: किसे चुन्नी, किसे?
1: वो बिहारी लाला जी है ना, वो यहाँ भी आ गए मौसी।
0: अच्छा बिहारी, बिहारी बिहारी।
2: काकी, मैं तुम्हारे मंगल चरणों का आश्रय लेने आया था।
0: क्या?
2: बस कुछ ना कहो, चलता हूं, प्रणाम।
3: सुनो, हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिहारी लाला जी एकाएक आशा हम यहाँ चले आए थे, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ। थाउची के लौटने का भी कुछ नहीं, तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ।
5: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।

0: के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: बॉम्बे टॉकीज,
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
3: दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप सुन रहे थे दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आप सुन रहे थे दीपाली इंडियन आइडल और अपने बचपन की बातें साझा कर रही थी और समय सीमा के तहत इस बातचीत को विराम देना पड़ा। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
4: ये जो भंवर वाला दौर था, झंझावात वाला दौर था, इससे निकलकर किसी फैसले पर दीपाली कैसे पहुंची?
5: हुआ ये कि जब हम वापस लैंड किए पटना एयरपोर्ट पे, तो काफी भीड़ आ गई थी एयरपोर्ट पे, मीडिया वाले सारे, पत्रकार और माइक्स और कैमरास। मेरे माता पिता पहली बार ऐसा देख रहे थे कुछ, क्योंकि अभी जो बेटी कुछ महीने पहले बंबई गई थी वो लौटी है, तो वो मेरी बेटी नहीं है, अब पूरे बिहार की बेटी के नाम से ये अब सिर्फ मेरी धरोहर नहीं है
4: जी।
5: और जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो मेरे पापा से सब पूछने लगे, अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जीवन में यही सत्य है, जो आपने पा लिया हो गया, उसको एंजॉय करने का हक इंसानों के अंदर वो संस्कार ही नहीं डाला गया है कि जो है
4: अब आगे क्या,
5: आगे क्या,
4: खुद को भी अभी तक ये पूरा स्वीकार नहीं हो रहा है मन को।
5: करेक्ट। और ये इंसानों की फितरत है, मतलब हम इसको, ये नहीं बदली जा सकती है, ये किसी एजुकेशन सिस्टम से भी नहीं बदला जा सकता, किसी संस्कार से भी नहीं बदला जा सकता, इसको कई करोड़ों जन्म लगेंगे कि जो आया है उसको जीना पूरी तरह से, जो स्थिति है चाहे खुशी हो चाहे गम हो उसको पूरी तरह से जीने दो। अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना। और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है, क्या क्या मतलब, क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी, दीपाली बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफी प्रेशर आया, उनको ये पहले देख के वो बिल्कुल, हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
5: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और मेरे पिताजी, इतनी मीडिया, इतने लोग, कुछ 200-250 लोग आ गए थे, फूल माला, और बच्चियां ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, मेरे घर पे लड़के आते थे बाइक से और फूल फेंक के जाते थे। ये स्थिति जब हम मुंबई में चल रहा था तो ये स्थिति होने लगी थी पटना में। मेरे साइज का बुके आता था घर पे, मेरे साइज के सॉफ्ट टॉयज आने लगे थे, अखबार में छपने लगा कि दीपाली का फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो वो लोग लेके घर आते थे इस उम्मीद पे कि दीपाली से मिलना हो जाएगा। तो इतना प्यार देख के अब तक मेरे पापा जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे जीवन में, क्योंकि बिहार में पापा मेरे पुलिस वाले थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और हमको जो असल में जो मेरे पिता का रोल प्ले करते थे वो थे मेरे चाचा, मेरे जिनको हम बाबूजी बोलते थे।
4: अच्छा।
5: बाबूजी ही हम लोगों को मेरा म्यूजिक स्कूल लेके जाना आना, बाबूजी ही सब कुछ करते। बट जब ये दौर हुआ जहां पर अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी फ्रंट फुट पे आए एयरपोर्ट पे और बोले दीपाली कुछ ही महीने में अब मुंबई शिफ्ट हो जाएगी और वहां जाकर हिंदी फिल्मों में गाना गाने की कोशिश करेगी।
4: उन्होंने एकदम बोल दिया,
5: पब्लिकली अनाउंस कर दिया। और घर आने के बाद मेरे पापा मम्मी की हो गई लड़ाई।
4: हाँ।
5: आपने ऐसा किस बेसिस पे बोल दिया, अब तो आ गई थी ना वापस, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मुंबई जाए, हमको बहुत डर लगता है उस जगह से, हम तो चाह रहे थे कि ये पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएगी, अभी भी छोटी है, अब तो शुरू हुआ है इसका, अब हार गई तो चलिए इसका भी शौक पूरा हो गया, इसको इंडियन आइडल में जाना था, हो गया ना, पूरा कर ली ना, टॉप 7 में आ गई, हो गया अब पढ़ाई करो। लेकिन अब तो हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा, इसके मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी उसको तोड़ा। 2 महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहां पे हम रह सके, क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं। तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी,

0: तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना जरूरी था क्योंकि हर दसवें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग, ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली, तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे दो और लड़कियां कमरा शेयर करती थी। बैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया। और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे, और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए। तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं,
1: और वो अच्छी रकम थी,
0: और वो बहुत अच्छी रकम थी।
1: आंखें एकदम,
0: खेल तो वहां से पलट गया सर।
1: हाँ।
0: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
1: बिल्कुल
0: ये क्या हो गया था। कुछ समय के लिए जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत हर, हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे यू नो पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप
1: थोड़े में खुश रहना,
0: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी, हाँ ये बात तो सही है पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
1: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
0: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
1: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
0: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
1: हाँ हाँ।
0: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
1: हाँ।
0: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
1: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी।
0: करेक्ट।
1: परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ, गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए को गाना जो आप गाती हैं बहुत सारा, पहले वो गाना सुनते हैं उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं।
0: बिल्कुल। हाँ।

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का
1: हिस्सा
0: बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना हमने सुना गंगा मैया तो है पीरे चढ़ेबो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली है, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो है, हाँ, जो सारेगामा
0: के प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ,
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी जितना बड़ा उनका ऑफिस था, हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर है, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे, तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में, मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड, सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो

0: हम भी डर गए, हमको लगा कि, तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है. और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज है वो भी चली जाएगी. तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को कि इस बहाने शायद ठीक हो जाए. बट आई टुक इट वेरी सीरियसली. तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं. तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में. और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे. रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से.
1: और ये जो गले की समस्या थी इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
0: नहीं
1: है.
0: नहीं पता था. अगर पता होता तो शायद, पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा तो भी हम ना नहीं बोलते.
1: बिल्कुल
0: नहीं बोल पाते.
1: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह.
0: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे. माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे. तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ. अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे. हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे पर अब तो आ चुके थे. चस्का तो वहां से भी लग चुका था. और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा. तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो यू नो
1: एक रूप है,
0: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग. और अच्छा है, डिसेंट है. भोजपुरी का जो उस समय इमेज था मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था. एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है. तो पहले कुछ दिन कुछ ही हमको लगता है कुछ है ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट.
1: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा.
0: Correct.
1: उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए.
0: सबसे पहले तो बड़की मलकाइन था. फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ. उसमें मेरा वैम्प का रोल था.
1: ये अलग चैलेंज हो गया.
0: ये अलग चैलेंज हो गया. सो मेरे लिए बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी. ये सारी चीजें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है. जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे. तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में.
1: बिल्कुल बिल्कुल. जिंदगी अपनी तरह से
0: आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू. क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है. तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया. जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था. स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले.
1: और ये जो गायकी वाला मामला था
0: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया.
1: और गला तब तक संभल गया था
0: पर रियाजी गला नहीं था वो. वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था. वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए. तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं. कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है. तो शोज अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था. और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं. ऐसा जीवन चल रहा था मेरा.
1: और मम्मी पापा तब तक पटना

0: ही थे?
1: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना, पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे, माँ आना जाना करती थी ऑफकोर्स, वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच, क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, यू नो, क्लास जा रहे आ रहे, पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी। मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ। हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आई थी तब, आने वाली थी या आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना, और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई, तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा। और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी। और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए। तो मेरी माँ को ये बात खटक गई, क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
0: ये बाद में बोला गया,
1: ये बाद में बोला गया जब उसने हमें मिलवा दिया। और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे। तो हमें ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, फेवर्स कोई फ्री में
0: करण बनते हैं।
1: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके, और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
0: तो ये तो मानना ही पड़ेगा,
1: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के आए हुए, हमारी तो दुनिया हिल गई। और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं, तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है, पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का, वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए। और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
0: अक्षरशः मान लिया उसने,
1: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ, यू नो, ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक।
0: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में,
1: एक्टिंग की दुनिया में। एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है, तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
0: ये यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही,
1: बिल्कुल,
0: और यहाँ से FTI दिखने लगा,
1: बिल्कुल।
0: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन?
1: हाँ, टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था, लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो। कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता।
0: तो आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना है।
1: हाँ, और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में।
0: हाँ हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना।
1: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में।
0: तो ये क्लासेस,
1: ये क्लासेस जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर, तो उन्होंने इतनी छूट दे दी तुम
0: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी तो
1: नहीं आओगी तो चलेगा। तो वो वहाँ पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है।
0: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है, और उसमें आपने

0: पर फोकस किया, हाँ, ये भी उतनी ही बड़ी बात, हाँ, है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
1: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है, मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर।
0: ये सारे संस्कारों का खेल,
1: ये सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर।
0: एक गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दी?
1: छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
0: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
1: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
0: FTII की तैयारी किस तरह की?
1: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है। फिल्म देखना, हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTII वॉज अ सीरियस बिजनेस। और वहां पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे, तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है। जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें, जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं, बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है। तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है, सो दैट आई कैन टेल माई ओन स्टोरी, मे बी यू नो, ये मेरे दिमाग में, ये
0: टू कंट्रोल द थिंग,
1: करेक्ट,
0: एंड टेल योर स्टोरी,
1: करेक्ट, टू टेल माई स्टोरी इन माई वेज। क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है, इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा, तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट।
0: तो उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वैक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
1: बिल्कुल,
0: ये कहानी बहुत गजब की है भाई।
1: हाँ,
0: इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
1: हाँ, फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए, हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता है,
0: नहीं, ये एक,
1: लेकिन ये लगे हुए हैं।
0: हाँ,
1: लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTII में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी, हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ, तो उसमें जो जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीजें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहां हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था, सिनेमा देखना भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को, मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख लें
0: या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और वो शान बगा लें,
1: कुछ भी नहीं आता था। मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छांट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे, वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी, इसलिए वो लड़की नहीं जीती। एक लड़की

0: ये सोच रही थी वो एफटीआई में निकाल लेगी, इसलिए उसने निकाल लिया। यही है, मन के हारे हारे मन के
1: मन के
0: जीते
1: जीते
0: जीत,
1: जी।
0: ये सत्य है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं, तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
0: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़ फाड़ करती हुई,
1: सब सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब
1: और जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग के बेसिस
0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 सीट होते हैं, जिनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी। तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए। हाँ। और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर
1: अलग अलग? अच्छा, ये एक अच्छी बात थी कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का। क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, भी ऐसे ही स्टूडियोज है। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे।
0: हाँ।
1: तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है, और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है। और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है, ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ। ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है।
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस।
1: देयर इज नो बाउंड्री। और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं।
0: बहुत सही।
1: नॉट जस्ट लिटरली, फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है। इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया। ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकली और नॉन फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली, ये FTII ने सिखाया हमको।
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे।
1: बिल्कुल। हमारी जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे। क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे। मतलब कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने जो, ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे। तो ये एक ऐसा बाउंड्री था, जो फिजिकल बाउंड्री था FTII का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे।
0: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग
1: ये
0: थे।
1: सब सिनेमा लवर्स। और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था। ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए, मेरे जैसा यू नो सीधा चलने

0: सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था, और वहां पर लोगों का सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट हैं। ये जो मेरा एक साल का जर्नी था FTII में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर, एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है।
1: वाह वाह वाह।
0: और हमारे यहाँ जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है, सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन FTII। तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा,
1: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
0: पूरा पूरा मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है, FTII उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत दीपाली को अडल्ट बनाया FTII ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली।
1: अच्छा।
0: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है, यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और FTII के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए, और वो एक इतना कथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
1: हल्का
0: हुआ,
1: हो जाना,
0: इतना हल्का महसूस हुआ, तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है, मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक।
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और वहां पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: यहाँ एक गाना सुन लें?
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कौन सा गाना होगा?

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की बोले हैं।
0: हाँ।
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: यहाँ से फिर बम्बई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो, अब करना क्या है, एफटीआई करके सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है, जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी, हजारों लाखों की भीड़ में भी, तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है। तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो, तो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो ऐसा भी सुनने मिलता था।
0: एक एनोनिमिटी मिली,
1: एक अनोनिमिटी मिली, और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं, अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है, और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप एफटीआई से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर, आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
0: बहुत सही
1: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार है, क्योंकि टारगेट ध्येय ये है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए,
0: हाँ।
1: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: वो पैशनेट लोग ही कर सकते हैं,
0: टीम की तरह।
1: अब जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे, अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए, अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने, और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स, और एफटीआई का तो हम मशहूर हैं बैचमेट्स, और
0: अलुमनाई
1: हमारा काफी तगड़ा है,
0: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता है,
1: बहुत जोरदार होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती। कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी,

0: ही दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि यू नो हर कोई वहां बैठना चाहता है। वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
1: पृथ्वी हाउस में होता है,
0: पृथ्वी हाउस में, पर पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर उसका नाम, हाँ उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैसी yes. साहब रहते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के और
1: वहां करते हैं।
0: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा। बट ये देखिए ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे, नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था ओ माय गॉड यू नो बाबा आजमी। एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए आप क्या सुना सकती हैं, तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है तो ये आपका दोस्त है तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है तो आप करती क्या है। तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं एफटीआई से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं। तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर, तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली, बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना, गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए हैं उसके साथ, उस मशीन के साथ। तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना तो पता उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है। तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है। और ये बात मेरे साथ रह गई, और उन्होंने उस साल हमको वहां मौका भी दिया कैफी साहब के
1: महफिल
0: में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
1: अनुपमा फिल्म का।
0: और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू।
1: वाह वाह वाह,
0: ये कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं।
1: फिर से एक दो रहा गया
0: आगे
1: बढ़ने से पहले वही गाना सुनना चाहिए।

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: एक गाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं, और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें हो रही थी। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल। बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। इसका तीसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज में। जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज। चलने से पहले आपको बता दें FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं महिला जगत का।

कैसी हैं हमारी सभी सखियां? उम्मीद करती हूँ अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगी और अपने मनपसंद कार्यक्रम को सुनने के लिए कर रही होंगी मेरा बेसब्री से इंतज़ार। तो लीजिए सखियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आपका अपना कार्यक्रम जिसका रहता है आपको इंतज़ार। अपना बचपन भी बड़ा कमाल हुआ करता था, न कल की फिक्र न आज का ठिकाना हुआ करता था। तभी तो याद है हमें हर वक्त बस बचपन का अंदाज आज भी याद आता है। बचपन का वो खिलखिलाना, दोस्तों से लड़ना रूठना मनाना। सखियों, क्या आप भी हो अपने बचपन के दोस्तों के संपर्क में? और हमारा आज का विषय भी यही है, बचपन के दोस्तों की याद। सखियों, समय के साथ हम सब अपनी ज़िंदगी, नौकरी और परिवार की भागदौड़ में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन उन पुराने दोस्तों की यादें आज भी मन को सुकून देती हैं। बचपन की दोस्ती में कोई मतलब या स्वार्थ नहीं होता था, बस एक टॉफ़ी बांटने से ही रिश्ता पक्का हो जाता था। गिल्ली डंडा खेलना, बारिश के पानी में कागज की नाव चलाना और पुराने टायर को डंडे से दौड़ाना हमारी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करते थे। बचपन की दोस्ती में ना कोई लालच होता और ना ही किसी प्रकार की अपेक्षाएं। यह रिश्ता केवल विश्वास, अपनेपन और सच्ची भावनाओं पर आधारित होता है। स्कूल के दिनों में साथ पढ़ना, खेलना और हर छोटी बड़ी बात साझा करना इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। इसलिए कहा गया है, दोस्ती की वो पुरानी कहानी है, दोस्ती की वो पुरानी कहानी है, यादों की सबसे सुंदर निशानी है। जो दोस्त बचपन से साथ हो वो ज़िंदगी की असली रवानी है। सखियों, बचपन की यादों में अगर किसी की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है तो वे होते हैं बचपन के दोस्त। बचपन की दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता, यह नहीं सोचा जाता कि सामने वाला कितना अमीर है और कितना सुंदर, उसके कितने अंक हैं या उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। दोस्ती बस इसलिए होती थी क्योंकि जो दिल को दिल अच्छा लगता था। आज जब हम अपनी व्यस्त ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी अचानक स्कूल का वह रास्ता याद आ जाता है। कंधे पर बैग, हाथ में पानी की बोतल और साथ चलते हुए दोस्तों की बातें। किसी दिन स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो दोस्त ही हिम्मत देते थे। परीक्षा के दिनों में एक दूसरे को पढ़ने के लिए कहते थे और खेल के समय पढ़ाई भूलकर मैदान में दौड़ पड़ते थे। समय आगे बढ़ा, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज आया, फिर नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां और ज़िंदगी की भागदौड़ शुरू हो गई। जो दोस्त कभी रोज़ मिलते थे उनसे मिलने के लिए अब महीनों और वर्षों का इंतज़ार होने लगा। किसी का फ़ोन नंबर बदल गया तो कोई दूसरे शहर चला गया, कोई विदेश में बस गया और किसी से संपर्क धीरे धीरे कम होता चला गया। सखियों, क्या आप आज भी अपने बचपन के दोस्तों के संपर्क में हैं? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे भीतर कई भावनाएं जगा देता है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनकी बचपन की दोस्ती आज भी कायम है। वे समय समय पर मिलते हैं और फ़ोन पर बातें करते हैं और पुराने किस्सों को याद करके हंसते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ जाते हैं। वर्षों बाद किसी दोस्त की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए वहीं रुक गया हो। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनसे अब कोई संपर्क नहीं है, उनके बारे में बस यादें हैं। एक चेहरा, एक आवाज़, कोई शरारत, स्कूल की कोई घटना और दिल में बसी एक खूबसूरत जगह। सखियों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा बचपन का दोस्त है जिससे वर्षों से बात नहीं हुई तो शायद आज उसे याद करने का दिन है।

हो सकता है वह भी आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हो। एक छोटा सा संदेश भेजिए। बहुत साल हो गए बात किए, आज अचानक बचपन याद आ गया और तुम्हारी भी। तो शायद सामने से जवाब आए, अरे मुझे भी तुम्हारी याद आती थी। और फिर शुरू हो जाए पुरानी यादों का सिलसिला। स्कूल की बातें, टीचर्स की बातें, टिफिन की बातें, खेल के मैदान की बातें, और वही पुरानी शरारत और वो अनगिनत हंसी के पल। तो कुछ रिश्तों को जीवित करने के लिए, कुछ रिश्तों को दोबारा जीवित करने के लिए बस एक छोटी सी पहल की ज़रूरत होती है, और उस पहल की शुरुआत आप आज से ही कर दीजिए। तो सखियो, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपके मनोरंजन का, तो चलिए मिलकर सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: सखी, उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। और अब हम बात करेंगे रानी की बावड़ी, इतिहास और स्थापत्य की अद्भुत धरोहर। सखियों, भारत की धरती पर ऐसी अनेक ऐतिहासिक धरोहरें बिखरी हुई हैं जो केवल पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतें नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत, कला, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच की जीवंत कहानी है। रानी की बावड़ी भी ऐसी ही एक अद्भुत धरोहर है जो अपने इतिहास, स्थापत्य कला और जल संरक्षण की अनूठी परंपरा के कारण विशेष महत्व रखती है। बावड़ियाँ राजस्थान और गुजरात की प्राचीन जल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में पानी का महत्व सदैव सर्वोपरि रहा है। उस समय जब आधुनिक जल संचयन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, तब हमारे पूर्वजों ने ऐसी अद्भुत बावड़ियों का निर्माण किया जो वर्षा के पानी को संचित करने के साथ साथ लोगों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन स्थल का काम भी करती थी। सखियों, रानी की बावड़ी का नाम अपने आप में राजसी वैभव और नारी शक्ति की याद दिलाता है।

बावड़ियों के निर्माण के पीछे केवल जल की आवश्यकता नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और लोक कल्याण की भावना भी जुड़ी हुई थी। राज परिवारों और तत्कालीन शासकों द्वारा निर्मित जल संरचनाएं उस समय की दूरदर्शिता का प्रमाण है। बावड़ी की सीढ़ियां हमें धीरे धीरे धरती की गहराई में ले जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति नीचे उतरता है, वैसे वैसे उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह इतिहास के किसी पुराने अध्याय में प्रवेश कर रहा हो। सखियो, रानी की बावड़ी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्थापत्य कला है। पत्थरों को जिस बारीकी और सुंदरता से तराशा गया, वह आज भी आश्चर्य उत्पन्न करता है। स्तंभों, मेहराबों, दीवारों और सीढ़ियों की बनावट में सौंदर्य का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। बावड़ी की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी भारतीय कला की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। फूल पत्तियों, देवी देवताओं, पशु पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियां पत्थरों को जीवंत बना देती हैं। सखियो, रानी की बावड़ी केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि आज के समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। जिस समय जल संरक्षण आधुनिक चर्चा का विषय नहीं था, उस समय हमारे पूर्वजों ने पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए विशाल जल संरचनाएं बनाई। आज जब उनके क्षेत्रों में जल संकट बढ़ रहा है, तब हमारी प्राचीन बावड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि जल ही जीवन है और उसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बहनों, ऐतिहासिक धरोहरें केवल अतीत की निशानी नहीं होती, वे आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी होती हैं। रानी की बावड़ी हमें इतिहास, वास्तुकला, पर्यावरण और सामाजिक जीवन चारों का सुंदर संगम दिखाई देती है। तो सखियों, अब वक्त हो गया है आपके मनोरंजन का, तो चलिए मिलकर सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

सखी उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा और अब कुछ बात कर लेते हैं अपनी स्किन केयर की। सुंदर और स्वस्थ त्वचा हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन त्वचा की सुंदरता केवल महंगे कॉस्मेटिक्स या मेकअप से नहीं आती। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी त्वचा की नियमित और सही तरीके से देखभाल करें। जिस तरह हम अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी तरह त्वचा को भी रोज़ थोड़ा समय देना चाहिए। सखी, सुबह उठकर सबसे पहले चेहरे को हल्के और त्वचा के अनुकूल फेस वॉश से साफ करें। इससे रात भर त्वचा पर जमा तेल और धूल साफ हो जाती है। इसके बाद त्वचा को मुलायम रखने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाएं। दिन में घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। धूप की किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, बाहर जाते समय सनस्क्रीन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। सखियों, हर व्यक्ति की त्वचा अलग अलग

होती है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर वही उत्पाद अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अपनी त्वचा के प्रकार और ज़रूरत के हिसाब से उत्पाद चुनें। नया कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने से पहले त्वचा पर उसकी संवेदनशीलता की जांच करना भी अच्छा रहता है। बार बार चेहरे को छूना, मुहासों को दबाना, बहुत तेज स्क्रब करना या ज़रूरत से ज़्यादा उत्पाद लगाना त्वचा को परेशान कर सकता है। सखियों, रात में त्वचा की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। यदि दिन में मेकअप या सनस्क्रीन लगाया है तो सोने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। चेहरे को हल्के क्लेंजर से धोकर मॉइस्चराइज़र लगाएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेकअप लगाकर सोने की आदत ना बनाएं। त्वचा को भी आराम और स्वच्छता की ज़रूरत होती है। सखियों, केवल बाहर से की गई देखभाल ही पर्याप्त नहीं है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन भी ज़रूरी है। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ भोजन में शामिल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी शरीर और त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ त्वचा के लिए अच्छी नींद और मानसिक शांति भी ज़रूरी है। नियमित नींद, हल्का व्यायाम, योग या ध्यान जैसी स्वस्थ आदतें संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ त्वचा के लिए भी लाभदायक हो सकती हैं। सखियों, हमारा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त आपकी सखी रश्मि को।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंकिता सिंह धान का स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आशा करती हूं कि आप सभी कुशल होंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सेक उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। त्याग की भट्टी में जलकर ही इंसान कुंदन बनता है, त्याग की भट्टी में जलकर ही इंसान कुंदन बनता है, जो खोने से डरे वो पाने

का हुनर कहाँ सीखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। दोस्तों, आज की लाइफ में हम सब कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। बड़ा करियर, ढेर सारा पैसा, मान सम्मान और ढेरों खुशियाँ। कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है तो कोई हैप्पीनेस की तलाश कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाने का असली सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट है त्याग, यानी कुछ खोना। वो कहते हैं ना, बिना कुछ खोए कुछ पाना मुमकिन नहीं, बिना कुछ खोए कुछ पाना मुमकिन नहीं, हवा भी तब मिलती है जब सांस छोड़ी जाती है। जी हाँ, कितनी गहरी बात है ना। अगर हमें एक नई सांस लेनी है तो पहले से अंदर मौजूद सांस को छोड़ना पड़ता है। हम बिना एक्सपायर किए इंस्पायर नहीं कर सकते। यही कुदरत का सबसे बड़ा रूल है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक छोटा सा बीज जब तक मिट्टी में दफन होने का त्याग नहीं करता, तब तक वो एक विशाल पेड़ नहीं बन पाता। एक पत्थर जब तक एक हथौड़े की मार सहन करने का त्याग नहीं करता, तब तक वो मूरत नहीं बन सकता। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें रिजल्ट्स तो तुरंत चाहिए, बट उसके लिए जो हार्ड वर्क और कंफर्ट जोन का त्याग करना पड़ता है उससे कतराते हैं। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। दोस्तों, चिड़िया भी अपना घर बनाने के लिए अपने आराम का त्याग करती है। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नींद, आलस और कभी कभी अपने सोशल मीडिया के स्क्रोलिंग टाइम का भी त्याग करना होगा। इसलिए फ्रेंड्स, त्याग से डरिए मत। ये कोई नुकसान नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है एक बेहतर कल के लिए। जब भी आपको लाइफ में कुछ छोड़ना पड़े तो समझ जाना, कुदरत आपको बहुत कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है।

0: तो दोस्तों, आज है सैटरडे और हर सैटरडे हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की दो कॉलेज फ्रेंड्स ने कमाल कर दिया है। इनका नाम आकृति वर्मा और भव्या झुंझुनवाला है। इन दोनों ने मिलकर थोड़े ही समय में एक सफल ब्रांड बना डाला। इसकी शुरुआत 2024 में सिर्फ 40,000 रुपए से हुई थी। अब उनकी इससे लाखों की कमाई हो रही है। आकृति वर्मा लखनऊ से हैं और भव्या झुंझुनवाला कानपुर से। दोनों ने दुनिया भर में तेजी से फैलते फास्ट फैशन के कचरे और स्थानीय कारीगरों की अनदेखी को चुनौती देने के लिए एक नई राह चुनी है। 2024 में इन सहेलियों ने फैशन स्टार्टअप की नींव रखी। इसका नाम सो मच बेटर है। सिर्फ 30,000 से 40,000 रुपए की शुरुआती पूंजी से कानपुर के एक पुराने मकान को स्टूडियो बनाकर इसे शुरू किया गया। यह ब्रांड आज मंदिर में चढ़े फूलों और हर्बल रंगों का प्रयोग कर खूबसूरत इको फ्रेंडली साड़ियाँ, शर्ट्स और स्कार्फ्स बना रहा है। इन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जैसी हस्तियाँ भी पहन चुकी है। दोस्तों, इस ब्रांड की मेकिंग प्रोसेस पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यहाँ कपड़े को पक्का करने के लिए हरड़ या फिटकरी से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद मंदिरों और गलियों से जुटाए गए गेंदे के फूलों और पत्तियों को कपड़े पर बिछाकर भाप से नेचुरल प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक की जगह मक्के के स्टार्च से बने बायोग्रेडेबल शीट्स का यूज किया जाता है। बच्चे फूल पत्तियों का यूज कंपोस्ट बनाकर पौधों के लिए करते हैं। पैकेजिंग के लिए स्थानीय बुटीक से बचे कपड़ों के टुकड़ों से झोले तैयार किए जाते हैं। इससे ये पूरी तरह जीरो वेस्ट मॉडल बनता है। फास्ट फैशन की बड़ी मशीनों के उलट इस ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट पूरी तरह से हस्त निर्मित है। एक सिंगल स्कार्फ को तैयार करने में 4 लोगों की टीम को लगभग 6 से 7 दिन का समय लगता है। भव्य और आकृति का टारगेट अगले 5 सालों में ग्राहकों को सस्टेनेबल फैशन के प्रति जागरूक करना है और इस भारतीय इको लग्जरी ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर हम ठान लें तो हम लाइफ में कुछ भी पास।
1: चलवा चलवा।

दोस्तों अब टाइम हो गया है हमारी आज की जानकारी के बारे में जानने का। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों की सुरक्षा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। अब हाईवे पर दुर्घटना होने के बाद एम्बुलेंस के देर से पहुंचने का बहाना नहीं चलेगा। NHAI ने इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम को लेकर बेहद सख्त गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत एम्बुलेंस को हादसे की सूचना मिलते ही 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना होगा। नियमों का पालन ना करने पर ठेकेदारों और एम्बुलेंस चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। NHAI ने दूरी के हिसाब से पहुंचने का समय भी तय कर दिया है। दुर्घटना अगर 10 किलोमीटर के दायरे में हुई है तो एम्बुलेंस को टिकट मिलने के 10 मिनट के अंदर दुर्घटना स्थल पर पहुंचना होगा। यदि हादसा 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हुआ है तो दूरी के हिसाब से पहुंचने का समय तय होगा। अगर एम्बुलेंस तय समय पर मौके पर नहीं पहुंचती तो ₹10,000 प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा। केवल हादसे की जगह पर पहुंचना ही काफी नहीं होगा। NHAI ने यह भी तय किया है कि इमरजेंसी टिकट मिलने के 1 घंटे के भीतर घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाना होगा। यदि मरीज को अस्पताल में ले जाने में देरी होती है तो इसके लिए भी ₹10,000 प्रति मामला जुर्माना वसूला जाएगा। NHAI के संज्ञान में आया था कि कई ठेकेदार और एम्बुलेंस एजेंसियां लापरवाही बरतती हैं। वे GPS बंद रखती हैं या मोबाइल ऐप का यूज नहीं करती। इसे रोकने के लिए तकनीक को जटिल बना दिया है। एम्बुलेंस, क्रेन्स और गश्ती वाहनों में AIS 140 GPS सिस्टम और 10T सिम वाले एंड्रॉइड डिवाइस कंपलसरी कर दिए गए हैं। यदि कोई ऑन रोड यूनिट NHAI केयर ऐप का इस्तेमाल नहीं करती या GPS बंद रखती है या डैशबोर्ड पर ऑनलाइन नहीं दिखती तो ₹2,500 का रोजाना का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी निरीक्षण में एम्बुलेंस के अंदर जरूरी उपकरण, दवाएं, EMT या ड्राइवर नदारद मिले तो प्रति निरीक्षण ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हर साल भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन देश के उन शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का दिन है, जो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, सोच और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन विशेष कार्यक्रम, भाषण, सांस्कृतिक आयोजन और शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस के लिए 5 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई है? इसके पीछे देश के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत

के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन और शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण जुड़ा है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की वजह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे देश के प्रमुख दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनेताओं में शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उनके शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने का तरीका है। कहा जाता है कि उनके कुछ विद्यार्थियों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई तो राधा कृष्णन ने व्यक्तिगत जन्मदिन समारोह के बजाय इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के अवसर के रूप में मनाने का सुझाव दिया। इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा विकसित हुई। इसलिए 5 सितंबर को केवल किसी महान व्यक्ति की जयंती नहीं बल्कि शिक्षा और शिक्षक की भूमिका को सम्मान देने वाला दिन बन गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा संबंधी विचार आज भी शिक्षक दिवस की आत्मा माने जा सकते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल दक्षता हासिल करवाना नहीं था बल्कि विद्यार्थियों में विवेक और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना था।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर STD कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
5: अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।

0: ड्रग्स का मामला है, बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा से नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

6:10 का समय रहेगा विशेष वार्ता का। वार्ताकार होंगे श्री नारायण लाल पुरोहित। फिल्म संगीत का समय रहेगा 6:19 से। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा 7:00 आकाशवाणी जयपुर से। 7:30 का समय रहेगा महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। 8:45 का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का। 9:15 का समय रहेगा महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल का। 11:45 पर हमारी सभा की होगी समाप्ति। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के मुख्य आपको बता देते हैं कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की बारे में। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा 6:00 आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम वंदनवार चिंतन का समय रहेगा 6:05 पर।

सवेरे 6:05 पर, कार्यक्रम झरोखा ये आप सुन सकेंगे सवेरे 6:30 पर, रामचरितमानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:35 का, सवेरे 6:45 का समय रहेगा संगीत सरिता का, कार्यक्रम नमस्कार अलवर आप सुन सकेंगे सवेरे 7:00, फिल्म संगीत का समय रहेगा सवेरे 7:30 का, समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से सवेरे 8:00, सुगम संगीत का समय रहेगा सवेरे 8:15 का, कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका का समय रहेगा सवेरे 8:30 का, हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सवेरे 9:00 आकाशवाणी जयपुर से।

0: विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा सवेरे 9:10 पर, 10:01 पर, 11:01 पर, दोपहर 12:05 पर, 12:16 पर, दोपहर 1:05 पर और 2:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे दोपहर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा दोपहर 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से। अंग्रेजी में समाचार और दोपहर समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2 बजे और 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम फुलवारी का समय रहेगा शाम 5 बजे। युवानी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे और रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम ग्राम भारती आप सुनेंगे शाम 7 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:15 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, समय रहेगा 8:45 पर। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 का। और इसी के साथ हमारी आज की सभा भी संपन्न होगी, कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए आइए अब आपको सुनवाते हैं विशेष वार्ता शिक्षक दिवस का महात्म्य। वार्ताकार होंगे श्री नारायण लाल पुरोहित।
1: समाज बनाने का काम करते हैं, समाज के शिल्पकार जो है शिक्षक। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज के को तराशते हैं। शिक्षक का काम केवल किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलवाने के लिए हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिश की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1988 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुताणी में डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ। उनके पिता सर्वपल्ली वी रामास्वामी और माता श्रीमती सीता झा एक गरीब ब्राह्मण थे। वे तिरुताणी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। आप अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन परिवार में मौजूद थी। आय अत्यधिक सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद उसको भी सुशोभित किया। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपका शुरुआती जीवन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही बीता। यद्यपि इनके पिता धार्मिक विचारों वाले इंसान थे लेकिन फिर भी उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूर्थन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला कराया। उन्होंने विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। कला संकाय में स्नातक की परीक्षा में वह प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और जल्द ही मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक

प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी हिंदू विचारक भी थे। आपने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। यही बात थी कि इन्हीं के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह एक आदर्श शिक्षक भी थे। इनके पुत्र डॉक्टर एस गोपालन ने 1979 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। इसके पूर्व डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व तथा जीवन की घटनाओं के संबंध में किसी को भी आधिकारिक जानकारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर एस गोपालन ने 1952 में न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफी के नाम से एक श्रृंखला पेश की, जिसमें राधाकृष्णन के बारे में आधिकारिक रूप से लिखा गया। स्वयं राधाकृष्णन ने इसमें दर्ज सामग्री को कभी अलग नहीं बताया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जीवडीए स्कूल तिरुवलम, लूथेर मिशनरी स्कूल तिरुपति और हेरिटेज कॉलेज वेल्लूर और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। उन्हें दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी बीए और एमए की डिग्री दर्शन शास्त्र में ली। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमए की डिग्री पूरी की। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और जल्दी 1921 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के लिए नामित हुए। हिंदू दर्शन शास्त्रों पर लेक्चरर देने के लिए बाद में इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने प्रयासों के द्वारा दुनिया के मानचित्रों पर भारतीय दर्शन शास्त्र को रखने में भी सफलता प्राप्त की, सक्षम हुए। बाद में 1931 में 1939 में ये आंध्र विश्वविद्यालय और 1964 में यूनेस्को, 1949 में सोवियत यूनियन के एम्बेसडर के रूप में भी काम किया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। शिक्षक के रूप में यह कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, देशवासियों को, कि हम सभी शिक्षकों को आपका जन्मदिन यह स्मरण कराता है कि हम राष्ट्र निर्माता शिक्षक अपने गुरु पद को संजोए हुए भारत देश को पुनः विश्व गुरु का पद स्थापन करवाने हेतु हमारे द्वारा दी जा रही शिक्षा को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो चल रही है उसमें भी यदि संभव है तो उसको दुरुस्त करवाकर अमल में लाते हुए बाल संस्कार लक्ष्य बनाकर इस शिक्षा नीति को भारत के भावी कर्णधारों को राष्ट्रभक्त नागरिक निर्मित करने में काम में लेवे। विद्यार्थियों के इस बाल मन में मानवता, वसुधैव कुटुंबकम, सामाजिक सरोकार, सदचरित्रता, सरोबार बुद्धि, सत्य अहिंसा, करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता, विनयशीलता, सेवा, परोपकार, इंसानियत, महत्वाकांक्षा आदि का विकास करने की नैतिक जिम्मेदारी हम गुरुजनों की है। शिक्षार्थी के बाल मन में सागर की लहरों सा ख्वाबी उत्प्लावन को माता पिता, समाज, राष्ट्र को झंझे हुए शैक्षिक उत्थान को हिमालय की वादियों से भी ऊंचा उठाने का हमारा प्रयास हो। इन अनगिनत फूल झड़ियों सी मुस्कान को आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, भौतिकवाद, अर्थवाद, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि से भी हम दूर रखें। इस नन्ही मुस्कान को रुदन और क्रुंदन में परिवर्तित न होने दें। यह बाल ब्रह्मचारी कदम जो है वो सही राह की ओर अग्रसर होते निरंतर आगे बढ़ें। इनमें हम शिक्षक नेतृत्व मार्गदर्शन इनको प्रदान करें जिससे कि ये निरंतर आगे बढ़ते रहें। आजकल विद्यार्थियों में कुछ दूर व्यसन ग्रहण करने की दुर्भाग्यपूर्ण लत भी पड़ती देखी जा रही है, जिसमें समाज, प्रशासन, अभिभावक सभी को साथ लेकर इसे रोकने हेतु भी हमें आगे बढ़ना होगा। नशा मुक्ति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षण हमारा मुख्य कार्य अवश्य है, लेकिन हम निस्वार्थ रहकर विद्यार्थी का संपूर्ण व्यक्तित्व, सर्वांगीण विकास भी करें, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ शारीरिक, मानसिक, भौतिक स्वच्छता पर भी हमें ध्यान आकृष्ट करना है। स्वच्छ भारत अभियान को भी मजबूती प्रदान करनी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, ऋषि मुनियों की प्रतिपादित सीख कमजोर पड़ती जा रही है, उसे हमें और मजबूत बनाना है। खेलों को बढ़ावा देकर शरीर और दिमाग का वर्तन जो है उसको सुदृढ़ता प्रदान करना होगा। खेल और योग भारतीय दर्शन का पौराणिक, वैदिक अद्भुत आभूषण है। इस आभूषण को और उजला बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसकी एक आधुनिक परिणति है। अध्यात्म का भी खेलों व योग से अंतरंग नाता रहा है। इस पुनित नाते को हम अधिक प्रगाढ़ बनाकर सच्चे राष्ट्र निर्माता बने। पतंजलि, विवेकानंद ऐसे

0: का जीवित अमर रहने वाले उन महापुरुषों को, उनकी शिक्षाओं को हम बालकों में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऐसे महापुरुष भारत भूमि पर पुनः पदार्पित हो, ये भारत की भूमि पुनः विश्व गुरु का अपना वादा हासिल करेगी। शिक्षक पेशेवर व्यावसायिक कार्मिक मात्र नहीं बना रहे, यह हम ध्यान रखें। शिक्षक एक सर्जक हो, एक शिल्पकार हो, एक मूर्तिकार हो, बालक रूपी कच्चे दिमागी मिट्टी में अक्षर रूप प्राण भरता रहे, शिक्षक शिक्षक के कंधों पर है। शिक्षक यह सच्चाई है कि स्वयं जलकर बालक के जीवन में उजाला भरता है, इसलिए बने हुए उस प्रयास को, उस ऊर्जा को विद्यार्थी के जीवन में उजाला भरने में प्रयास रहते रहा है। इसलिए शिक्षक के लिए कहा जाता है, मैं आदमी हूँ, आदमी होने का मादा रखता हूँ। आदमी छोटा अवश्य हूँ, पर औकात बड़ी रखता हूँ। धन संपदा नहीं रखता, मनोविज्ञान का भंडारण रखता हूँ। बेबाक वाणी रखता हूँ, शोहरत रखता हूँ, शालीनता रखता हूँ, ये चीजें खूब बड़ी रखता हूँ। धन्यवाद।
1: अभी आप विशेष कार्यक्रम शिक्षक दिवस का महात्म्य सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री नारायण लाल पुरोहित। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के इस गीत के साथ। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे हैं फिल्म अभिलाषा से ये गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत है आरडी बर्मन का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं कुछ ही समय में हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और बारा सहित कुछ पूर्वी हिस्से तरबतर। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आज समूचे प्रदेश में नंदोत्सव का उल्लास, कृष्ण मंदिरों में बधाई गायन और विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में एक बार फिर सक्रिय हुई मानसूनी गतिविधियों के बीच कई इलाकों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज भी दिनभर बरसात होती रही। कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा में करीब पौन घंटे मूसलाधार बरसात हुई। श्रीगंगानगर के भूमपुरा, 82 RB और मुकलावा क्षेत्र में बरसात हुई। बारा जिले के अधिकतर हिस्सों में पिछले दो दिनों से रिमझिम बरसात का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि केलवाड़ा क्षेत्र की भैंसासुर नदी के उफान पर रहने से कई गांवों का संपर्क कट गया है।
1: कई जिले के साहबाद उपखंड क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की भैंसासुर व बाणगंगा नदी में उफान आ जाने से एक दर्जन गांवों का संपर्क केलवाड़ा कस्बे से कटा रहा। चीपाबड़ो क्षेत्र के अकावट डैम में पानी की आवक होने से निचले इलाकों में

0: पानी भर गया। साथ ही कस्बा थाना क्षेत्र की रेपी नदी में उफान आ जाने से क्षेत्र के पाटन गांव की कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने से आज भी शाहबाद क्षेत्र की भैंसासुर, बाणगंगा, कुनू, पलको, करई व रेपी नदी उफान पर रही। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारा।
1: डीग जिले के कई इलाकों में पिछले 2-3 दिन से रुक रुक कर बर्नी बरस रहा है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का सिलसिला बना हुआ है। लगातार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। भरतपुर जिले में हो रही अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। बारेठा बांध के कैचमेंट एरिया में हुई तेज बरसात से जलस्तर बढ़ गया है। बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। पुराबाई खेड़ा, कोठी खेड़ा, नारोली, कंजोली सहित कई स्थानों पर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की गई है। उधर सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खंडार और कुंडेरा सहित कई जगह पानी भरने से यातायात बाधित हुआ है। बीते 24 घंटों में सवाई माधोपुर और धौलपुर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है। धौलपुर में पार्वती बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। वहीं 1-2 जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और स्वाइन फ्लू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने रैपिड रेस्पॉन्स टीमों की कार्रवाई के साथ ही एंटी लार्वा गतिविधियों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती राठौड़ ने आज जयपुर से वीसी के जरिए बैठक कर इस संबंध में प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट रहने को कहा है। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि स्वाइन फ्लू और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों के संपर्क में आए लोगों का भी एहतियात इलाज किया जाएगा। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में दवाइयां, जांच किट्स और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने जिले की चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े नवाचारों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च जोखिम वाले गर्भावस्था मामलों की प्रभावी निगरानी रखने और नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने को कहा। मुख्य सचिव ने उम्मेद अस्पताल में मरीजों के अधिक भार को देखते हुए उपचार प्रक्रियाओं की बेहतरीन मॉनिटरिंग की जरूरत बताई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, औसिया और बालेसर के सैटेलाइट अस्पतालों में सिजेरियन सेवाएं चरणबद्ध रूप से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: राजस्थान सरकार द्वारा सेफ मदरहुड और हेल्दी प्रेग्नेंट, हेल्दी चाइल्डहुड के लिए कई नवाचार किए गए हैं और इनमें प्रसव सखी एक नया नवाचार था। इसी प्रकार से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मॉनिटरिंग, एंटीनेटल केयर और कंगरू केयर के बारे में मेरी विचार विमर्श हुआ है। जो नवाचार उम्मीद हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं ये कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एंटीनेटल केयर में।
1: मुख्य सचिव ने झालामंड स्थित हवाई कोर्ट भवन का भी जायजा लिया। गौरतलब है कि भवन के गुम्बद की सुरक्षा को लेकर आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी। रिपोर्ट में भवन के सेंट्रल डोम के जर्जर होने और ढहने का खतरा बताया गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। राजनीतिक दल भी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नगर निकाय चुनाव प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भीलवाड़ा और उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां रोड शो किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पुष्कर में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र के साथ आज अलवर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। स्थानीय प्रभाव वाले विभिन्न स्थानों पर तीसरे मोर्चे और निर्दलीय प्रत्याशी भी मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए 38,900 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 25,000 से अधिक पुरुष और 13,800 से ज्यादा महिला उम्मीदवार मुकाबले में हैं। जयपुर जिले में सबसे अधिक प्रत्याशी हैं, वहीं सलमपुर जिले में सबसे कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 77 वार्डों में प्रत्याशी निर्विरोध

0: खुद निर्वाचित हुए हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि अपने शिक्षकों का सम्मान करने वाला समाज ही सही मायनों में प्रगतिशील होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता, कौशल विकास और उद्यमिता देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान की शक्ति के साथ ही भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाना देश

0: आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि अपने शिक्षकों का सम्मान करने वाला समाज ही सही मायनों में प्रगतिशील होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता, कौशल विकास और उद्यमिता देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान की शक्ति के साथ ही भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाना देश की प्राथमिकता है।
1: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियां और उपलब्धियां उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियां पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं।
0: समारोह में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें प्रदेश के दो स्कूल शिक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अपनी मेहनत और समर्पण से इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 82 शिक्षक देश के 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
2: इस पर सम्मानित किए जा रहे हैं 82 शिक्षकों में स्कूल शिक्षण से 48, उच्च शिक्षण से 21 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 13 शिक्षक शामिल है। लेकिन यह सम्मान केवल उन शिक्षकों के तक सीमित नहीं है, यह देश के 1,03,00,000 से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिन लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों तक शिक्षण पहुंचाता है।
0: देश के महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने एक संबोधन में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षा आत्मा का प्रकाश है और इसी से समस्त सृष्टि प्रकाशित होती है।
3: न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् कृतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
0: धौलपुर जिले में आज पोखर में डूबने से कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा मनिया थाना इलाके के फूलपुर गांव में हुआ, जिसमें 11 लोगों के डूबने की आशंका है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि कार सवार ये लोग धौलपुर निवासी थे और जहावीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आज समूचे प्रदेश में नंदोत्सव का उल्लास छाया हुआ है। विभिन्न कृष्ण मंदिरों में बधाइयां गाई जा रही है और वातावरण में जय कन्हैया लाल का उद्घोष गूंज रहा है। इस अवसर पर कई जगह संगीतमय नंदोत्सव मनाया जा रहा है, जिनमें भजन कीर्तन के साथ भंडारे भी लगाए गए हैं। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। उधर नाथ द्वारा स्थित वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में नंद महोत्सव परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। इससे पहले मध्यरात्रि में कान्हा के आगमन को जोर शोर से मनाया गया। ढोल नगाड़ों और शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। भरतपुर के बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रही। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ धाम पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाता ड्रोन शो आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर। सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारा सहित कुछ पूर्वी हिस्से तरबतर। प्रदेश में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आज समूचे प्रदेश में नंदोत्सव का उल्लास। कृष्ण मंदिरों में बधाई, गायन

0: और विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख तैयार किया है जसवंत सिंह डूडी ने। नगरी निकाय चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही बाड़मेर जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सियासी हलचल के जोर पकड़ने से चुनावी रंग जमने लगा है। बाड़मेर नगर परिषद और चौहटन नगर पालिका समेत जिले में दो नगरीय निकाय हैं। नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी के बाद अब चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। बाड़मेर नगर परिषद के 55 वार्डों में से 189 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 14 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं 15 वार्डों में निर्दलीय, 6 में आरएलपी और 1 वार्ड में बीएसपी प्रत्याशी के चुनाव मैदान में होने से संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है। 19 वार्डों में चतुष्कोणीय मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और आरएलपी के उम्मीदवारों ने चुनावी मुकाबले को अधिक रोचक बना दिया है। दूसरी तरफ चौहटन नगर पालिका के 20 वार्डों में 64 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिले में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 9 सितंबर को बाड़मेर नगर परिषद के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में चौहटन नगर पालिका के लिए 11 सितंबर को सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दोनों ही नगरीय निकायों की मतगणना इस महीने की 14 तारीख को की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। बाड़मेर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिव इलाके की ग्राम पंचायत झांफली कल्ला के रहने वाले ख्याति प्राप्त लोक कलाकार समंदर खान मांगणियार को पिछले दिनों वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। लोक संगीत की परंपरागत मांड गायन शैली को बढ़ावा देने के लिए समंदर खान मांगणियार को यह सम्मान प्रदान किया गया। वहीं सेडवा में आलीसरों की बस्ती के रहने वाले युवा बनकर बरीगा राम को बीते दिनों वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के केंद्र सभागार में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। अपनी खास किस्म वाली पट्टू साड़ी की उत्कृष्ट शिल्पकला, पारंपरिक बुनाई तकनीक और बेहतरीन डिजाइन के लिए बरीगा राम को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन और शिक्षक सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हुए। सरहदी जिले में आज गोगा नवमी परंपरागत रूप से श्रद्धा और आस्था से मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोक देवता गोगा जी को ढोक लगाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। जिले में कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों में मनमोहक सजावट की गई। इस मौके पर जिले में जगह जगह रात्रि जागरण और भजन संध्या के आयोजन हुए। जिले में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन उमंग और उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर कौमी एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। कई जगह पेड़ों के राखियां बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों की कलाइयों पर भी रक्षा सूत्र बांधे गए। इसी के साथ बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य कई हल्का माए बिरखा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारां समेत उगनी हल्का माए कुछ हिस्सा तर बतर। प्रदेश में मौसमी बीमारियां री रोकथाम रा बत्ता असर वाला हल्का माए सघन सर्वे करायो चावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो, बेहतर शिक्षा हुई विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा दूजा दिन आज पूरा प्रदेश माए नंदोत्सव रो उमाव। कृष्ण मिंद्रा माए बधाई गावन और न्यारी न्यारी ठोड़ा शोभा यात्रा वारा कार्यक्रम। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, राज्य में चौमासारी बिरखा रो सिलसिलो उजो स्वरूप फेंक्यो है। आज कई हल्का माए तेज हवा सागे बारिश हुई। राजधानी जयपुर माए आखा दिन में बरसियो। कोटपुतली बहरोड जिला रा पावटा माए करीब पौन घंटा ताई झमाझम बिरखा फी। श्री गंगानगर जिला रा भोमपुरा 82 आरबी और मुकलावा हल्का माए पानी बरसियो। 12 जिला रा घनखर हल्का माए लाडला दो दिनों छांटो छिटको फेरियो है। माना खबर नवीस बतायो कि केलवाड़ा हल्कारी भैंसासुर नदी माए पानी उफणबाऊ कई गांवा रो संपर्क कटक्यो है।
1: कल जिले के साबाद उपकंड क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की भैंसासुर व बाणगंगा नदी में उफान आ जाने से एक दर्जन गांवों का संपर्क केलवाड़ा कस्बे से कटा रहा। चीपाबड़ो क्षेत्र के अकावट डैम में पानी की आवक होने से निचले इलाकों में पानी भर गया। साथ ही कस्बा थाना क्षेत्र की रेपी नदी में उफान आ जाने से क्षेत्र के पाटन गाँव की कच्ची बस्तियों में पानी भर गया। आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश होने से आज भी साबाद क्षेत्र की भैंसासुर, बाणगंगा, कुनू, पलको, करई व रेपी नदी उफान पर रही। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: डीग जिला रा कई हल्का माए लाडला दो तीन दिन रुक रुक कर में बरस रियो है। लगातार बारिशों साखा न नुकसान हेवन री शंका है। इबीच भरतपुर जिला माए फह रही चोखी बिरखाओं बंधा माए लगातार पानी आ रियो है। बारेठा बंधा माए पानी पुगावन वाला हल्का माए फह रही तेज बरसात बांध माए पानी रो लेवल ऊंचो आ रियो है। बंधारा दो दरूजा खोल और बत्तो पानी निकालियो जा रियो है। पुराबाई खेड़ा, कोठी खेड़ा, नारोली और कंजोली समेत कई ठोड़ा जनता ने सावचेत कर लोगों हिफाजत वाली ठोड़ा जावण री अरज करी ची है। सवाई माधोपुर जिला में आई वह रही लगातार बारिश हूं नदी नाला उफणबा लग गया है। खंडार और कुंडेरा समेत कई ठोड़ा पानी भर जावण आवण जावण माथा असर पड़ियो है। लाडला 24 घंटा माए सवाई माधोपुर और धौलपुर माए 10-10 सेंटीमीटर बत्तो पानी बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब काल भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे हल्की मझला दर्जारी बरसात फेवन रा आसार है। हालांकि एक दो ठोड़ा तेज बिरखारी संभावना है। प्रदेश माए डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और स्वाइन फ्लू समेत न्यारी न्यारी मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू आरा बत्ता असर वाला हल्का माए सर्वे करायो जावेला। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ रैपिड रेस्पॉन्स टीम री कार्रवाई सा गई मच्छर पनपबाऊ रोकण रा काम माथे लगातार निगरानी राखण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मीटिंग कर इबारा माए राज्य रा सगला चिकित्सा संस्थान ने सावचेत रहवण बाबत कहो। प्रमुख शासन सचिव कहो कि स्वाइन फ्लू और दूजी मौसमी बीमारियों मंदा व्या लोगों रा संपर्क माए आवण वाला रोई एहतियातन इलाज करियो जाऊनु चाहिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जोधपुर माए जिला रे चिकित्सा और स्वास्थ्य जुड़ी व्यवस्थाओं रो जायजो लेवण सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव मातृ और शिशु स्वास्थ्य जुड़िया नवाचारा ने असरदार तरीका लागू करण माथे जोर तीनो। वे बत्ती जोखिम वाली आस वाली लुकाइया री असरदार निगरानी रखण और नुआ जन्मया बच्चा सारू इलाज री व्यवस्थावां मजबूत करण बाबत ये कहो। मुख्य सचिव उम्मीद अस्पताल माए मरीजा री बत्ती तादाद न ध्यान रखता थका इलाज रा काम माथे बेहतर निगरानी री जरूरत बताई। वे बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, ओसिया और बालेसर रा सैटेलाइट अस्पताल माए ऑपरेशन जापा करावन रे सेवाई शुरू करण रा हुकम दीना।
2: राजस्थान

0: सरकार द्वारा सेफ मदरहुड और हेल्दी प्रेग्नेंट हेल्दी चाइल्डहुड के लिए कई नवाचार किए गए हैं और इनमें प्रसव सखी एक नया नवाचार था। इसी प्रकार से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मॉनिटरिंग, एंटीनेटल केयर और कंगरू केयर के बारे में मेरी विचार विमर्श हुआ है। जो नवाचार उम्मीद हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं ये कई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एंटीनेटल केयर में।
1: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सारू उम्मीदवार वोट देवन वाला ने लुभावन री पूरी कोशिश कर रहा है। सियासी पार्टियां ही आप अपरा उम्मीदवारा रा प्रचार माए पूरो जोर लगा रही है। नगर निकाय चुनाव प्रचार रा सिलसिला माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भीलवाड़ा और उदयपुर माए रोड शो की ना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ पुष्कर माए निकाय चुनाव री तैयारियां जुड़ी मीटिंग की नी। दुजिकानी विधानसभा माए विपक्षरा नेता टीका राम जूली, कांग्रेस रा राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सागे आज अलवर माए पार्टी रो घोषणा पत्र जारी कीनो। स्थानीय असर वाली छोड़ा दूजा उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी वोट देवन वाला ने लुभावन री कोशिश कर रहा है। 9 और 11 सितम्बर नवेवन वाला स्थानीय निकाय चुनाव सारू 38,900 उम्मीदवार चुनाव मैदान माए है। आमाए 25,000 पुरुष और 13,832 महिला उम्मीदवार शामिल है। जयपुर जिला माए सब उम्बत्ता जदक सलुम्बर जिला माए सब कम उम्मीदवार है। इविचे 77 वार्डा माए उम्मीदवार सगड़ा री एक राय चुनी चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो है कि गुणवत्ता वाली भणाई लिखाई रे जरिए ही विकसित भारत रो सपनो साचो करियो जा सके है। वे आज शिक्षक दिवस रे मौके नई दिल्ली में राखी जिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जलसा माए बोल रही ही। राष्ट्रपति कहो कि शिक्षका नो मान करण वालो समाज ही सही मायना माए बरकत करे है। वे कहो कि बेहतर भणाई लिखाई, कौशल विकास और उद्यमिता देश ने आगे ले जावण माए खास काम करे है। श्रीमती मुर्मू कहो कि ज्ञान री ताकत सागे भारत ने दुनिया री कौशल राजधानी बनावण माथे देश रो खास ध्यान है।
2: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियों पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते।
1: जलसा माए राष्ट्रपति बेहतरीन काम करने वाला अध्यापका ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देर नवाजा। नवाजी जिया शिक्षिका माए जयपुर के नचाकसू रा टूमली का बासरे मिडिल स्कूल री डॉक्टर वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ रा महात्मा गांधी राजकीय स्कूल रा डॉक्टर दिव्यंदु सैनी शामिल है। ये मौके शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो के मेहनत और समर्पण काम कर राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करन वाला 82 अध्यापक देश रा 1 करोड़ 32 शिक्षका री नुमाइंदगी करे है।
3: इस पर सम्मानित किए जा रहे हैं 82 शिक्षकों में स्कूल शिक्षण से 48, उच्च शिक्षण से 21 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 13 शिक्षक शामिल है। लेकिन यह सम्मान केवल उन शिक्षकों के तक सीमित नहीं है, यह देश के 1,03,00,000 से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिन लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों तक शिक्षण पहुंचाता है।
1: देश रा महान शिक्षाविद और भारत रत्न नवाजी जिया पहली वाला राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन री जयंती हर साल शिक्षक दिवस रा तौर मनाई जावे है। मारा एक संबोधन में डॉक्टर राधाकृष्णन कहो हो कि शिक्षा आत्मा री रोशनी है जिनु पूरी कायनात रोशन फै है।
4: न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् कृतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
1: स्वच्छता ही सेवा अभियान देश भर माए साफ सफाई रा प्रति लोगा माए जागरूकता आई है। इस साल 17 सितंबर ई अभियान

0: संगठन रो नवों दौर शुरू भेला जो 2 अक्टूबर तय चल लेला। धौलपुर जिला में मनिया थाना हल्का रा फूलपुर गांव में आज एक कार रे पोखर में पड़ जावणु इनमें सवार 4 जना री मौत हुई की। पुलिस रे मुजब हादसा रे कारण 11 जना रे डूब जावण री शंका है। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी बतायो के हादसा री ठौड़ बचाव रो काम चल रियो है। कलेक्टर बतायो के कार में सवार धौलपुर रा रहवासी जहारवीर बाबा रा दर्शन सारू जा रिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा दूजा दिन आज नंदोत्सव मनायो जा रियो है। ई मौके भगवान कृष्ण रा न्यारा न्यारा मिंदरा माए बधाइयां गाई जा रही है। कई ठोणा भजन कीर्तन सागे भंडारा लगाया जा रिया है। राजधानी जयपुर समेत न्यारी न्यारी ठोणा शोभा यात्रावां निकाली जा रही है। श्रीनाथ द्वारा माए वल्लभ संप्रदाय री प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मिंदर माए नंद महोत्सव रीत मुजब मनायो जा रियो है। इनो पहले आधी रात ने कान्हा रायावण री भगत ढोल नगाड़ा और शहनाई री मंगल ध्वनि बीच ठाकुर जी रो अभिषेक करी चियो। भरतपुर रा बांके बिहारी समेत न्यारा न्यारा मिंदरा माए जातरुआ री लेणा नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ जिला रा सांवलिया सेठ मिंदर माई मोटी तादाद माए जातरू पूग रिया है। वठे जन्माष्टमी रे मौके भगवान श्री कृष्ण रा न्यारा न्यारा रूपा रो दर्शाव करण वालो ड्रोन शो राखी चियो। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत कानून न्याय और कानून री भणाई रा बारा माए मासिक व्याख्यान माला शुरू करण रो ऐलान किन्नो है। शिक्षक दिवस रे मौके करी जाए ऐलान रे मुजब इन रे मार्फत कानून न्याय और समाज जुड़िया मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। हर माह एक महत्वपूर्ण विचार माथे आधारित इन व्याख्यान माला रे जरिए न्यायाधीश कानून रा जानकार संगठन और शिक्षाविद एक सागे विचार करेला। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। राज्य रा कई हल्का माए बिरखा सवाई माधोपुर धौलपुर और बारा समेत उगनी हल्का माए कुछ हिस्सा तर बतर। प्रदेश माए मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू बत्ता असर वाला हल्का माए सघन सर्वे करायो चावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो बेहतर शिक्षा हुई विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करो जा सके है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी रा दूजा दिन आज पूरा प्रदेश माए नंदोत्सव रो माओ। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी 1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर से।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोताओं ने थांगा भाई राजू चौधरी वो गणो गणो राम राम सा। तो किसान भाया, आज है विशेष दिवस जिको है शिक्षक दिवस। और देखो शिक्षक

0: दिवस मनाया जाए। अपना देश का दूसरा राष्ट्रपति रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के मत है। और देखो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जा रहा है वो एक शिक्षा सु प्रेरित करवा के लिए और अपना समाज ना आगे बढ़ावा के लिए और शिक्षा का महत्व न समझावा के लिए मनाया जा रहा है। देखो ये जो महत्व है शिक्षा जीवन को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यो अपन सही और गलत की पहचान करवो सिखावे। शिक्षा ही अपन ज्ञान और बुद्धि को विकास करावे और हर व्यक्ति ने यो आत्मनिर्भर और सक्षम बनावे। शिक्षित व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को सामना करे और आगे बढ़ सके। शिक्षा अपन आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ने बढ़ावा में मदद करे। यह एक बेहतर रोजगार और करियर का जो अपना अवसर है बन खोले। शिक्षा का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अपने सुधार करे, समाज में समानता और भाईचारा बढ़ावे और शिक्षित समाज एक मजबूत राष्ट्र को निर्माण करे। इसलिए शिक्षा अपन अच्छा संस्कार शिष्टाचार और मानवीय मूल्य सिखावे है और यह अपनी सोच समझ और तर्क करवा की जो क्षमता है बिन भी बढ़ावे। शिक्षा से अपन गरीबी और अज्ञानता का जो अंधकार है बिन अपन दूर कर सका और शिक्षा से ही महिला का जो सशक्तिकरण और उत्थान के लिए जो जरूरी कदम है वो उठा सका। शिक्षा तकनीकी और आधुनिक दुनिया का साथ चलाव सिखावे। तो शिक्षा से स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़िया बेहतर फैसला लिया जा सके। और देखो जीवन भर सीखवा और निरंतर आगे बढ़वा की जो प्रेरणा है वह अपन शिक्षा से ही मिले। इसलिए हर व्यक्ति शिक्षा पावा को समान अधिकार मिले। शिक्षा एक उज्ज्वल और शांतिपूर्ण अपना जो भविष्य है बिन आगे बढ़ावा को एक कुंजी है। शिक्षा शिक्षक वो दीपक है जो स्वयं जल और केवल रास्ता ही नहीं दिखावे बल्कि विद्यार्थी के भीतर भी ज्ञान को प्रकाश जगा देवे जिऊं वो अपना रास्ता खुद निकाल सके। और एक सच्चो शिक्षक केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देवे, वो विद्यार्थी ने सोचवा समझवा और निर्णय ले और स्वयं पर विश्वास करवा की राह दिखावे। इसलिए अपने हमेशा अपना जो शिक्षक है वहाँ का ज्ञान संस्कार और मार्गदर्शन में सम्मान कर और वहाँ का बताया बढ़िया रास्ता पर अपन चालवा को प्रयास करना चाहिए क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही जीवन में अपन सही दिशा मिल सके और सफलता को मार्ग अपन मिल सके। तो देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊँ और आज अपना जो स्टूडियो में पधार गया है जानकारी देवा गया कृषि विशेषज्ञ है जिसको जानकारी देसी अपने राजस्थान में भेड़ और ऊन विकास का नया आयाम का बारे में और जानकारी द्वारा अपन जितेंद्र जी जानकारी दे वाला विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तोमर निदेशक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक से। तो मिलर लेवा जानकारी।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर विषय विशेषज्ञों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे बहुत ही अच्छी जानकारियां हम लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण तोमर। आप निदेशक हैं केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा में और आज हमें जानकारी देने वाले हैं भेड़ पालन के बारे में। तोमर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार साहब।
1: तोमर साहब सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है अविका नगर में स्थित है, इसका मूल कार्य क्या है और किस प्रकार से भेड़ पालन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है?
2: देखिए हमारा जो संस्थान है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
1: जी
2: जो पूरे देश की कृषि और पशुपालन व्यवस्था को देखती है उसके अंतर्गत काम करता है
1: जी।
2: इसकी स्थापना 1962 में आपके मालपुरा जो जिला टोंक है
1: जी जी जी
2: वहाँ पे स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भेड़ और भेड़ों के साथ खरगोश पालन के विभिन्न आयामों पे शोध प्रक्रियाओं के माध्यम से नए नए तकनीकियों को विकसित करना, उन विकसित तकनीकियों को भेड़ पालकों तक किसानों तक पहुंचाना
1: जी
2: ताकि प्रति पशु उत्पादन बढ़ाया जा सके, लागत कम की जा सके और किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। तो इन सब काम को देखते हुए हमारे संस्थान के 3 उपकेंद्र हैं
1: जी।
2: हमारा मुख्य संस्थान का जो हेड ऑफिस है वो अविका नगर में है जो मालपुरा से पहले पड़ता है
1: जी।
2: इसका एक केंद्र बीकानेर में है जो कारपेट के लिए जो फेमस भेड़ नस्लें उसके ऊपर काम करते हैं
1: जी जी।
2: एक इसका उपकेंद्र हिमाचल प्रदेश में कुल्लू गढ़सा में
1: जी
2: जो ठंडे प्रदेश की जो भेड़ नस्लें हैं जो अच्छी ऊन उत्पादक हैं उनके आनुवंशिक सुधार के लिए काम करते हैं
1: जी।
2: एक केंद्र हमारा साउथ में है कुड़ेकनाल मनावनूर हिल्स में
1: जी,
2: वो वहाँ के जो भेड़ पालक हैं या जो वहाँ के उस क्षेत्र की जो भेड़ों की नस्लें हैं उनके सुधार के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश की लगभग 8 करोड़ भेड़ों के सर्वांगीण

0: विकास और इनको पालने वालों की जो आमदनी बढ़ाने का काम हमारा संस्थान करता है। समय समय पे संस्थान बाजार और भेड़ पालकों की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए भेड़ों की नस्लों को विकसित करता है
1: जी।
0: जैसे मैं बात करूं भारत मेरिनो, अविकालीन और अविशान जो हाल फिलहाल में हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है
1: जी जी,
0: ये भेड़ पालकों की उन जरूरत को पूरा करते हैं जो बाजार में जिसके हिसाब से इनकी डिमांड आती है। कुछ भेड़ नस्लें हमारी अच्छी ऊन उत्पादक हैं, इसमें भारत मेरिनो को हमने विकसित किया, ठंडे प्रदेश में उसको पाला जाता है
1: जी जी।
0: तो हमारा जो दो सेंटर है जो कुल्लू में है वहाँ और जो मनोनूर में वहाँ हम भारत मेरिनो को पाल रहे हैं जिससे अच्छी ऊन के कपड़े ऊनी कपड़े बनते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक अविकालीन जो भेड़ बनाई थी वो भेड़ हमारी रैम्बुले एक विदेशी भेड़ नस्ल के क्रॉस से बनाई थी, हमारी लोकल मालपुरा का उसमें हमने उससे समागम कराया था 50-50% के उससे
1: जी जी।
0: ये भेड़ हमारी अच्छी ऊन और अच्छे मांस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा हमारे संस्थान ने जो अविशान जो अभी 2016 में भारतीय भेड़ पालकों के लिए हम लोगों ने रिलीज की है वो ज्यादा बच्चे देने में सक्षम है। मैं आपको बताना चाहूं कि जनरली भेड़ एक बार में एक बच्चा देती है
1: जी,
0: लेकिन हमारी जो अविशान है भेड़ पालकों की शान है ये एक साथ में 2-4 बच्चे देती है
1: जी।
0: तो इस प्रकार से संस्थान के वैज्ञानिकों ने देश में जो बढ़ती हुई मांस और ऊन की मांग को पूरा करने के लिए नई नई नस्लों को विकसित किया है। साथ ही जो हमारी अपनी देसी नस्लें हैं जो 45 भारतीय देसी नस्लें हैं जो हमारे अपने देश की मूल निवासी रही हैं उनके आनुवंशिक सुधार के ऊपर भी हम लोगों ने काम किया
1: जी जी।
0: यदि मैं बात करूं हमारा जब संस्थान की स्थापना हुई उस वक्त प्रति भेड़ जो उत्पादन था वो बहुत कम था
1: जी।
0: यदि 6 महीने की हम बात करें 6 महीने पे जो शरीर भार था वो लगभग 13-14 किलो था
1: जी।
0: लेकिन हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में या विभिन्न परियोजनाओं से या एक होलिस्टिक अप्रोच से जो हम लोगों ने तकनीकियां विकसित की हैं आज 6 महीने हमारी भेड़ों का जो वजन है वो 28-30 किलो और यहाँ तक कि थोड़ा सा और उस पे हम लोग ध्यान से यदि वैज्ञानिक तरीके से हम पालते हैं तो उसमें 40 किलो तक भी वजन प्राप्त होता है
1: जी जी।
0: इसके अलावा हम दुम्बा एक भेड़ नस्ल है जो हमारे भारतीय भेड़ों से लगभग 3 गुना वजन की होती है
1: जी।
0: तो उस अनुसंधान के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसके कुछ ऐसे फ्लोक तैयार कर रहे हैं जिनसे किसानों को बीज के रूप में अच्छे जानवर मिले
1: जी।
0: हमारे संस्थान से लगभग हम लोग हमारी अपनी सीमाएं हैं 2000 अच्छी भेड़ों को बीज के रूप में हम किसानों को देते हैं
1: जी,
0: जिससे किसान अपनी भेड़ों की नस्लों का सुधार करता है। और निश्चित ही जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त भेड़ का जो योगदान था वो नगण्य था
1: जी।
0: लेकिन आज 20 गुना की इकोनॉमिक भेड़ पालकों को इससे आई है
1: जी।
0: तो भेड़ पालन अपने हिसाब से एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम खर्चा लगता है
1: जी।
0: बहुत कम खर्चे में घर परिवार की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है
1: जी।
0: और भेड़ से भेड़ को मैं 5 सितारा पशु बोलता हूँ
1: जी जी।
0: ये 5-स्टार एनिमल है, इससे 5 बहुमूल्य चीजें भेड़ पालकों को मिलती है
1: जी।
0: मांस हो, ऊन हो, दूध हो, खाल हो
1: जी।
0: और कई बार बहुत कीमती बेस कीमती मैंगनी
1: जी, खाद जी, हाँ, जी,
0: तो इस प्रकार से ये हमारी सोसाइटी का 5 सितारा पशु है
1: जी हाँ।
0: और निश्चित ही भेड़ को किसी भी जलवायु में पाला जा सकता है
1: जी।
0: आप यदि बात करें तो -50 जो लद्दाख का टेम्परेचर है
1: जी, जी।
0: और +50 जो आपके बाड़मेर जैसलमेर का टेम्परेचर है
1: जी हाँ।
0: तो आप देख रहे हैं -50 से लेके +50 तक के टेम्परेचर में भेड़ों को पाला जा सकता है। मैं या मैं यूं कहूं कि ऐसा देश में कोई गांव नहीं जहां भेड़ या बकरी ना पाली जाती
1: जी जी।
0: ये रेत में भी पाली जाती है, बाड़मेर की आप बात करें, जैसलमेर की बात, और ये हमारे बंगाल में जहाँ सुंदरवन है
1: जी,
0: जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया है
1: जी,
0: तो वहाँ पे भी इसको पाला जा सकता है। ये ऐसा पशु है, ये हर जलवायु में फिट है और इसकी खाने के लिए भी कोई ऐसी ज्यादा जो गाय भैंस के लिए जरूरत होती है अच्छे चारे की, इसके ऐसा कुछ नहीं
1: जी।
0: ये तो कचरा खा के कंचन पैदा करती है सब
1: जी, जी।
0: तो किसी कैंपस में यदि आपको लगता हो कि यहाँ पे ये बायोलॉजिकल लॉन कटर है, आपको लगता हो कि भाई हमारे यहाँ किसी कैंपस में यदि हम 4-5 भेड़ छोड़ दें तो वहाँ पे जो खरपतवार जैसी घास है उसको काटने के लिए आपको बाहर से मजदूर या मशीन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भेड़ अपने आप में उसको काटेगी और उसके बदले में आपको खाद देगी, ऊन देगी और दूध देगी। यदि दूध की मैं बात करूं भेड़ों की, भेड़ों का दूध 4 पशुओं में सबसे तगड़ा दूध है साहब
1: जी।
0: यदि हम लोग कहते हैं भैंस के दूध की, नहीं साहब, भैंस के दूध से भी अच्छा दूध भेड़ का दूध है
1: जी।
0: और मैं तो ये कहता हूँ कि भेड़ का दूध साहब ये दूध नहीं है तो दवाई देती है, ये जड़ी बूटियां खा के
1: जी, जी।
0: और जैसा जड़ी बूटियां जितनी खाएंगी उसी हिसाब से इनका का दूध का अर्क आएगा
1: जी,
0: और दूध में इसके गुणकारी वो रहेंगे
1: जी।
0: लेकिन प्रति पशु अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें परंपरागत तरीकों के साथ साथ

0: नई जो तकनीक है उसको साथ लेके चलना होगा। नई तकनीकियों में बात करूं तो वैज्ञानिक प्रबंधन एक बहुत बड़ी चीज है, और जिस भेड़ पालक ने विज्ञान की विकसित चीजों को अपने रेवड में समाहित किया है, उस भेड़ पालक ने जमीन आसमान का फर्क देखा है और आमदनी को बढ़ाया है। वो नस्ल से लेके उसके आवास की बात हो या उसके आहार की बात हो या उसके स्वास्थ्य की बात हो, इवन मार्केट
1: जी।
0: मार्केट बहुत बड़ा इशू है
1: जी।
0: हमारा भेड़ पालक या हमारा किसान करता सब कुछ है, लेकिन जब उसके बेचने की बात आती है तो वहां वो चूक जाता है। वो बिचौलियों के भरोसे अपने प्रोडक्ट को बेचता है
1: जी।
0: तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, आपके इस माध्यम से मैं उनको, किसानों को, भेड़ पालकों को चेताना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि इस मार्केट में भी वो अपनी हिस्सेदारी तय करें
1: जी,
0: और अपने प्रोडक्ट का अपना मार्केट तलाशें
1: जी,
0: अपने प्रोडक्ट को वहां बेचे जहां उसको ज्यादा पैसा मिलता हो
1: जी।
0: तो निश्चित ही जो बिचौलिया हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो डीलर हैं या जो व्यापारी हैं इसके, तो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इसको काम को करेंगे, यदि बाजार की व्यवस्था को भी संभालेंगे तो निश्चित है उनको ज्यादा आमदनी होगी
1: जी। तोमर साहब, यहां जब हम भेड़ों की बात करें, आपने 5 सितारा जानवर इसको कहा है
0: जी, जी, जी।
1: तो अगर हम भारत की बात करें, विशेष रूप से हम राजस्थान की बात करें, तो भेड़ों का जो पालन है वो मांस के उद्देश्य से अधिक किया जाता है या ऊन के उद्देश्य से अधिक किया जाता है?
0: देखिए, समय के साथ साथ भेड़ पालन का रूप बदला है। पहले जब हम पढ़ते थे, या यूं कहें कि आज से 40 साल पहले, भेड़ को ऊन का पर्याय माना जाता था
1: जी।
0: और हमारे राजस्थान के दूरस्थ जो इलाके हैं, आज भी वहां पे ऊन की बनी हुई चीजों के बिछौने या ओढ़ने
1: जी,
0: इनको पट्टू है, इनको यूज किया जाता है
1: जी।
0: लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें बाजार में ऐसी आ गई हैं जिसने हमारी भेड़ों की ऊन को, बेसकीमती ऊन को रिप्लेस किया है। मैं बात करूं तो जो प्लास्टिक का जो फाइबर आया
1: जी, हाँ जी,
0: ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहा है। आपने देखो अगर शरीर में खुजा है या और स्किन डिजीजेज है
1: जी,
0: ये सस्ता सुंदर जरूर है, सस्ता भी है, लेकिन शरीर के लिए बायोलॉजिकल मटेरियल नहीं है
1: जी।
0: तो ये अभी थोड़ा सा भेड़ों की ऊन को कम किए इसने किया है, और अब किसानों ने, भेड़ पालकों ने भेड़ को मांस के लिए पालना शुरू किया है, तो उनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है, यूटिलिटी बदली है, लेकिन कम नहीं हुई है
1: जी।
0: देश में जो एक अपार संभावना है मांस की, एनिमल प्रोटीन की, तो हमारी भेड़ बकरियों से ही पूरी हो रही है
1: जी, जी, जी।
0: और लेकिन अभी भी ऊन के लिए अच्छा स्कोप है, इसके दूसरे भी उपयोग बहुत हैं। हमारा संस्थान बहुत सी जो, जिस ऊन का कुछ नहीं बनाया जा सकता, उसकी बहुत सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उन प्रोडक्ट को बना के हम किसानों को, भेड़ पालकों को बता रहे हैं कि आप भी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बना के
1: जी, जी।
0: आप बाजार में अतिरिक्त तो पैसा कमा सकते
1: जी।
0: तो भेड़ पालन की उसकी महत्वता समय के साथ साथ बढ़ी है, और जब देश आजाद हुआ उस वक्त भेड़ों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी, आज 8 करोड़ है। हमारे राजस्थान में भेड़ों की संख्या कम हुई है, इसका एक मेन कारण जो मैंने बताया, एक तो ऊन की कीमत गिरी है, दूसरा जब भेड़ों को मांस के लिए पाला जा रहा है, तो हमारे राजस्थान में अभी मीट ईटर या उतने मांसाहारी लोग नहीं है। संख्या में परिवर्तन जरूर आया है, पहले 15% थे, आज की यदि मैं बात करूं तो 25-30 के करीब पहुंच रहे हैं, तो संख्या बढ़ जरूर रही है एनिमल प्रोटीन के रूप में
1: जी, जी।
0: लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां तीनों टाइम या 99% लोग या इवन मोर देन 99% मीट को या एनिमल प्रोटीन को पसंद किया जा रहा है
1: जी।
0: तो इन प्रदेशों में यहां से भेड़ों का पलायन होना या यहां से ट्रेडिंग होके वहां जाना
1: जी,
0: या यूं कहें कि उन प्रदेशों के लिए यहां पे भेड़ों को पाला जाना, ये सब कारण है कि भेड़ पालन अपनी इंपोर्टेंस बनाए हुए
1: जी,
0: और एनिमल प्रोटीन की डिमांड को काफी हद तक भेड़ पूरा कर रही है
1: जी।
0: और मैंने पहले भी कहा था, ऐसा पशु जिसकी खुद की डिमांड तो कम है
1: जी,
0: उसका छोटा सा शरीर है और कचरा खाती है, जो हर पशु से बच जाता है वो भेड़ों के नसीब में होता है
1: जी,
0: और ये भविष्य का पशु है
1: जी। तोमर साहब, यहाँ जब हम आमदनी की भी बात कर रहे हैं, किसानों की भी बात कर रहे हैं, जो भेड़ पालक है उनकी भी बात कर रहे हैं, मांस उत्पादन भी एक उसका तरीका है, ऊन उत्पादन भी एक उनके आय का तरीका है, वैसे ही जो भेड़ का दूध, आपने कहा कि बहुत बेशकीमती है, भेड़ के दूध का प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या ऐसी संभावना है कि भेड़ के दूध को प्रसंस्करित करके उसके उत्पाद बनाए जाएं और उसका मार्केट अगर डेवलप हो तो ये किसानों के लिए और ज्यादा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। हमारे संस्थान में, या मैं भेड़ पालकों को बताऊं, भेड़ के दूध से भी वो सब बनाया जा सकता है जो गाय भैंस के दूध से बनाया जा रहा है
1: जी, जी।
0: हमारे संस्थान ने खुद ने इसका रसगुल्ला भी बना रखा है, इसका पेड़े भी बना रखे हैं, इसकी कुल्फी लाजवाब है स्वाद में
1: जी,
0: और घी, बहुत सी मेडिसिनल आवश्यकताएं हैं आयुर्वेदिक में, उसको बेस के रूप में ये काम करता है
1: जी।
0: आपने सुना होगा कि भेड़ के

0: दूध की मालिश या जहां चोट लग जाती है या मांस फट जाता है वहां पे ये है। लेकिन साइंटिफिक बेस इसका अभी खोजने में हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। इसके फैट का जो ग्लोबुल है वो बहुत छोटा है, डायरेक्ट ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो भेड़ के दूध का वैल्यू एडिशन करके आप बाजार में इसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि भेड़ों में दूध कम होता है, लगभग 500 से 700 ग्राम या कुछ भेड़े 1 किलो तक भी दूध देती हैं, मेरा मानना यह है कि इस कीमती चीज को बाजार में लाके यदि भेड़ पालक बाजार में पैसा कमाना चाहता है तो कमा सकता है। वो सोचता है कि भाई भेड़ों के मेमने को ये दूध मिल जाए। लेकिन हमारे वैज्ञानिक शोध अब कहते हैं कि आप भेड़ के मेमनों के लिए दूसरे सस्ते दूध जो मिल्क रिप्लेसमेंट है उसको यूज कर लें, जिसकी कीमत 15 से 16 रुपए किलो है। लेकिन इस कीमती भेड़ का दूध यदि मार्केट में आप लोग इसको एजुकेट करोगे, एडवोकेट करोगे, ये पहलवानों के लिए या जो रेस लगाते हैं उनके लिए सबसे तगड़ा दूध है। इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा है
1: जी,
0: फैट सबसे ज्यादा है
1: जी,
0: और गाढ़ा है। इसका पाउडर बना के भी आप एक गिलास दूध के एक गिलास पानी के साथ पी के अपनी जो पहलवानी है, कसरत है या जो हार्ड काम जो करते हैं, मजबूती का काम जो करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दूध भेड़ पालन में दूध भी अपनी एक इम्पोर्टेंस आगे आने वाले समय में रखेगा
1: जी।
0: और आगे जो दूध है दूध के नाम पे नहीं मिलेगा, भैंस का दूध अलग बिकेगा, बकरी का दूध अलग बिकेगा, ऊंट का दूध अलग बिकेगा, गधे का दूध अलग बिकेगा और भेड़ का दूध अलग बिकेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जैसे जैसे हमारे लोगों में जागरूकता आ रही है उसके हिसाब से डिमांड जनरेट होगी। लेकिन वो डिमांड तब आएगी तब जब हम लोगों को ये समझा पाएंगे कि भाई भेड़ के दूध में भी बहुत गुणकारी है और बहुत सी बीमारियों में या बहुत सी आवश्यकताओं में, या ये वैसा ही दूध है जैसा गाय भैंस का दूध है
1: जी,
0: तो डेफिनेटली एक गाय या एक भैंस को पालने की जगह यदि एक किसान 50 भेड़ आराम से रख लेता है, यदि एक गाय की बात करें तो एक गाय कितना दूध देगी, 5 से 7 लीटर
1: जी,
0: 8 लीटर
1: जी।
0: यदि आप 50 भेड़ों की बात करेंगे तो 50 भेड़े में से मान लिया 30 दूध दे रही है
1: जी,
0: एक भेड़ 1 लीटर दूध दे रही है आपकी अच्छी यदि खिलाई पिलाई है, आधा लीटर तो आपने दे दिया उसको, उसके मेमने को, उसके मेमने के शरीर की भी आवश्यकता पूर्ति होगी
1: जी,
0: आधा लीटर और बच गया। तो इस प्रकार से 30 भेड़ों से 15 लीटर दूध तो आपके घर में आ गया
1: जी,
0: 15 लीटर में आप 5 लीटर आप अपने घर में यूज करो, हालांकि 5 लीटर आजकल घर में कौन पी रहा है
1: जी,
0: लेकिन फिर भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में दूध है। 10 लीटर को आप बाजार में बेचो, जब बाजार में दूध की कीमत आएगी तो कम से कम 50-60-100 रुपए जो भी है, जैसे ही पता लगेगा लोगों को इतना गुणकारी है तो गुण के आधार से ही कीमत तय होगी। तो इस प्रकार से 30 भेड़े आपने रखी तो हर वक्त आपके घर में दूध रहेगा। 50 भेड़े यदि आप रखते हो तो 30 तो एक बार आ रही है, फिर दूसरी भी आ जाएगी, फिर और अगले महीने दूसरी और भी आ जाएगी, तो हर वक्त आपको दूध मिलेगा, हर वक्त मेमने आपको घर पे मिलेंगे जिसको बेच के आप अपने घर की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें काफी स्कोप है
1: जी। जी तोमर साहब, आप निदेशक हैं भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र के, आप भेड़ पालन का भविष्य कहाँ देखते हैं?
0: मैंने कई बार कहा यहाँ कुछ नहीं हो सकता
1: जी,
0: वहाँ भेड़ पाल के सब कुछ हो सकता
1: जी।
0: ये ऐसा पशु है जो अकाल में सबसे बाद में प्रभावित, हम जब पढ़ते थे तो सुनते थे कि राजस्थान में एक ऐसा पशु है जो मिट्टी खा के जिंदा रहता है और भेड़ पालकों को ऊन भी देता है, दूध भी देता है, मैंगनी खाद खाल सब देता है
1: जी।
0: अब जब मैं यहाँ का डायरेक्टर बना, यहाँ का वैज्ञानिक बना, तो मैंने देखा कि मिट्टी खाता तो कैसे है, तो जो मिट्टी में या रेत में यहाँ की जो बालू है, यहाँ की जो सैंड है वो काफी हल्की है
1: जी, जी।
0: पेड़ों के नीचे अपनी सांस से या नाक से फूंक मार के ये उन जड़ों को या उन छोटे से पत्तों को या छोटी जड़ी बूटियों को ये ढूंढता है और उसको खा लेता है, क्योंकि गर्मी के कारण कम पानी के कारण ऊपर तो कुछ दिखता नहीं है
1: जी, जी, जी।
0: तो जो इसको नीचे पेड़ों के नीचे थोड़े बहुत जो दिखता है उनको ये निकाल के खाता है, तो पानी की कम आवश्यकता होती है इसको। तो ऐसा सुंदर पशु जिसकी खुद की आवश्यकता कम लेकिन आपकी हर आवश्यकताओं का ध्यान रखता है
1: जी,
0: तो निश्चित ही भेड़ पालन का बहुत बड़ा भविष्य है। और यदि एक आयाम जो अभी मांस के लिए जो हम बात कर रहे थे, देश में लगभग आंकड़े की यदि बात करूं तो आज 77% के करीब 77% के करीब लोग नॉन वेजिटेरियन है
1: जी।
0: कभी यह संख्या 35 के करीब थी, लेकिन पिछले 15-20 सालों में जैसे लोगों की एनिमल प्रोटीन की डिमांड बढ़ी, भाई क्या हम भी कुछ मिलना चाहिए, तब जाके हमारे देश में आज की ये फिगर है 77 है। देश में प्रति व्यक्ति जो आवश्यकता है मीट की वो लगभग 12 किलो के करीब है, लेकिन उपलब्धता 7 किलो ही है
1: जी,
0: तो एक गैप है। इस गैप को भरने के लिए आपको अच्छी नस्लों की भेड़ पालनी होंगी, अच्छी

0: नस्लों में आप अविशान भेड़ पाल सकते हैं जो 2 से 4 बच्चे देती है, दुम्बा भेड़ रख सकते हैं जो 2 से 3 गुना वजन की होती है और जल्दी उसका शरीर भार अच्छा हो जाता है। इसके अलावा उसका वैज्ञानिक प्रबंधन
1: जी,
0: प्रति पशु वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, प्रति पशु लागत कम करके आमदनी बढ़ाए, उत्पादन
1: बढ़ाए जी।
0: तो इस प्रकार से आप यदि भेड़ पालेंगे तो निश्चित ही देश में अपना एक अलग अलग जलेगी। और मैं तो कई बार किसानों को या इनके किसान के जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनको भी कहता हूँ कि भाई दिन के 2 घंटे आप भेड़ या बकरी पालन पे लगा दें, दिन के 2 घंटे
1: जी,
0: सुबह को 9 बजे से पहले 1 घंटा और शाम को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद या जब उसे समय मिले घर की छत की फेंसिंग करा के 30 से 40 भेड़ों को आराम से इन 1.5 से 2 घंटों में पाल के दिन में सारे आपके काम हो सकते हैं। वो नेता है तो नेतागिरी कर सकता है, दुकान करता है तो दुकान कर सकता है, नौकरी करने वाला नौकरी कर सकता है, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई कर सकता है। मात्र दिन के 1.5 से 2 घंटे लगा के 40 से 50 भेड़ों को पाल के छत के ऊपर रख के आराम से अपने वर्ष की आमदनी और अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं
1: जी। तोमर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियां आज आपने भेड़ पालन के बारे में दी। चलते चलते जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं, जो भी भेड़ पालक हमें सुन रहे हैं, क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे?
0: मैं सभी भेड़ पालकों से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यवसाय करने से पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है
1: जी।
0: आपको कुछ भी करना हो उसका ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है, नहीं तो आप असफल व्यवसायी कहलाओगे या आपके मथे आ जाएगा कि भाई ये कुछ नहीं जानता। कुछ भी करें उसका ज्ञान लें
1: जी।
0: आप भेड़ पालन की बात करें तो भेड़ पालन का ज्ञान होना जरूरी है कि वो कौन सी नस्ल रखे, इसका क्या उद्देश्य हो, वो कहां से ट्रेनिंग ले, वो कहां मार्केटिंग करे, वो कैसे काम करे
1: जी।
0: तो ट्रेनिंग हमारा जो संस्थान है, हमारा जो CSWR अविका नगर है, वहां से भेड़ पालन की आपको 8 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। उस ट्रेनिंग पे सर्टिफिकेट के बाद लोन की भी दूसरी सरकारें देती है कि लोन उसको मिलता है जो जो अपने आप को ये तय कर देता है हाँ भाई मैं इस व्यवसाय में स्किलफुल हूँ, मैं जानता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, जो आपसे ले रहा हूँ लोन उसको मैं वापस चुका दूंगा
1: जी।
0: तो इस तरह से वो किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्र से या पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों से ट्रेनिंग प्राप्त करके वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और कोई भी काम छोटा नहीं है
1: जी,
0: कोई भी काम छोटा नहीं है। सबसे पहले मनुष्य ने इन छोटे पशुओं को ही पहचान के, इसकी इंपोर्टेंस पहचान के इसको डोमेस्टिकेट किया था, अपनाया था
1: जी जी जी।
0: तब से लेके भेड़ का, बकरी का या एक और पशु है खरगोश पालन, कभी फिर बात करेंगे
1: जी,
0: ये मनुष्य का साथी बना हुआ है
1: जी।
0: इससे उसको कपड़े भी मिले हैं, ऊन भी मिली है और खाल के कपड़े भी उन्होंने यूज किए हैं
1: जी, जी।
0: और खाद और दूध ये तो मैं बात कर ही चुका हूं। तो इस प्रकार से मेरा आपके इस माध्यम से यही कहना है कि जो भी भेड़ पालक या जो भी बेरोजगार या जो भी युवा भेड़ पालन का काम करना चाहता है तो वो ट्रेनिंग जरूर ले
1: जी।
0: और ट्रेनिंग लेने के बाद छोटे स्तर से व्यवसाय शुरू करे, छोटे स्तर से मतलब कम से कम 10 भेड़ों को सबसे पहले शुरू करें, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 100, इस तरह से वो चलेगा तो मेरी गारंटी है वो अपने उद्देश्य में 100% कामयाब होगा। और उस कामयाब पुरुष को देख के या कामयाब लोग को देख के दूसरे लोग भी इस व्यवसाय में जुड़ेंगे
1: जी,
0: मेरी तरफ से
1: जी। डॉक्टर अरुण तोमर, आप निदेशक केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा से आज हमारे बीच में पधारे और जो महत्वपूर्ण जानकारियां भेड़ पालन के बारे में आपने दी, निश्चय ही इसको सुनकर जो भी हमारे सुनने वाले किसान भाई हैं, भेड़ पालक हैं, लाभान्वित होंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।
0: धन्यवाद साहब, नमस्कार सभी को।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू कर

0: दूंगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: हाँ तो आज बस इतो ही तिचो की जानकारी के साथ राजस्थान में भेड़ और ऊन विकास का नया आयाम इसके साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम को आज को टेम पूरा हुयो तो द्योथा का भाई राजू ने इजाजत और करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी दिल्ली से

0: इस अंतराल के बाद आइए सुने आज का विशेष जयमाला, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले।
1: मैं आपको और एक नई आवाज सुनाती हूँ, जो आवाज हमारे हिंदी के लिए नई है पर तमिल तेलुगु में बहुत ही प्रसिद्ध आवाज है, बहुत नामवर आवाज है। इनका नाम है बाल सुब्रमण्यम। ये जितना मीठा गाते हैं उतना इनका स्वभाव भी बहुत मीठा है। इनका साथ दे रही है एक छोटी सी नन्ही सी लड़की जिसका नाम राजेश्वरी है। इसका सुर में गाना और लयकारी छोटे बच्चे के लिए बहुत अजीब है, लेकिन साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जब संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की बेटी है तो ये आएगा ही उसमें। चलिए आप सुनिए ये गाना।

अब मैं आपको वो आवाज सुनाती हूँ जो भगवान हजारों हजारों सालों में बनाता है। इनकी आवाज और इनका गाना सुन के मैंने अपने गाने में बहुत प्रेरणा पाई है। ये गाना जब गाते हैं तब लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं और अपनी ऐसे लाइफ में भी हमको हंसाते रहते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग पे पहुंचते हैं इस कदर मजाक करते हैं कि हम हंसते ही रहते हैं, इतने हंसते हैं कि हमारी आवाज़ भी बैठ जाती है और हम बोलते हैं कि अभी किशोरदा हम हाथ जोड़ते हैं, अब आप प्लीज़ कुछ नकल मत कीजिए। ऐसे ये हंसाने वाले आदमी और मेरा बेटा बिल्कुल यंग म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने जब बोला कि दादा आप मेरा गाना गाइए तो मैं डर के मारे कांप गई। मैंने कहा इतने बड़े सिंगर को अब ये छोटा लड़का क्या सिखाएगा, मैं तो माँ हूँ, मैं तो सीख लेती हूँ। लेकिन उसने जैसे गाना सुनाया उनको तो कहने लगे वाह बेटे तुम अच्छा बनाते हो, और उन्होंने वो गाना गाया और आप देखिए उसकी फर्स्ट पिक्चर का गाना और किशोरदा ने गाया हुआ।

अब प्रोग्राम के अंत में मैं आपको मेरी पसंद की वो आवाज सुनाने जा रही हूँ, जो सुन के शायद आप भी मेरे जैसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। खैर, मैं तो आज थोड़ी मंत्रमुग्ध हुई हूँ, मैं तो बचपन से ऐसी हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, उसके तानपुरे के साथ उसकी सास सुनी है, उसका पंचम सुना है, उसकी चर्च ऊपर की सुनी है, और आज तक वो जादू मेरे ऊपर छाया हुआ है, वो उतरता ही नहीं है। और मैं चाहती हूँ इस आवाज़ की जादू जैसे मेरे ऊपर है, ऐसे हजारों साल तक सबके ऊपर जमी रहे। वो है मेरी बड़ी बहन, संगीत की मलिकाओं की मलिका, लता मंगेशकर। इसका ये गाना सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है। और इस गाने की बात यह है कि ये क्लासिकल ढंग पे जा रहा है, सेमी क्लासिकल है। लोग कहते हैं कि आजकल सिर्फ डिस्को ही होता है, ऐसी बात नहीं है। ये बेमिसाल का गाना सुनिए जो आरडी साहब ने बनाया है और दीदी ने गाया है। ये कितना अच्छा क्लासिकल का और नए म्यूजिक का मेल है, आप सुन के मुझे बताइए कैसे।

0: अब इस आवाज के बाद मैं आपको और कौन सा गाना सुनाऊं? कोई गाना नहीं है मेरे पास, कोई आवाज नहीं है, और हमारे पास वक्त भी नहीं कि इस आवाज के और भी गाने सुनाऊं आपको। लेकिन जब मुझे वक्त मिलेगा, जब मुझे ऐसा मौका मिलेगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। नमस्ते।
1: तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम महान गायिका आशा भोसले के साथ। ये कार्यक्रम हमारे विविध भारती के संग्रहालय से हमें प्राप्त हुआ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी। आप हैं विविध भारती के संग।
2: जिज्ञासा
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। जिज्ञासा कार्यक्रम में पिछले हफ्ते से हमने सकारात्मक जिंदगी पर एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें बहुत ही दिलचस्प बातें चल रही हैं डॉक्टर योगिनी मोहरे से। वे हमें बता रही हैं कि कैसे एक अच्छी सार्थक जिंदगी जी जा सकती है और मन पर जज्बात का बोझ कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बहुत हल्के होकर और बहुत पॉजिटिव होकर जिंदगी की राहों में आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए लव यू जिंदगी इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुने।
3: लव यू जिंदगी।
0: डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में।
4: थैंक यू।
0: मुझे ये बताइए कि बच्चों में किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं, बच्चों के लेवल पर उनके टेंशन्स, माता पिता की बहुत ज्यादा उम्मीदें, एडिक्शंस, खासतौर पर स्क्रीन के एडिक्शंस, या कई बार ये होता है कि माता पिता लिमिटेड जेब खर्च देते हैं और बच्चों को लगता है पैसों की और जुगाड़ यहाँ वहाँ से की जाए तो मम्मा के पर्स से निकाल लो, या वीडियो गेम्स के एडिक्शंस, या बहुत तरह की चीज़ें हैं, बल्कि स्मोकिंग जैसी चीज़ों में पड़ जाना टीनेजर्स का, इन सब का क्या उपाय देख रही हैं और क्या रीज़न समझ में आता है आपको?
4: देखो बच्चों में एडिक्शंस बढ़ने की ना, बच्चे इतने पहले कैसे रहता था, हर एक फैमिली में एटलीस्ट 2 से 3 मिनिमम बच्चे थे। आजकल बहुत सारे फैमिली स्पेशली अर्बन एरियाज में अगर आप देख लोगे तो इतनी महंगाई हो गई है, स्कूल की फीस अगर 1-1.5 लाख है तो दूसरा बच्चा करते वक्त हर कोई काफ़ी सारे कपल सोचने लगे कि वेदर आई कैन रियली अफोर्ड द सेकेंड चाइल्ड। तो उसकी वजह से सिंगल बच्चा है, बड़े बड़े घर होने लगे हैं बच्चों के पास ना, मोबाइल ने बहुत बुरी समस्या क्रिएट कर ली है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया भी बैन कर रहे हैं मोबाइल्स, तो देखो बैन करना जो मुझे लगता है अगर कोई भी, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, अगर आप कोई चीज़ बैन करते हो ना तो बच्चा वो पाने के लिए कुछ ना कुछ तरह से कोशिश करने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैन करने से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है बच्चों को समझना ना कि इससे क्या असर होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे आजकल आप देख लोगे स्कूलों में छोटे उम्र से बच्चों के चश्मे आने लगे हैं, तो अगर आप अभी से 4th-5th क्लास से अगर आपको चश्मा है तो आगे जाके तो आपका इतने कंप्यूटर और स्क्रीन्स पे काम होने वाले, आपके आईज खराब होने की तो चांसेस बढ़ ही जाते हैं। तो कहीं पे मुझे लगता है, क्योंकि अगेन वही होता है कि पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी है कि बच्चों में और पेरेंट्स में वो डायलॉग, देखो जनरेशन गैप हमेशा थी, हमारे टाइम पे भी थी, हमारे और हमारे पेरेंट्स में भी अनबन तो होती रहती थी, आज भी होती रहती है, लेकिन वो जनरेशन गैप को भी ना हर एक चीज को ग्लोरीफाई ज्यादा किया जाता है। ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें

0: आसानी से अवेलेबल है। जैसे आप अगर स्मोकिंग का कह रहे थे तो जगह जगह पे आजकल पान बीड़ी वाले शॉप्स होने लगे हैं, तो बच्चों को बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती है। और कहीं पे मुझे लगता है पेरेंट्स, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बच्चों को देने के लिए, तो आई ट्राई टू कॉम्पनसेट इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो भी बहुत बुरी चीज़ हो गई है। कि और बच्चे कैसे रहता है ना, काफ़ी बार मैंने ये देखा है यूनिश जी कि पेरेंट्स भी कंपेरेटिव मोड में रहते हैं। देखो हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को ना आप जो सिखाते हो वो बच्चे नहीं सीखते, बच्चे जो देखते हैं ना वो ज्यादा सीखते हैं। अगर बच्चा देख रहा है आपका कि मम्मी डैडी किसी और के पेरेंट्स के कंपैरिजन में है, अच्छा उसने इतनी बर्थडे पार्टी में इतना खर्चा किया तो अभी मुझे भी करना है, तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना। उसके पास इतना बड़ा वो प्ले स्टेशन या जो भी है तो मुझे भी तो वो चाहिए। और यहाँ पे भी पेरेंट्स ने ही पहले सीखना जरूरी है कि देखो आप कितने भी बड़ा पैसा कमा लो, हमेशा देयर इज गोइंग टू बी समबडी एल्स हु हैज गॉट मोर मनी देन यू। ऑफ कोर्स प्रोग्रेस करते रहो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कहीं पे अपने आप को एक्सेप्ट करना कि ऐसा हूं मैं, तो फिर बच्चे आपसे जरूर वो सीखते हैं। और बच्चों के साथ एक डायलॉग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बच्चों को मार्क्स कम मिल जाते हैं या फेल भी हो जाता है समझ लो बच्चा, तो हम इतना बुरा बर्ताव करते हैं। हमें ये समझना है कि बच्चा भी तो हर्ट है, बच्चे को भी तो अपने से भी उम्मीदें होती है ना। देखो यूनिश जी, हमें लगता है कि बच्चा छोटा है तो उसको कुछ नहीं समझता, लेकिन वो अपने लेवल पे प्रोसेसिंग कंटिन्यूस चलती रहती है उसके मन में। तो हमें ये है कि बच्चे को एक विश्वास दे दो, डांटो यो जो भी करना है, अगर बुरे बर्ताव किया बुरे मार्क्स ले, लेकिन उसके आगे जाकर के आपको बच्चों को वो दिखाना है कि जैसे भी हो तुम आई लव यू, कुछ भी होने दो, देख क्योंकि आपको पता नहीं आगे जाके क्या कठिनाई उसके लाइफ में होने वाली है। तो आपको वो बच्चों को विश्वास दिलाना, अनकंडीशनल लव जिसको आप कह सकते हो, वो आपको बच्चों को दिखा देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले अपने आप को अनकंडीशनल लव अपने आप के प्रति दिखाना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
1: आपने अनकंडीशनल लव की बात की, यहाँ जीवन में ईर्ष्याएं बढ़ रही हैं, क्रोध बढ़ रहा है, और इसके साथ एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी है वो है अवसाद, निराशा। मुझे ये बताइए कि इन चीज़ों को कैसे काबू किया जा सकता है और मन से कैसे निकाला जा सकता है ईर्ष्याओं को, गुस्से को और डिप्रेशन को।
0: कैसे होता है ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम हर कोई इंसान सेम है। अगर मुझे गुस्सा आया तो आया है ना गुस्सा, अगर मैं ये कहूँगी मैं बताऊँगी कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो वो गुस्सा अंदर अंदर रहेगा। जो निगेटिव इमोशंस होते हैं दे अफेक्ट योर बॉडी इन अ बैड वे, और जो पॉजिटिव इमोशंस है, अगर आप भी सोच लो कुछ अच्छी बात हुई तो हमें खुशी होती है, तो वो निगेटिव इमोशंस को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको हम ऐसे निकालेंगे कि उससे ना अपने आप को और किसी को तो हमें हार्म नहीं पहुंचाना है, एट द सेम टाइम हमें भी अपने आप को हार्म नहीं करना है। अगर मुझे गुस्सा आ गया, मैं बाहर जाके दो सिगरेट पी ली, तो उससे मुझे तो नुकसान ही है ना, तो वो टेम्पररी अच्छा लगता है कि चलो मैंने सिगरेट पी ली, अभी वो पूरा वेंट आउट हो गया, मैं घर आ गया वापस। लेकिन हमें ना, जैसे हम हमारे फिलोसॉफी में दो तीन नुस्खे बताते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगी कि एक तो आप ना लिख सकते हो, आपने सबने जब वी मेट मूवी देखी होगी करीना कपूर की, उसमें जैसे उसने लिखा है ना उसका जो बॉयफ्रेंड छोड़ता है या जो भी वो फोटो फाड़ के, तो ऐसे ना आप लिख सकते हो आपके मन में जो भी निगेटिव भावनाएं आती है ना उसको लिखो और उसके बैठ को पढ़ो नहीं। जैसे समझो, हो सकता है मुझे अपने घर के अग्दी कोई बिल्कुल मेरे बच्चे पे समझ लो, या कोई भी फैमिली के एकदम बिल्कुल नज़दीकी रिलेशन पे आपको गुस्सा आया है, तो हमें लगता है कि मैं उसको जाके कैसे कह सकता हूँ ना, फिर वो घर के माहौल और बिगड़ जाएंगे, या मम्मी डैडी बड़े हैं, सास ससुर बड़े हैं उम्र में, तो उनका तो हमें रिस्पेक्ट करना ही, लेकिन गुस्सा तो है मुझे, तो गुस्से को तो निकालना बहुत ज़रूरी है, राइट? नहीं तो वो गुस्सा जाके आपके बॉडी को आपके मन को असर करेगा ही करेगा। तो ऐसे टाइम पे आप एक पेपर पे पूरा, कभी कभी तो आपका मन करता है कि गाली भी देने के मन कर सकता है आप किसी भी वो बंदे को, तो पूरा एक पेपर पे निकालो, लिखो और वो पेपर को फाड़ दो, ना कि बैठ के उसको पढ़ो दो चार चीज दिन प्रिजर्व करो, देखो मुझे ऐसे इतना बुरा हुआ मेरे साथ, नहीं। वो क्योंकि वो तभी का तभी वेंट आउट है, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से हमें अपने निगेटिव इमोशंस को निकालना है। या फिर आप घर में दो तीन बड़े पिलोस ले लो और उसको बीट करो, बिल्कुल ऐसे ना जैसे किसी के साथ फाइटिंग कर रहे हो आप, ऐसे सोच लो कि वो बंदे को हम मार रहे हैं, लेकिन वो पिलोस को मारो, अपना वो गुस्सा निकालो अपने से। और इसमें ना, जैसे किसी को लग सकता है नहीं, बट somebody who believes in energy, तो ऐसे किसी को लग सकता है कि by doing all these things are we sending negative energies towards that person because we love that person। समझो आपका बच्चा है तो you love your child, लेकिन आपकी वो बात सुन नहीं रहा है, तो बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत करिए, क्योंकि वो आप कोई भी किस्म की negative energy वो बंदे की तरफ नहीं भेज रहे हो, इस इज जस्ट द पॉजिटिव वेंट आउट फॉर योर negative इमोशंस। तो एक तरीका वो

0: हुआ या फिर आप गाड़ी में बैठो या बेडरूम में, कहीं पे भी जोर से चिल्लाओ, वो निगेटिविटी बाहर निकलो, किसी और ने सुनेंगे तो वो और शायद डर भी जाए, लेकिन अपने आप के वो अंदर से निकालो, या शीशे के सामने खड़े होके वो बंदे से बात करो, रोना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप में जो सुनने वाले हैं उनको मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ ये घर में ट्राई करो, निकालो अपने अंदर से निगेटिविटी और देखो बहुत आपको हल्का महसूस होना लगेगा।
1: आपने इतने सारे उपाय बताए जो थोड़े से सामान्य जिंदगी से अलग तरह के उपाय हैं, जैसे कि कागज़ पर लिखा जो कुछ बुरे बुरे ख्याल सामने वाले के बारे में आ रहे हैं, या जो तकिए पे मारा, या अपने भीतर का जो आक्रोश है वो चिल्ला कर व्यक्त किया। अगर ये सारे इमोशंस हमारे मन के अंदर रह जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के ही वो व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में एसिडिटी बढ़ती जाती है, किसी दवा से ठीक नहीं होती है और दवाइयों की टोकरी बड़ी होती चली जाती है उनकी?
0: बिल्कुल, सिर्फ बीमारियां नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हिटलर ने इतना बड़ा भयंकर प्रलय किया, लेकिन हिटलर की लाइफ क्या थी हमें पता नहीं है। कोई भी बुरा बंदा बुरे से, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ हिटलर का बिहेवियर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर बंदा कोई बुरा बर्ताव कर रहा है या कुछ बीमारियां चल रही है जिसका कुछ डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, कहीं ना आप अंदर इमोशंस बहुत लेके घूमते हैं, तो जब तक हमें इमोशंस नहीं निकालेंगे तब तक ये तो ऐसे कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो अनबन तो होती रहेगी, अगर नहीं तो फिर हम इंसान ही नहीं है, फिर हम भगवान हैं, तो ऐसे तो नहीं है। सामने वाले कोई भी रिलेशन में हो, फिर वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, अनबन तो होती रहेगी। और एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमें ना ग्रैटिट्यूड, हमें कृतज्ञता दिखानी है अपने आप की तरफ और जो भी चीज़ें है उसकी तरफ। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जब हम भगवान को थैंक यू कब कहते हैं, जब कुछ बड़ा सा अचीव कर लेते हैं तब, तो वो बड़ा सा अचीव रोज नहीं होता, लेकिन डेली बेसिस पे आप अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू कहना शुरू करोगे, हो वो फॉर्मेलिटी लगती है। काफ़ी बार ये लोगों को लगता है हमारे इंडिया में ऐसे नहीं होता, हम माँ बाप को कहाँ थैंक यू कहते हैं, माँ ने अच्छी रोटी बेल ली तो हम माँ को थैंक यू नहीं बोलते। मन में बोलो, माँ को ना भी बता सको, क्योंकि वो होता है कि अरे माँ कहेगी क्या बेटा तू मुझे थैंक यू, लेकिन मन में अगर आप वो ग्रैटिट्यूड रखना शुरू करोगे अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, जो भी चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं उसके लिए, तो उससे भी ना आपका टोटल, आपका जो माइंडसेट है वो ज़रूर चेंज हो सकता है।
1: जीवन में ग्रैटिट्यूड अमूमन नहीं होता है, ये जो ग्रैटिट्यूड है ये जीवन को कितना पॉजिटिव और कितना हल्का बना सकता है हर उम्र के लोगों के लिए?
0: बहुत ज़्यादा, कैसे ना, आप ये है कि जो हमें नहीं है ना हमारे पास, वो चीज़ पे हम इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं यूनिवर्सिटी कि हमारे पास 50 हो, मतलब आप बहुत बुरे कंडीशन में हो,
1: बड़ी गाड़ी नहीं है,
0: बड़ी
1: बड़ा
0: गाड़ी
1: घर
0: नहीं है,
1: है,
0: कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ना। आप आज से, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर एक जो भी सुन रहा है ना हमें, वो एक चीज ढूंढना शुरू करे हर एक दिन में, एटलीस्ट एक चीज ढूंढो कि जिसके लिए आप शुक्रिया, कोई भी होने दो, या फिर आपने आज अच्छी रोटी बेल ली, अपने आप के लिए ग्रेटिट्यूड कर लो कि क्या तुमने रोटी बना ली है, बहुत बढ़िया, या कुछ भी सिंपल से सिंपल चीजें कह लो उसके लिए। जैसे ग्रेटिट्यूड होता है ना, वो आपकी, देखो आप बड़े से समझ लो, जैसे टाइटैनिक जैसी बड़ी शिप है, इट इज सेलिंग थ्रू द ओशन, मतलब डीप सी में है बिल्कुल, तो वो एकदम से दिशा चेंज नहीं होती है। अगर वो कैप्टन को शिप के डायरेक्शन चेंज करने, तो वो स्लोली ग्रेजुअली होने वाली है, राइट? सो आप जैसे अपने आप को या अपनी फैमिली में, अपने आजू बाजू के लोगों को जैसे ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, जैसे वो आपके द टाइम यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर निगेटिव इमोशंस, आपके जैसे आप ख्याल चेंज करोगे ना, आपकी ज़िंदगी स्लोली चेंज होती है। ये एक दिन में नहीं है, ऐसे मत सोच लो कि अरे डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि मैं जैसे शुक्रिया कहना शुरू करूंगा मेरी तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं होने वाला। ये दवाई नहीं है बुखार की कि हमने आज खाली कल बुखार गया आप ऑफिस पे चले गए, लेकिन इसका जो आप पे असर होगा ना वो परमानेंट होता है। आपको देख के आपके परिवार वाले सीखते हैं, आपके ऑफिस वाले सीखेंगे कि भाई तू आजकल कर क्या रहा है, तू अपने आप में मस्त रहता है, और वो मस्त रहना ना कि यू आर हाई ऑन एडिक्शंस, यू आर हाई ऑन लाइफ।

लव यू जिंदगी, इस श्रृंखला की ये थी दूसरी कड़ी। इस श्रृंखला में डॉक्टर योगिनी मोहरे से आपका ये दोस्त यूनुस खान बातचीत कर रहा है।

0: 지겨서.
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं कहानी पिंजर, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। जब मैं पढ़ाई की पुस्तकें समाप्त कर चुका तो मेरे पिता ने मुझे वैदिक सिखाना चाहा और इस काम के लिए एक जगत के अनुभवी गुरु को नियुक्त कर दिया। मेरा नवीन गुरु केवल देशी वैदिक में ही चतुर न था बल्कि डॉक्टरी भी जानता था। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा यानी कि हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वे अकेले हों कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। यदि कभी किसी आवश्यकतावश जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख उठाकर न देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वो कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहा करता था कि इस पिंजर की सामर्थ्य ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं इस विषय में उससे कभी सहमत ना हुआ और सर्वदा यही कहता रहा कि ये मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से विलग हो गई है, तब भी जब तक ये विद्यमान है वो समय असमय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो। किंतु ये एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक रात को गृहस्थ आवश्यकताओं के कारण मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए ये नई बात थी, इसलिए नींद न आई और मैं काफी समय तक करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि समीप के गिरजाघर ने 12 बजाए। जो लैंप मेरे कमरे में प्रकाश दे रहा था वो मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। उस समय मुझे उस प्रकाश के संबंध में विचार आया कि क्षण भर पहले वो विद्यमान था,

0: अब सर्वदा के लिए अंधेरे में परिवर्तित हो गया। संसार में मनुष्य जीवन की भी यही दशा है, जो कभी दिन और कभी रात के अनंत में जा मिलता है। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर परिवर्तित होने आरंभ हुए। मैं हृदय में सोच रहा था कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ न होंगी। सहसा मुझे ऐसा ज्ञात हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में फिर रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि, जैसे कोई दुखित व्यक्ति सांस लेता है, मेरे कानों में आई और पांवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है और बुरे स्वप्नों के कारण काल्पनिक आवाजें आ रही हैं। लेकिन पांव की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर से पूछा,
1: कौन है, कौन है यहाँ?
0: ये सुनकर वो अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूँ। मैंने विचार किया मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, ये कौन सा समय पिंजर देखने का है? वास्तव में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ध्वनि आई,
2: मुझे असमय से क्या अभिप्राय, मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूं इसे देख सकती हूँ। आह, क्या तुम नहीं देखते, ये मेरी पसलियां हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा है। मैं पूरे 26 बरस इस घोंसले में बंद रही, जिसको अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इसमें तुम्हें क्या बाधा हुई?
0: मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। मैंने हृदय में निश्चय कर लिया कि जिस समय वो यहाँ से हटे मैं तुरंत भागकर बाहर चला जाऊँगा। लेकिन वो टलने वाली न थी, कहने लगी,
2: क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा, आओ कुछ बातें करें।
0: उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिरने लगी, लेकिन विवशता से उत्तर दिया,
1: अच्छा तो बैठ जाओ और कोई मनोरंजक बात सुनाओ।
0: आवाज आई,
2: लो सुनो, 25 बरस बीते मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी और मनुष्यों में बैठकर बातचीत किया करती थी, लेकिन अब श्मशान के शून्य स्थान में फिरती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय के पश्चात मनुष्यों से बात करूं। मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरी बातें सुनने पर सहमति प्रकट की है। क्यों, तुम बातें सुनना चाहते हो या नहीं?
0: ये कहकर वो आगे की ओर आई और मुझे मालूम हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे पांव के पास बैठ गया है। फिर इससे पूर्व कि मैं कोई शब्द मुख से निकालूं, उसने अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं सुनो कहानी, आज रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर। वो बोली,
2: महाशय, जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी और वो व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था। वो था मेरा पति।
0: जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, वो व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझे वहां जाने न देता था। अच्छा था उसका काम जल्दी ही समाप्त हो गया, अर्थात विवाह के दूसरे महीने ही वो संसार से चल बसा। मैंने लोगों की देखा देखी वैष्णव रीति से क्रियाकर्म किया, लेकिन हृदय में बहुत प्रसन्न थी कि कांटा निकल गया। अब मुझको अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी और मैं अपनी पुरानी सहेलियों से, जिनके साथ खेला करती थी, मिलूंगी। लेकिन अभी मुझको मायके

आने की आज्ञा न मिली थी कि मेरा ससुर घर आ गया और मेरा मुख ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा, मुझको तो इसके हाथ और पांव के चिन्ह देखने से मालूम होता है कि ये लड़की डायन है, डायन। अपने ससुर के वे शब्द मुझको अब तक याद है, वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद मुझे अपने पिता के यहां जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी प्राप्त हुई वो वर्णन नहीं की जा सकती। मैं वहां प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। मैंने उन दिनों अनेकों बार अपने विषय में कहते हुए सुना कि मैं सुंदर युवती हूं, पर तुम कहो, सुनो, तुम कहो ना, तुम्हारी क्या सम्मति है? मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा ही नहीं, मैं कैसे सम्मति दे सकता हूं? जो कुछ तुमने कहा ठीक होगा, ठीक। वो बोली, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि इन दो गढ़ों में लज्जाशील दो नेत्र देखने वालों पर बिजलियां गिराते थे। खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुखड़े से नहीं लगा सकते। इन हड्डियों के चहुओर जो सौंदर्य था, अब उसका नाम तक बाकी नहीं है। मेरे जीवन के क्षणों में कोई योग्य से योग्य डॉक्टर भी कल्पना न कर सकता था कि मेरी हड्डियां मानव शरीर की रूपरेखा के वर्णन के काम आएंगी। मुझे वो दिन याद है जब मैं चला करती थी तो प्रकाश की किरणें मेरे एक एक बाल से निकलकर प्रत्येक दिशा को प्रकाशित करती थीं। मैं अपनी बाहों को घंटों देखा करती थी। ये वही बाहें थीं जिसको मैंने दिखाई, अपनी ओर आसक्त कर लिया। संभवतः सुभद्रा को भी ऐसी बाहें नसीब न हुई होंगी। मेरी कोमल और पतली उंगलियां मृणाल को भी लजाती थीं। खेद है कि मेरे इस नग्न ढांचे ने तुम्हें मेरे सौंदर्य के विषय में सर्वथा झूठी सम्मति निर्धारित करने का अवसर दिया। तुम मुझे यवन के क्षणों में देखते तो आंखों से नींद उड़ जाती और वैदिक ज्ञान का सौदा मस्तिष्क से अशुद्ध शब्द की भांति समाप्त हो जाता। उसने कहानी का तारतम्य प्रवाहित करते हुए कहा, और फिर मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वो विवाह न करेगा और घर में मैं ही एक स्त्री थी। मैं संध्या समय अपने उद्यान में छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठती तो सितारे मुझे घूरा करते और शीतल वायु जब मेरे समीप से गुजरती तो मेरे साथ अटखेलियां करती थी। मैं अपने सौंदर्य पर घमंड करती और अनेकों बार सोचा करती थी कि जिस धरती पर मेरा पांव पड़ता है यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो प्रसन्नता से फूली न समाती। कभी कहती, संसार के संपूर्ण प्रेमी युवक घास के रूप में मेरे पैरों पर पड़े हैं। अब ये संपूर्ण विचार मुझको अनेक बार विफल करते हैं कि क्या था और अब क्या हो गया। मेरे भाई का एक मित्र सतीश कुमार था जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वो हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझको नहीं देखा था लेकिन मैंने उसको एक दिन देख ही लिया और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं कि उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला। मेरा भाई अजीब ढंग का व्यक्ति था। संसार के शीत ग्रीष्म से सर्वथा अपरिचित वो कभी गृहस्थ के कामों में हस्तक्षेप न करता। वो मौन प्रिय और एकांत में रहा करता था जिसका परिणाम ये हुआ कि संसार से अलग होकर एकांत प्रिय बन गया और साधु महात्माओं का सा जीवन वो बिताने लगा।

0: टैगोर की लिखी कहानी पिंजर का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी में। कहानी में वाचन स्वर था आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं वापस आऊँगा से, आवाज़ शिल्पा राव, अंतरानंदी, फहीम अब्दुल और इरशाद कामिल की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रेड 2 से। आवाज़ें परंपरा टंडन और सचेत टंडन की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचेत परंपरा का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखियां से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल और संगीत विशाल मिश्रा का ही था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में SRCC द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक

0: शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
1: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
1: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
1: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और

0: सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
2: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
1: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
2: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने

0: जिस सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म तमाशा से। आवाज़ मोहित चौहान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म ताल से। आवाज़ें आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण की थी। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत ए आर रहमान का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म साथिया से, आवाज़ सोनू निगम की थी, गीत के बोल गुलजार के और संगीत एआर रहमान का।
1: धरती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रोजा से, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की, गीत के बोल पीके मिश्रा के और संगीत एआर रहमान का।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्ने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: झीलों के शहर में रहने का ख्वाब कितना मीठा और सुहाना होता है, ये तो आपने सुना। लेकिन ये भी आपको बता दें कि विधु विनोद चोपड़ा मूल रूप से कश्मीर के ही हैं, इसीलिए शायद इनकी फिल्मों में हसीन वादियों की लोकेशन ज्यादा होती हैं।
1: और पढ़ाई लिखाई भी वहाँ हुई, कॉलेज भी वहाँ हुआ। अगर सही मानों में आप कहें तो कश्मीरी हूँ मैं, कश्मीर से हूँ और कश्मीर में ही मेरी कश्मीर के बाद मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया था।

मैं ये बात मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान में हर छोटे शहर में हर छोटा लड़का या हिंदी फिल्म का हीरो बनना चाहता है या क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दो ही हीरो हैं, या तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं या हिंदी फिल्म के हीरो।

हर बच्चे की तरह, छोटे शहर के बच्चे की तरह, मेरा भी एक ही सपना था कि मैं फिल्मों में कुछ करूं, और हिंदी फिल्मों में, और वहाँ कश्मीर में सिर्फ हिंदी फिल्म देखने को मिलती थी। और मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं टॉप किया हूँ, यूनिवर्सिटी नेशनल स्कॉलर ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन बचपन से ही, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं माफ़ कीजिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जो कहना चाहूँगा आपसे, तो मुझसे ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं इकोनॉमिक्स में, कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों आए?

और मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ इकोनॉमिक्स में, मैं टॉप किया हूँ यूनिवर्सिटी, नेशनल स्कॉलर ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन बचपन से ही, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं माफ़ कीजिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जो कहना चाहूँगा आपसे, तो मुझसे ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं इकोनॉमिक्स में, कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। पूछा कि ये हर लड़का जो फिल्म इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ाई के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है? मैंने कहा नहीं, अगर उस लड़के के पास कैम्ब्रिज में पीएचडी करने की चॉइस हो और एफटीआईआई से डीसीडी डिप्लोमा इन सिनेमा की चॉइस हो और वो ऑप्ट करें यहाँ आना, तो वो बेवकूफ़ ही नहीं, गधा है बिल्कुल। तो फिर ऋषिदा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि आप गधे क्यों बन रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो बचपन में मेरी एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी, जो एक ख्वाब था, मैं जो जितनी मेरी रैशनल सेंसेस हैं उनको ओवर रूल करके यहाँ आया हूँ। मतलब मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ दिल और जज्बात से ये डिसीजन ले रहा हूँ।

0: दोस्तों, विनोद चोपड़ा का घरेलू नाम है विधु, जिसको मिलाकर ये कहलाए विधु विनोद चोपड़ा। यदि आपने इनकी कोई फोटो या तस्वीर देखी हो तो निश्चित ही आप भी मानेंगे कि ये काफी हैंडसम हैं। लेकिन इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर फिल्म निर्माण और निर्देशन की बागडोर ही क्यों संभाली, इसका भी एक राज है।
1: मैंने अपनी जो डिप्लोमा फिल्म थी मर्डर एट मंकी हिल में, उसमें मैं हीरो था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्टिंग करके मजा नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं। हो मुझे तो ऐसा लगता था उस समय भी और आज भी कि एक्टर्स जो हैं, ये ठीक है कि मैगजीन्स में उनकी फोटो छपती है, लोग कहते हैं वाह, लेकिन हैं वो सिर्फ पपेट्स हैं बिल्कुल। उनके धागे तो किसी और के हाथ में, जैसे आनंद में उसने बहुत कमाल की लाइन गुलजार भाई ने लिखी थी कि धागे ऊपर वाले के हाथ में, तो यहाँ धागे जो हैं उन एक्टरों के, वो हमारे हाथ में।

विधु विनोद चोपड़ा ने बहुत ही चुनिंदा फिल्में बनाई हैं। फिल्मकार के रूप में उनका नजरिया लीक से हटकर है, अपनी बात को फोकस करने का उनका अपना अंदाज है। 1942 ए लव स्टोरी से ही उन्होंने ये बात साबित कर दी थी।

विधु विनोद चोपड़ा ने जब फिल्मों में आना तय किया तभी ये सोच लिया था कि फिल्म मनोरंजन का मीडिया तो है लेकिन इसका उपयोग अपनी बात कहने के लिए कैसे किया जाए इस बात में सावधानी बरती जाए तो यकीनन फिल्मों का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि उनकी हर फिल्म में एक नया विषय जरूर होता है, चाहे वो फिल्म मिशन कश्मीर हो, 42 ए लव स्टोरी हो, परिंदा हो या हो करीब, सभी में एक नया एहसास उनकी फिल्मकारी का आपको जरूर मिलता है।

मुन्ना भाई MBBS। इसके मुख्य चरित्र को लेकर उन्होंने कई समस्याओं को फिल्म के माध्यम से हमारे सामने पेश किया है। लोगों ने उनके बात कहने के इस अंदाज को भी बहुत बहुत पसंद किया है।

मुन्ना भाई MBBS के बाद लगे रहो मुन्ना भाई ने भी काफी लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया और ये फिल्म भी एक मिसाल बन गई।

0: और दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी थ्री इडियट्स, देखी होगी आपने और मजा भी लिया होगा।
1: आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल।

0: और सन 2014 में विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी फिल्म पीके।
1: तुझे तक तक

0: ये प्रोग्राम आज के फनकार केंद्रित था निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम

0: वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रात के शांत आकाश में टंगा चांद किसी प्रेम पत्र की तरह लगता है, जिसे प्रकृति ने हर प्रेमी के नाम लिखा हो। उसकी दूध या रोशनी मन की बेचैन लहरों को सहला देती है। जब कोई अपने प्यार को याद करता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें चांद की ओर उठती हैं, मानो चांद दूर बैठे उसके प्यार तक उसके दिल का हाल पहुंचा देगा।

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है, तो कभी किसी की याद का। कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है, तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

चांद की तरह है। वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खामोशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है, लेकिन मिटता

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।